0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: सोमवार 5 अक्टूबर की सुबह हो चुकी है एंड इट्स एग्जैक्टली 5 AM.
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: अगर प्रेमी लोग निकल पड़े हैं अपने रास्ते पर तो हम क्यों पीछे रहे भाई साथ निभाने आ गए लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स नीतो का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम मंडे मॉर्निंग 5th of October बच्चे लोग आराम करो लेकिन जितने भी लोग काम पर जाने वाले हैं या फिर ऑलरेडी रास्ते पर हैं इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं एंड डेफिनेटली इस खूबसूरत सफर में द राइज एंड शाइन फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती 5499-1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार बस ये सोमवार का दिन नए दिन की शुरुआत आप सबके लिए शुभ हो मंगलमय हो बिल्कुल अकेले मत रहना हम आपके साथ हैं 7 बजे तक

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 11 मिनट हो रहे हैं. थैंक यू सो मच. हर हर महादेव. कैसे हैं भाई सूरज शर्मा सजादा पूरे परिवार फ्रॉम त्रियुली. मिस्टर जयशन हरदयाल हैव अ वंडरफुल डे अहेड. गुड मॉर्निंग सभी को. आप है अब्दुल अंसारा बानो. चलिए जी, आज है 5 अक्टूबर. ऑफकोर्स वर्ल्ड टीचर्स डे. तो सभी गुरुओं को श्रद्धांजलि और अपने जो डेडिकेशन है अपने स्टूडेंट्स के प्रति, आपके लिए बस कट शत शत प्रणाम जैसे कहते हैं, कोटि कोटि प्रणाम. लेकिन उसके बावजूद SA and HSC जो एग्ज़ाम्स है वो चालू हैं, तो बच्चे लोग आज भी जो है प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए और टीचर्स भी होंगे. सो सबको बों कुहाश, बेस्ट ऑफ लक. ये गाना आप सभी के नाम इन द वॉइस ऑफ लताजी एंड रफ़ी साहब.

0: लेकिन रेडियो मस्ती पर तो प्यार भी मिलता है और इकरार भी।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
0: सुबह सुबह इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं on 549-912-94. तो चलिए क्यों ना आपके मैसेजेस की ओर एक नजर बढ़ाते हैं। अनुषा होरी राम, कैसी है माय डियर? आपको प्लेन देगोश से नमस्कार, आपको गुड मॉर्निंग। पापा ससन, माँ प्रेमिला, भाई है संजू, भाभी रोशनी, नीस परी, नेफ्यूज है हिमकेश एंड हिमेश एंड आपके सभी परिवार को ढेर सारा प्यार। प्लीज नेक्स्ट गाना आपके लिए चलाते हैं, आप है कौन, मिस्टर गायता मोगोश से आपके पूरे परिवार के नाम एंड विश यू टू अ वेरी गुड डे अहेड। साथ में है कौन, यहाँ पर साथ निभा रहे हैं मिस्टर दीपक, एज यूजुअल आपके नाम, आपके सभी परिवार, क्रेश एंजल, भाविनी, आदर्श, अपवेदिता, हमारे लिए सब परिवार के लिए क्या बात है, थैंक यू सो मच। प्रणाम जी, हर हर महादेव, गाना आपके लिए मेरी बहन बेटे नितेश, मीला राम दिकल, आपको फ्रॉम मोता ब्लॉश, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। और मिस्टर आत्मानंद, सोहदेव और माला जी, आप हो फ्रॉम कैहोलिन, यही गाना आपके नाम, इंदिरा, रेशमा, विमल, अंजू, कृषा, केशव, नील, मायशा, तानिया, मोता ब्लॉश से पूरे परिवार के नाम।

0: मौसम का थोड़ा सा रंग चुरा कर हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं और 549-9294 पर प्यार के रंग यहाँ पर आपके मैसेजेस के रंग भी चढ़ रहे हैं।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: Good morning, Radio Musti. आप हो माला from Flack. कैसी हैं आप माला? ठीक ठाक. कहते हैं कि आज मेरे बिलवद पति विजेंद्र उनका बर्थडे है. So happy 47th birthday उनको और ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि सबसे अच्छे पति सबसे अच्छे पिता है वो. क्या बात है. और आपकी दुनिया में बस मैजिक ही मैजिक क्रिएट किए हैं. ये बस ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है. अगर आप ही प्यार करते हो वो भी प्यार करते हैं, सम्मान हो, कंपैशन हो, इज्जत हो, सम्मान हो, तो सब अच्छा होता है ना. सो अभी वो अब्रॉड है, ओहो, क्रूज में शिप में काम करते हैं. रियली होप वो रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं. तो आपको मिस्टर विजेंद्र जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपके सभी परिवार एंड डियर वंस की तरफ से. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स एंड ये है सभी बच्चों की तरफ से. सुप्रभातम आपको भी. मोताब लॉन्च से हैं आप संगीता जी आपके सब परिवार के नाम. वेल नेक्स्ट गाना आपके लिए है मिस्टर टोनी फ्रॉम ओशबुआ एंड योर डियर वंस. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति, साथ में अरबिक, हरक परिवार, मौदार बेसी. सो कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस ऑन 5499-1294.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: तो बस अपने लिए जी और बाकी का सब भला करते चले.
2: Aries मेष राशि.
1: Alright, आज का दिन आपको कई कामों में व्यस्त रख सकता है. एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने हो तो घबराने के बजाय प्राथमिकता तय करते हुए आप आगे बढ़े. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को खुशी देगी. लंबे समय से मन में बसी कोई इच्छा पूरी होने से संतोष मिलेगा. पुराने अधूरे काम पूरे करने का उत्साह रहेगा और घर में किसी शुभ आयोजन की तैयारी से वातावरण खुशनुमा हो सकता है.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज आलस्य छोड़कर पूरे उत्साह के साथ अपने कामों पर ध्यान देने का समय है. नई जिम्मेदारी शुरुआत में थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है आपको, लेकिन सहयोगियों का साथ आपको मजबूती भी देगा. बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि छोटी बात भी तकरार के कारण बन सकती है. बस परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य से सुलझाया भी जा सकता है.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज नए काम की शुरुआत के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा. लंबे समय से जिस कदम को लेकर सोच रहे थे आप, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. जीवन साथी के साथ पुरानी गलतफहमियां बातचीत से दूर होंगी और रिश्तों में फिर से मिठास आएंगी.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज आपका मन दूसरों की मदद करने और जरूरतमंदों के काम आने में लगेगा. सेवा और सहयोग से आपको भीतर से संतोष महसूस होगा. संतान के साथ समय बिताने या कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है. वैसे लंबे समय से अटका हुआ कोई पुराना लेन देन भी सुलझने की उम्मीद है उसमें.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन कार्यक्षेत्र में किसी से हल्की बहस भी हो सकती है. ऐसे में शांत रहना ही आपके लिए बेहतर होगा. संतान से किया वादा पूरा करने का अवसर मिलेगा. वहीं बड़ों की ओर से कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है. घर में पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन, इससे सकारात्मक वातावरण बनेगा. और किसी पर आंख मूंद कर फिर भी आप भरोसा करने से बचे हैं.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: वेल, आज कोई अच्छी खबर आपके पूरे दिन को खुशनुमा बना सकती है. व्यवसाय में किए हुए बदलाव अब सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. बॉस या फिर वरिष्ठ अधिकारी के साथ चली आ रही दूरी कम हो सकती है. घर की सजावट, खरीदारी या किसी नए वस्तु को लेकर उत्साह रहेगा. अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: ऑलराइट, आज कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझकर करना ही, विचार करते हुए आगे बढ़ें. बीती गलतियों से मिली सीख इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. बिना मांगे सलाह देने से बचें और अपने आसपास की परिस्थितियां उनको समझकर ही आगे बढ़ें. किसी यात्रा के दौरान जरूरी और कीमती सामान संभाल कर रखें.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.

0: आज आप सफलता और प्रगति की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ेंगे। परिवार के बड़े सदस्यों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना रिश्तों में मजबूती लाएंगे। घर की संपत्ति या बंटवारे से जुड़ी कोई चर्चा सामने आ सकती है जिसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मन में चल रही कोई चिंता थोड़ी बेचैनी दे सकती है और संतान की पढ़ाई या भविष्य को लेकर लिया गया महत्वपूर्ण डिसीजन को आप आगे चलकर सकारात्मक परिणाम भी आपको मिल सकते हैं।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज समझदारी और संतुलन से लिए गए फैसले आपको राहत देंगे। बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और घर का माहौल भी खुशनुमा बनेगा। काम को लेकर जो चिंता कुछ समय से परेशान कर रही थी उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। घर में मेहमानों के आने से रौनक बढ़ सकती है। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और कोई बड़ी इच्छा पूरी होने की खुशी आपको मिल सकती है। और हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने के संकेत भी है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज का दिन परिवार और काम दोनों के लिहाज से सुखद रह सकता है। परिवार में किसी नए मेहमान के आने से खुशियों का माहौल बनेगा। निवेश या शेयर बाजार से लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी भी बातों में आकर जल्दबाजी से डिसीजंस निर्णय मत लीजिएगा। आपके काम की तारीफ से पहचान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: वेल, आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है जिससे लोगों के बीच आपकी पहचान और सम्मान बढ़ेगा। माताजी, पिताजी या फिर बड़ों से किए गए वादे उनको पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। संतान अपने करियर या नौकरी से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपसे सलाह मांग सकती है। व्यवसाय में थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आपकी समझदारी और अनुभव परिस्थितियों को संभालने में मदद करेंगे।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फाइनली आज का दिन परिवार के साथ खुशी और सुकून भरे पल बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने मतभेद बातचीत के जरिए दूर किए जा सकते हैं और रिश्तों में फिर से गर्माहट आएगी। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या नकारात्मकता रखने की बजाय सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। घूमने फिरने या अपने पसंदीदा शौक के लिए समय मिल सकता है और बस स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि संतान की सेहत पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना उचित रहेगा। विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड अ लवली डे अहेड।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

104 क्यूब भाई, जितने भी नजारे हैं आप चुरा कर अपने दिल में बसा लीजिएगा। 6 एएम बस थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे 6 बजे के समाचार। ऑफ कोर्स हैप्पी बर्थडे तब तक टू मिस्टर गायतों के 60 इयर्स ओल्ड ऑलरेडी। एंड ये है तों से तों युन मबक सुदाई क्वीन विक्टोरिया फ्रैक से। एंड यहाँ पर नेक्स्ट गाना गुजार टू ऑल दोज जो आज अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड मिलते हैं वापस ऑफ कोर्स 6 बजे के समाचारों की ओर। एंड ललिता लोलुआ आपको भी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम फोजी साक, आपकी तरफ से अनु फ्रॉम वेल, कुमारी रेणुका, रजनी, सुरेखा, दामिनी, साथ में है संगीता और सब परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार।

0: हैं संक्षिप्त समाचार आपसे याचना नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतूषा सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इन दिनों लंदन में एक मिशन पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को बर्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा के काउंसलर जोनाथन पावेल के साथ आमने सामने मुलाकात की इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा जारी कम्युनिके में दी गई है इस मुलाकात का मकसद था शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को लेकर उठे मामले को आगे बढ़ा पाना हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके सख्त खिलाफ हो गए हैं प्रधानमंत्री 26 सितंबर को लंदन के लिए मॉरिशस से रवाना हुए थे उन्होंने कहा कि वे देश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं मॉरिशस अफ्रीकी वित्तीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का शुभारंभ 7 अक्टूबर के लिए एर्बन में निर्धारित है इस अवसर पर करीब 200 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है जिनमें अफ्रीका के विभिन्न देशों से आए लगभग 160 प्रतिनिधि होंगे इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण हस्तियाँ भी मौजूद होंगी मंत्री ज्योति जितन के अनुसार AFCRA का उद्देश्य अफ्रीकी पूंजी बाजार के विकास में योगदान देना और महाद्वीप के वित्तीय संसाधनों को बेहतर तरीके से जुटाने में मदद करना है आज का दिन उन्हें समर्पित है जो जीवन में हमें मार्ग दिखाते हैं हमारा मार्गदर्शन करते हैं और उंगली पकड़कर हमें आगे चलना सिखाते हैं कभी डांट फटकार कर तो कभी हंसी मजाक के साथ शिक्षक सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली वह शक्ति है जो ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधकार दूर करती है एक शिक्षक किताबों का ज्ञान देने के साथ साथ हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है सही और गलत के बीच फर्क समझाते हैं मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और हमारे सपनों को उड़ान देने का विश्वास जगाते हैं आज का दिन उन्हें सभी शिक्षकों को समर्पित है सभी शिक्षकों को और खासकर छात्रों को आज की दिन की विशेष शुभकामनाएं विदेश खबरों में अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF एयरबेस से अपने सारे बॉम्बर्स वापस बुला दिए हैं एयरबेस को निशाना बनाने की कथित ईरानी साजिश के बीच एक नई और अज्ञात धमकी मिलने के बाद अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है इन बॉम्बर्स को अब उनके ही होम बेस में तैनात किए गए हैं पिछले कुछ दिनों से यूके स्थित इस एयरबेस के इर्द गिर्द सुरक्षा तेज की गई है जब से एक गुट ने इस पर हमला बोलने की नाकाम कोशिश की थी अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह बादल घिरे रहेंगे

0: और वर्षा होती रहेगी, खासकर पूर्वी दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर। दिन के दौरान धूप रहेगी। रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जा रही है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 5:47 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 6:08 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musty.

लंबी सांस लेकर बुलाएंगे तो जरूर डेफिनेटली आई जाएंगे। चमचकर 10 मिनट, वेलकम बैक टू रेडियो मास्टी। एंड जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए, स्पेशली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। आप हो श्वेता हुकुम फ्रॉम बोनाकई, विशिंग ऑल द टीचर्स ऑफ मनीलाल डॉक्टर SSS लाल माची हैप्पी टीचर्स डे। एंड स्पेशली आपके लिए मिसिज फकवा रक्षा फ्रॉम ऑल कॉलीग्स रूबी रेशमा पूर्णिमा निशा। एंड आपने कहा लिखा यहाँ पर एट्सेट्रा, यानी कि लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो सभी को ढेर सारा प्यार। ए वेरी गुड मॉर्निंग आपको नीतू, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर धनेश्वर। प्यारी पत्नी है सुनीता, रेखा, संजीव, निशा, मीना, ऋषि, तहान, हंस भी फ्रॉम दविदोस सनीचर परिवार के लिए। सुबह सुबह ऐसी धुन, वो भी बांसुरी की धुन कानों में गूंजती हुई, आह दिल को सुकून दिला जाता है। तो ये वाला गाना आपके नाम भी चलाती हैं। आप है कौन? वेल, आपके पूरे परिवार, ये तो हमने आपके लिए चला लिया था। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सरिता, गुड लेंथ से हैं आप। आपके नाम एंड जितने भी लोग प्यारे प्यारे इस सुबह का आनंद ले रहे हैं, आपको थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हस्बैंड रंजीत, आपकी तरफ से प्रेमिला जी, पूरे परिवार फ्रॉम ब्लेंडी पपाय। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी रेखा, आपके पूरे परिवार एंड आपके नाम अशोक, मनसुख परिवार, आकाश, बस टीचर्स को मिस कर रहे हैं, है ना? ऐसा ही होता है, वो जो पल था, वो जो घड़ियां थी कॉलेज के, वो तो कुछ और ही।

0: रोमांटिक फिर भी सूदिंग गाना दिल को छू लेने वाला 6:18 काम पर जा रही है सबको बोंको आज बस चलते चलते नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट में भूलना हाँ हमेशा कहते हैं हैव योर बॉटल ऑफ वाटर एंड हंसते मुस्कुराते अपने सुबह अपने इस दिन की शुरुआत करें
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
0: यहाँ पर हेमलता भजन फ्रॉम पॉइंट उपिमा कहती है क्या बात है गर्मा गर्म इलायची वाली चाय आहा थैंक यू सो मच बस सुनकर ही मन को खुशी मिल गई है आप ही एंजॉय कीजिएगा गुड मॉर्निंग आज मेरे बेटे आरव का 14th बर्थडे है सो ब्लेसिंग साहब की तरफ से मामा श्वेता पापा अनिल बहन है वृष्टि सैफ्रांसवा से सब परिवार की तरफ से एंड ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती परिवार की तरफ से हार्दिक शुभ

शुभकामनाएं ब्लेसिंग्स। कैसे रेखा प्रभु बोझे आपके नाम बेटा अंश एंड योर डियर वंस पारुषी परिधि एंड सबको हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू हमारे साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। आप है कौन यहाँ पर? वेल आप है देवी जी, प्रणाम आपको।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:25 6:30 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद मॉर्निंग वेट। तो ये वाला गाना गुजरात स्पेशली टू ऑल द टीचर्स जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना दिन। हालांकि काफ़ी लोग जो है काम पर भी हैं क्योंकि एग्जाम्स भी चल रही है, सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर ऑल। चलते चलते आपको भी ममा अनुषी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपकी बेटियों की तरफ से, पति एंड सब परिवार की तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। 8th बर्थडे टू यू प्रिंसेस वहाना ग्रेसी लाशामा टॉप रोड्रिक्स प्रयास जेसिका रविश प्रिशा लवशा पादू फैमिली की तरफ से ढेर सारा प्यार।

0: सुबह 6:30 के इस न्यूज बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां पेश हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के लंदन मिशन के तहत मुख्य रूप से शागस मामले पर चर्चाएं। प्रधानमंत्री ने बरतानी राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जोनाथन पावल के साथ आमने सामने की मुलाकात। अफ्रीकी वित्तीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी मॉरिशस की उसी की तैयारी में अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का शुभारंभ 7 अक्टूबर को एबेन में निर्धारित। आज का दिन उन्हें समर्पित जो हमें जीवन पर चलने की राह दिखाते हैं। शिक्षक जो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली वह शक्ति है जो ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधकार दूर करती है। विदेशी समाचारों में अमेरिका ने ब्रिटेन के आरएएफ फोर्ट एयरबेस से अपने सारे बॉम्बर्स वापस बुला दिए। एक नई धमकी के बाद ऐसा किया गया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब पेश समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के लंदन मिशन के तहत मुख्य रूप से शागस मामले पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने बरतानी राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जोनाथन पावल के साथ शुक्रवार को आमने सामने मुलाकात की। प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा जारी कम्युनिके में इस बात की जानकारी दी गई है। इस मुलाकात का उद्देश्य शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता के मामले को आगे बढ़ाना है। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के सख्त के विरुद्ध हैं। प्रधानमंत्री 26 सितंबर को अपने मिशन के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। कम्युनिके में इसकी पुष्टि की गई है। मॉरिशस अफ्रीकी वित्तीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का शुभारंभ 7 अक्टूबर को एबेन में किया जाएगा। इस अवसर पर करीब 200 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनमें अफ्रीका के विभिन्न देशों से आए लगभग 160 प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्री ज्योति जितन के अनुसार अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का उद्देश्य अफ्रीकी पूंजी बाजारों के विकास में योगदान देना है। उनको सुनते हैं।
1: क्रेडिट रेटिंग ली बिएन इंपोर्टेंट पोर बान लंटरप्रीज एक बान पेई।
2: क्रेडिट रेटिंग कंपनियों और देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसका एक सीधा प्रभाव ऋण और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पर पड़ता है। एक बेहतर रेटिंग के माध्यम से हम ज्यादा निवेश आकर्षित कर पाएंगे और बेहतर शर्तों पर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। अफ्रा बड़े रेटिंग एजेंसियों के साथ काम करेगा, जिनमें मूडीज, S&P तथा हमें हमारे देशों के लिए खतरों के मूल्यांकन को मापने के लिए एक अफ्रीकी दृष्टिकोण प्राप्त होगा। अफ्रा के आधिकारिक लॉन्चिंग के लिए कई बड़ी हस्तियां मॉरिशस आ रही हैं, जिनमें बुरुंडी के प्रधानमंत्री जो अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता भी संभालती हैं, अफ्रीका यूनियन कमीशन के चेयरमैन, अफ्रीजिंक बैंक के प्रेसिडेंट तथा APRM के CEO भी शामिल हैं।
0: शिक्षक सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली वह शक्ति है जो ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधकार दूर करती है। एक शिक्षक किताबों का ज्ञान देने के साथ साथ हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, सही और गलत के बीच फर्क समझाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और हमारे सपनों को उड़ान देने का

0: विश्वास जगाती है। आज विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और इसी खुशी में आज सभी शिक्षक और सभी छात्र भी घर पर ही हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी में किसी न किसी शिक्षक का योगदान ज़रूर होता है। कभी डांट कर, कभी समझा कर, कभी फटकार कर, कभी एक छोटे से प्रोत्साहन के शब्द से शिक्षक अपने छात्रों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान लेते हैं। हमारी सहयोगी आशिता रघु ने इस पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की हैं, जिसमें उन्होंने बात की सहलील तोपासी जो एक शिक्षक हैं और डॉक्टर वर्षा भागीरथी कालीचरण से। ये पेश हैं ये खास रिपोर्ट।
1: डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने क्या खूब कहा है, एक वकील की गलती फाइलों में दब जाती है, एक इंजीनियर की गलती दीवार की ईंट के पीछे छिप जाती है, एक डॉक्टर की गलती कब्रिस्तान में दफन हो जाती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में छलकती है। इसलिए कहते हैं, ए मीडियोक्र टीचर टेल्स, अ गुड टीचर एक्सप्लेन्स, अ सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, बट अ ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। एक बच्चे के हाथ में पहली पेंसिल रखने से लेकर उसे अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने तक एक शिक्षक का हाथ हमेशा रहता है। शिक्षक सिर्फ पाठ्य पुस्तक के पन्ने नहीं पढ़ाता, वह बच्चों को जीवन पढ़ना सिखाता है।

0: गलती होने पर दोबारा कोशिश करना, असफलता के बाद उठ खड़े होना और अपने सपनों पर विश्वास करना, यही वे सबक हैं जो अक्सर किताबों से कहीं आगे होते हैं। लेकिन आज का समय शिक्षकों के लिए आसान नहीं है। बच्चों की दुनिया बदल रही है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने जानकारी को हमारी उंगलियों तक पहुंचा दिया है। ऐसे में शिक्षक की चुनौती से पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों को सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच फर्क समझाना भी है।
1: वर्तमान संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से भले ही शिक्षक की भूमिका धुंधली दिखाई देती है, किंतु उसके अस्तित्व की छाप हमेशा छात्र पर रहती है। शिक्षक न केवल छात्रों को पढ़ाते सिखाते हैं, अपितु जीवन जीने की कला जैसे संस्कार बच्चों में डालते हैं।

0: बदलती सोच, बढ़ती अपेक्षाएं और बच्चों की भावनात्मक जरूरतें एक शिक्षक से आज पहले से कहीं अधिक धैर्य, समझ और संवेदनशीलता की मांग करती है। फिर भी हर सुबह शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, मुस्कुराता है और एक नई शुरुआत करता है। शायद इसीलिए कि वह जानता है कि उसके सामने बैठे हर बच्चे में एक संभावना छिपी है। हो सकता है कि आज वह बच्चा खुद पर विश्वास न करता हो, लेकिन शिक्षक का एक प्रोत्साहन, एक सही शब्द उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
1: इस आधुनिक युग में एक शिक्षक होना चुनौतीपूर्ण तो है ही, फिर भी छात्रों का सही मार्गदर्शन करते हुए शिक्षक आजीवन छात्र की सफलता की कामना करती है।
0: एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कोई पदक या सम्मान नहीं, बल्कि वर्षों बाद किसी विद्यार्थी का ये कहना है, सर, मैडम, आपकी कही एक बात आज भी मुझे याद है। यही शिक्षक की असली विरासत है। आज शिक्षक दिवस पर उन सभी शिक्षकों को हमारा नमन, जो सिर्फ भविष्य के पेशेवर नहीं बल्कि भविष्य के इंसान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षक एक बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन उसकी सीख

0: मंत्री परिषद ने खाद्य फसलों की खेती में कीटनाशकों के दुरुपयोग और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों की जांच के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति गठित करने को मंजूरी दी है। इस समिति की अध्यक्षता कृषि उद्योग मंत्री करेंगे। समिति का काम आज से शुरू होगा। इसके तहत उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि मॉरिशस में कीटनाशकों के इस्तेमाल और कैंसर की बढ़ती व्यापकता के बीच कोई संभावित संबंध है या नहीं। जरा विस्तार से रिपोर्ट में।
1: मॉरिशस में खाद्य फसलों की खेती में कीटनाशकों के इस्तेमाल पर निगरानी और बढ़ाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने कृषि उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन पर ध्यान दिया है। समिति की जिम्मेदारी कीटनाशकों के गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभावों की जांच करना है। खासतौर पर यह भी देखा जाएगा कि क्या कीटनाशकों के इस्तेमाल और मॉरिशस में कैंसर के मामलों के बीच कोई संभावित संबंध है। देश में फिलहाल 10,000 से अधिक किसान हैं। फसलों की सुरक्षा के लिए कुछ किसान जैविक खाद्य और कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करती हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर कीटनाशकों का सीमित उपयोग किया जाता है। इस अंतर मंत्रालयी समिति की पहली बैठक आज सोमवार को होनी है। इसमें उपलब्ध आंकड़ों और वैज्ञानिक जानकारी की समीक्षा की जाएगी।
0: मॉरिशस इस साल के अंत तक अपना दूसरा उपग्रह यानी सैटेलाइट लॉन्च करने का इरादा कर रहा है। यह जानकारी मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के अंतरिम निदेशक प्रोफेसर तिसान बहुलन ने दी। वे सोमवार को मॉरिशस स्पेस स्ट्रेटेजी 2036 के अनावरण के मौके पर बोल रहे थे। उनको सुनते हैं।
2: मॉरिशस
1: में हमारा काम सैटेलाइट लॉन्च करना नहीं, बल्कि प्राप्त सैटेलाइट की जानकारियों का इस्तेमाल करना और विभिन्न मंत्रालयों व क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है, जिससे वे इन जानकारियों का इस्तेमाल कर सके। इसलिए हमारी रणनीति में क्षमताओं को मजबूत करना और जागरूकता बढ़ाना है। हम जनता और आर्थिक साझेदारों को सैटेलाइट से प्राप्त जानकारियों का प्रयोग करने के लिए सम्मिलित करना चाहते हैं।
0: इस रणनीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र को मॉरिशस के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के नए स्तंभ के रूप में विकसित करना है। मकसद सिर्फ शोध के लिए उपग्रह विकसित करना नहीं, बल्कि उपग्रहों से मिलने वाले आंकड़ों का बेहतर इस्तेमाल करना भी है, ताकि कृषि, ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसी वास्तविक चुनौतियों का समाधान किया जा सके। जरा जानकारी एक बार फिर से। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के अंतरिम निदेशक प्रोफेसर तिसान भावरन दे रहे हैं।
2: हम
1: विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक अंतरिक्ष एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। इटली के स्पेस एजेंसी के साथ जल्द एक संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। हम दुबई के स्पेस केंद्र के संपर्क में हैं। इसके साथ ही रोसकॉस्मोस ने हमारे साथ काम करने की इच्छा जताई है। इन सभी से स्पष्ट होता है कि मॉरिशस सैटेलाइट के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। स्पेस ड्रिवन ठेकेदारी को भी एक आर्थिक स्तंभ के रूप में विकसित करना चाहती है और इसके माध्यम से हम रेवेन्यू उत्पन्न कर पाएंगे। कई सेक्टरों में स्टार्टअप्स हैं और अब तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई स्टार्टअप नहीं मिला है, क्योंकि हम विशेष कर सैटेलाइट जानकारियों से संबंधित गतिविधियां शुरू करेंगे। यह संभव है कि छोटे स्टार्टअप्स विकसित करके कंपनियां बना पाएंगे।
0: विदेश खबरों में अमेरिका ने ब्रिटेन के रफ फेयरफोर्ड एयरबेस से अपने सारे बॉम्बर्स वापस बुला दिए हैं। एयरबेस को निशाना बनाने की कथित ईरानी साजिश के बीच एक नई और अज्ञात धमकी मिलने के बाद अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया। इन बॉम्बर्स को अब उनके ही होम बेस में तैनात किए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों ने से यूके स्थित इस एयरबेस के इर्द गिर्द सुरक्षा तेज की गई है, जब से एक गुट ने इस पर हमला बोलने की नाकाम कोशिश की थी। मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह बादल घिर रहेंगे।

आगे और बारिश होती रहेगी, खासकर पूर्वी दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लाटू पर। दिन के दौरान धूप होगी, रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी, खासकर आज सुबह के लिए दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 5:47 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 6:08 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज़ विभाग और तकनीकी पर यूसुफ का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: शोक समाचार सुनिए। पावे रोड रिविया जोहपा में 23 साल के 23 इयर्स ओल्डर के श्री हेमराज हरीश फुलचंद, जो कुश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके पिता संजय फुलचंद के मकान पावे रोड रिविया जोहपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोगुड लैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 2 PM। बुधपाल माका थोबोन में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मोहिनी जालिम, जो आवताओ के नाम से, जिनका पैदाशी नाम आवताओ था और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1:30 बजे उनके मकान गुटपाल माँ काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेतु काथोबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। बुलांजे रोड पिजन लेन मोंटाइब्लांश में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्यामती सुगंध, पैदाशी नाम बुधराम और जो विद्यामती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल मंगलवार को सुबह 10 बजे उनके मकान बुलांजे रोड पिजन लेन मोंटाइब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। स्वराज रोड पिछे राफ्रे में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमती रामधनी, पैराशी नाम ईसा की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान स्वराज रोड पिछिगाफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। पिछिपाके मोंटाइब्लांश में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती यानुबाई रत्नी, पैदाशी नाम रामा और जो विजयन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11:30 बजे उनके पति धनराज रत्नी के मकान पिछिपा के मोंटाइब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। महात्मा गांधी रोड पे चिराफे में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री कविराज भोला, जो नाना लाभ्रेत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनकी बेटी विमला भोला के मकान महात्मा गांधी रोड पिछिगाफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल पिछिगाफे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। सलाबी लेन फिनिक्स में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी होमिया, पैदाशी नाम कुशल और जो

लक्ष्मी के नाम से ज़रा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके रिश्तेदार दिशांत मियाँ के मकान सलाबी लेन फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टूटिया थॉक फर्स्ट 1 PM। रॉय रोड बुसोंश में, रॉय रोड बुसोंश में 68 साल के 68 years old के श्री हरे कृष्णा रत्नन, श्री हरे कृष्णा रत्नन जो किसना के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान रॉय रोड बुसोंश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैंप या बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 3 PM। सुल्फेगिनो नंबर 3 वाकवा में, सुल्फेगिनो नंबर 3 वाकवा में 89 साल के 89 years old के श्री सत्यानंद दीपचंद, श्री सत्यानंद दीपचंद जो माजो दालों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनके बेटे किशन दीपचंद के मकान सुल्फेगिनो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेगिनो नंबर 5 की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 10 AM। कावलेसौर रोड दिफ्रिया में, कावलेसौर रोड दिफ्रिया में 67 साल के 67 years old के श्री नीलाधर मंगल, श्री नीलाधर मंगल जो हरिदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 9 बजे उनके मकान कावलेसौर रोड दिफ्रिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9 AM। अलीमोंग पोस्ट फ्लैक में, अलीमोंग पोस्ट फ्लैक में 57 साल के 57 years old की श्रीमती सविता झड़ी, श्रीमती सविता झड़ी जो पिक पिक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 9 बजे उनकी माँ महिनी जहरी के मकान अलीमोंग पोस्ट फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9 AM। नंबर 3 अलीगढ़ मेबर्ग में, नंबर 3 अलीगढ़ निमेबर्ग में 68 साल की 68 years old की श्रीमती गोमती देवनारायण, श्रीमती गोमती देवनारायण पैदाशी नाम हमफुल और जो मैडम हमफुल के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 11 बजे उनके मकान थ्वाजियम अलीगढ़ मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बोलेन मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 11 AM। राडोद पेचित रिविया में, क्षमा करें, एवेन्यू स्यूकूफ कैथोबोन में, एवेन्यू स्यूकूफ कैथोबोन में 63 साल की 63 years old के श्री संदेश कुमार सिलोचन, श्री संदेश कुमार सिलोचन जो चिबाई के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे लाशा पेलाउदों दो मुहार रॉयल रोड पेचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 10 AM। सावान रोड नोवेल फ्रांस में, सावान रोड नोवेल फ्रांस में 64 साल की 64 years old की श्रीमती शर्मा कुमारी रामकरण, श्रीमती शर्मा कुमारी रामकरण पैदाशी नाम उदीन और जो शर्मा के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पति विनोद रामकरण के मकान सावान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माखीशानी रोजबैल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: ट्यून RM2 रेडियो मस्ती. गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बजे हैं.
1: मॉर्निंग बीट
2: चेंज RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: कोई चांस तो दे दे मेरी जान, तुम फिर उड़ान देखना। ऐसा सोचो कि कोई आपको चांस ही नहीं दिया हो, कोई आपको मौका नहीं देते। जस्ट ट्राई वेम टू बिकम द पर्सन दैट यू आर। और वो जो मौका देता है ना, उनको हम गुरु कहते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मॉर्निंग बीच हियर विद आरएमटी रेडियो। मस्ती मरिश्मा जोशी के आपका साथ दिवाने के लिए इन दिस मॉर्निंग शो। यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन तो हमारे साथ तो नीतू भी है। और स्पेशल थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस टीचर्स जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडियो में हमेशा हाजिर रहते हैं हमको मौका देने के लिए, सिखाने के लिए, एंड टू ट्यून अस इन द बेस्ट वे पॉसिबल। हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं, हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं। हमारी सीनियर है नितिशा। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग। तुमने पुकारा और हम चले आए।
0: आते आते आपको धन्यवाद देना चाहते हैं।
1: जिया जिया,
0: हमारे लिए वैसे फॉर मनीषमा गट हियर इन आरएमटी रेडियो मस्ती इज नितुषा।
1: अरे बाप रे।
0: एज अ सिंगर, एज अ पर्सन यू आर ऑलवेज गाइडिंग अस, एंड आई थैंक यू एंड आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हम हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहे।
1: तथास्तु बच्चा, तथास्तु। देखो यहाँ पर मैं मानती हूँ वी आर फैमिली।

0: लोग परिवार की तरह जीते हैं. तो यस सीनियर है, बस बड़ा बना दिया उसने, कोई बात नहीं. लेकिन आज वर्ल्ड टीचर्स डे है तो हमारे भी जितने शिक्षक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आभार व्यक्त करते हैं. अगर वो लोग नहीं होते, और सबसे पहले हमारी माँ जो होती है वो हमारी फर्स्ट टीचर है, और हमारे माता पिता जो फर्स्ट स्कूल, जो शिक्षालय, जो विद्यालय है वो हमारे घर से शुरू होता है, फिर हम बाहरी जो शिक्षा है वो सीखते हैं. तो जो भी है अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो पहले, फिर अपने जो टीचर्स हैं स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जो भी हो, क्योंकि अगर वो लोग नहीं है तो मार्गदर्शन जो रास्ता है सही डायरेक्शन वो लोग नहीं दिखा पाएंगे तो हम कहां जाएंगे. सो थैंक यू सो मच. एंड आप
1: यू हर्ड व्हाई आई कंसीडर हर एज द गुरु. उन्होंने एक ही माइक में सब कुछ समराइज कर दिया. मुझे तो देखो बैठने की बाकी नहीं है.
0: बार बार तो बुलाओगे नहीं, इसीलिए एक ही बारी मैंने सब कुछ बोल दिया है.
1: लेकिन हिट है. थैंक यू गुरु मां.
0: थैंक यू तथास्तु.
2: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
3: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: चलिए जी, थोड़ी देर में हम आप सभी को दरख्वास्त करने वाले हैं, रिक्वेस्ट करने वाले हैं टू प्लीज पार्टिसिपेट फॉर योर हैप्पी बर्थडे सरप्राइज. यस, जो आपके जिंदगी के बहुत करीब है, ऊपर से आपके दिमाग में आ रहा है कोई अपना स्पेशल जन्मदिन मना रहे हैं, यू कैन प्लीज रजिस्टर फॉर दैट पर्सन एंड विल मेक अ ब्यूटीफुल सरप्राइज. अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक ऑफ कोर्स विद शुभ दिरानी.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: So, Princess, qu'on va faire ce week-end?
4: Être bien sage?
3: Oui, mais aussi sauter sur des trampolines, plonger dans des piscines à boules et dévaler des toboggans lumineux! Parce que du 1er septembre au 31 décembre chez KFC, on reçoit un ticket pour Funtopia ou Gravity Max à Tribeca dans notre Chiki Fun Meal!
4: Ah ben, faudra être très sage alors!

0: साथ नच देने सारे फ्रॉम द मूवी बार बार देख. गुड मॉर्निंग अगेन. 7:00 अभी 16 मिनट हुए हैं. वैसे आज आपको याद दिला दे उन सभी टीचर्स के लिए, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे. यस, आज का दिन उन सभी टीचर्स को डेडिकेट है जो हमें सिर्फ बुक्स या नॉलेज भी नहीं देते लेकिन बल्कि जिंदगी जीने की सही राह भी दिखा देते हैं. गाइड्स और मेंटर के साथ साथ हमको साहस, एंकरेजमेंट और हमारे फ्यूचर पर भरोसा भी दिला देते हैं. वैसे भी के लिए लेट एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक विद म्यूजिक. ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट, कीप रजिस्टरिंग राइट नाउ फॉर योर बर्थडे ऑफ द डे. हैप्पी बर्थडे के साथ हैं ईच एंड एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे. रजिस्टर राइट नाउ 1549912294 पर विद योर नेम, योर एड्रेस, विद द पर्सन्स नेम्स एंड एड्रेस एंड फोन नंबर ऑल्सो.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: Les prix malins débarquent chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Les 500 grammes de Boneless Mutton Trunk Greenfield à 334,95 € et à l'achat d'une penderie d'1m60 de haut, gagnez 150 points WIV. De nombreuses offres vous attendent dans le rayon. Alors remplissez votre caddie à prix malin et profitez-en chez Winners. Retrouvez notre brochure sur winners.mu.
4: On est tous Winners.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: I know so many people are driving right now. Drive safe. We're here to keep you company with the best of music and good vibes. Here we go, ladies and gentlemen, for the birthday.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: This is special thank you goes out to each and everybody jinhone registered kiya hai. Thank you so much. After a lucky draw, we've got here someone really special jo aaj apna janmdin mana rahe hain. Lekin unfortunately, hum unse baat nahi kar payenge kyunki wo abhi drive par hai and he's going for work. Unka naam hai, batati hun. Vaise fiance Vidusha ki taraf se ye surprise aaya hai. Unka naam hai Abhishek. हैप्पी बर्थडे अभिषेक. आप यू कैन रिकॉग्नाइज योर सेल्फ बाय योर फियांसेस नेम विदुषा एंड आप अकाउंटेंट की तरह काम करते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ यू नो थिंग्स इन योर लाइफ. ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम RM2 रेडियो मस्ती टीम. हैप्पी बर्थडे टू यू अभिषेक.

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या बात है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन अभिषेक। वैसे आपको बता दूं कि आपको मिल रहा है एज अ सरप्राइज, इट्स अ वाउचर फ्रॉम लुलु हाइपरमार्केट फॉर टू यू फ्रॉम आरएम टू रेडियो मस्ती टीम। हैव अ वंडरफुल डे। वैसे गुड आउट टू ईच एंड एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग दिस स्पेशल डे विद अस राइट नाउ। वैसे जिनको हमने मिस किया है, लेकिन एक लकी ड्रॉ करने के बाद एक ही विनर मिलता है पर डे। वैसे डोंट मिस, अगर कल आपका जन्मदिन होगा या फिर somebody else's birthday है तो register right now, register every day, it's time for you to celebrate and हमारे साथ तो हमेशा मस्ती full on।
2: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2
3: Radio मस्ती।
1: 7:26 हुए हैं तो सर रंग डाल देते हैं आपकी जिंदगी में, आपके ड्राइव में। Smile, it's Monday, come on. All the best, mon courage.

0: बात है। वैसे 7:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर में आपको ले चलेंगी स्पोर्ट्स की दुनिया में, लेकिन अभी के लिए हम ना टीचर डे के साथ साथ आज स्पेशल डे मना रहे हैं कि डू समथिंग राइट डे, डू समथिंग राइट डे। वैसे आज है नेशनल डू समथिंग राइट डे, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि छोटी सी एक्शन भी किसी के दिन को बेहतर बना सकता है। व्हाट यू से, किसी की हेल्प कीजिए, किसी को काइंड वर्ड्स कहिए, एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए, या तो किसी के चेहरे पर एक छोटा सा मुस्कान ला दीजिए। राइट थिंग करने के लिए हमेशा बड़ा मौका जरूरी नहीं होता, हमेशा छोटी छोटी बात, छोटी छोटी एक्शंस भी क्रिएट कर देता है बड़ा डिफरेंस। तो आज एक सिंपल सा सवाल खुद से कीजिएगा कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ या क्या अच्छा कर सकती हूँ। डू समथिंग राइट, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड मेक अ डिफरेंस।
1: RM2 Radio Musti.
2: You, qui l'antenne t'es bien installée? Forget ça! Al port de l'abonnement Canal Plus, app only! Zéro l'antenne, zéro décodeur, zéro installation! Abonne-toi!

0: बाद मैंने सीखा है कि यार हमेशा टाइम को ग्रांटेड ना लिया करो, हमेशा हर एक सांस को आप वैल्यू करो. ऐसे अगर आप ऐसे ऐसे वैल्यू करेंगे तो नोबडी कैन जस्ट पुट यू डाउन. यू नो द वैल्यू ऑफ लाइफ, यू नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम ऑल्सो. अरे ये वक्त हमारा है, इसे खिलखिल जी लीजिएगा. हेलो, आप कहाँ हो? ऑफकोर्स पहुंच ही जाइए जहाँ आपको आपको पहुंचना है. वैसे 5499-1294 पर ये है नंबर पहुंचाने के लिए आपके मैसेजेस. ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू, योर पार्टिसिपेशन एंड एवरीथिंग एल्स. थोड़ी देर में बोल सकते स्टिल वेल कनेक्टेड.
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: good beat for your morning show. James.
1: RM2, Radio Musty in the mix.
2: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Sports News. 7:39 हुए हैं आप जुड़े हैं इनटू रेडियो मस्ती के साथ हियर वी गो फॉर द स्पोर्ट्स अपडेट्स विद अरविंद जी गुड मॉर्निंग टू यू
4: गुड मॉर्निंग आपको गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड UEFA नेशंस लीग के लीग ए ग्रुप 2 में फिर से जर्मनी फंस गया हार तो नहीं हुई पर चार मैचों में एक हार के साथ दो ड्रॉ आगे चल के भारी पड़ सकते हैं यर्गन क्लॉप की टीम पर नए बॉस के लिए खट्टी मीठी शुरुआत ग्रीस 0 जर्मनी 0 फ्लोरियन वर्ट्स टीम का कप्तान था इस ग्रुप में ग्रीस की एक भी हार नहीं हुई है दो जीते हैं दो ड्रॉ टोटल आठ अंक 8 points नेदरलैंड के पास भी हैं कल नेदरलैंड की जीत हुई सर्बिया के खिलाफ 2-1 के स्कोर पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने विनिंग गोल स्कोर किया पहला गोल क्रूप मेनेज का रहा अपनी राष्ट्रीय टीम नेदरलैंड्स के साथ कप्तान वर्जिल वान डाइक का ये 100वां मैच था सेंचुरी इंटरनेशनल अपीयरेंसेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना फिर से पोर्टुगल की जीत पोर्टुगल 2-1 फर्स्ट हाफ में युआओ कांसेलो का गोल इक्वलाइज किया आया ने फिर सेकंड हाफ में गोंजालो रामोस ने पोर्टुगल को जीत दिलाई

0: इस मैच में नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग आलोन को चोट लगी है, सेकंड हाफ में उसे निकालना पड़ा। अगले प्रीमियर लीग मैच में वो खेलेगा, मतलब लिवरपूल के खिलाफ वो खेल पाएगा या नहीं अभी तक पता नहीं। पोर्टुगल अपने ग्रुप में 6 अंक से आगे है, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क जिसने कल वेल्स को 1-0 से हराया। मतलब पोर्टुगल और डेनमार्क के बीच पहले दूसरे स्थान के बीच 6 अंकों का फासला, बचे हैं 2 मैच, पोर्टुगल 6 अंक आगे, क्वालिफिकेशन पक्का। लीग बी ग्रुप 3 में कोसोवो 1, ऑस्ट्रिया 1, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 1, इसराइल 1। लीग डी ग्रुप 1 में माल्टा 1, अंडोरा 0। लीग डी ग्रुप 2 में अजरबैजान 1, लिथुआनिया 0। आज के मैच लीग ए ग्रुप 1 में फ्रांस वर्सेस बेल्जियम, इटली वर्सेस टर्की। बाकी फिक्सचर्स, नॉर्दर्न आयरलैंड जॉर्जिया, यूक्रेन का मुकाबला हंगेरी से होगा, बोस्निया वर्सेस पोलैंड, रोमेनिया स्वीडन, साइप्रस लातविया, मोंटेनेग्रो खेलेगा आर्मेनिया के खिलाफ। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज, कहने के लिए फ्रेंडली मैच था, पर अर्जेंटीना ने बेरहमी से बुर्किना फासो को पछाड़ा 7-0 के भारी स्कोर पर। लुतारो मार्टिनेज, क्रिस्टियानी, पाज, अल्वारेस, सिमियोने, मास्तांतियोने के साथ अमाजालो का एक ऑन गोल। यूएसए की जीत 3-0 से मेक्सिको पर, कोमोरो 0 सेनेगल 1, इजिप्ट 0 दक्षिण अफ्रीका 1, मोरक्को 1 माली 1, किर्गिस्तान 3 लेबानन 1। आज के फ्रेंडली मैचों में रुवांडा केन्या, लिश्टेनशाइन वर्सेस जिब्राल्टर, युगांडा का मुकाबला कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से और मॉरिशस वर्सेस श्रीलंका। 7 बजे को 2 में ये मैच खेला जाएगा। पहले मैच में आपको याद होगा क्लब एम की आसान जीत हुई थी 3-0 से। प्रीमियर लीग की वापसी होगी इसी शनिवार को, सैटरडे मैच अर्ली किक ऑफ है आर्सेनल और लीड्स यूनाइटेड के बीच, फिर एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी बोर्नमुथ, इपस्विच टाउन फुलहम, सन्डरलैंड ब्राइटन, लेट मैच 8:30 मैनचेस्टर यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर, फिर संडे फिक्स्चर्स क्रिस्टल पैलेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, हल सिटी एवर्टन और लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी, ये 7:30। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग में बहरीन ग्रैंड प्री में मैक्स वेरस्टापेन की जीत, रेड बुल टीम के साथ इस साल ये उसकी पहली जीत है। चैंपियनशिप में किमी राइकोनेन अब रसल से 84 रन आगे है, बचे हैं 7 या 8 रेसेस। टेनिस, चाइना ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचा नोवाक जोकोविच, क्वार्टर फाइनल में जोको ने वर्ल्ड नंबर 2 वेरेव को हराया 4-6, 6-4, 6-4 से। सेमीफाइनल में उसका सामना है डैनियल मेडवेदेव से। चाइना ओपन में ही वर्ल्ड नंबर 2 अरीना साबालेंका की हार हुई, 34th ranked निकोला बातुंकोवा ने साबालेंका को एलिमिनेट किया, टॉप सीड रिबाकिना भी आउट हो गई। जापान ओपन में कार्लोस अल्काराज सेमीफाइनल में है, सेमीफाइनल में उसका सामना अपने हमवतन स्पेन के योम मुनार से है। बॉक्सिंग, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में लगने वाले एलीट अफ्रीकन चैंपियनशिप में मॉरिशस के 6 मुक्केबाज भाग लेंगे। बैडमिंटन, अंडर 19 अफ्रीकन चैंपियनशिप से हमारे प्रतिनिधि 5 मेडल वापस ला रहे हैं जीतकर, इस स्वर्ण 1 स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल एल्जा और क्याहा हाउ होंग की जोड़ी रंगलाई विमेन्स सिंगल विमेन्स डबल्स में अफ्रीकी चैंपियन बनी। सिंगल्स में जोनाथन निंग विंग लिथ और ज्ञानेश चेंग्या ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए। बॉयज डबल में प्रणव बोगिरोची और ज्ञानेश चेंग्या ब्रॉन्ज मेडल ला पाए और टीम मिक्स टूर्नामेंट में भी मॉरिशस के नाम ब्रॉन्ज मेडल। क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल लेवल पर रोशनोआ स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है, कल गुडलैंड्स की बेलमो एफसी ने वेल लायंस को 1-0 से हराया। दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते वैसे आज टीचर्स डे है, तो उन सभी टीचर्स, उन सभी एजुकेटर्स को सलाम। स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, सो वी से स्पेशल हाई स्पेशल सल्यूट टू ऑल दोज फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर्स जो शुरू से ही हमारे एथलीटों को, हमारे नौजवानों को तैयार करते हैं फिजिकल एजुकेशन में, आगे चलकर उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनका मार्गदर्शन, उनको एडवाइस करते हैं, तब जाकर चैंपियन बनते हैं, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ इस प्रोग्राम में। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज चैंपियंस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल week ahead.
1: Thank you so much for the update, Sarvinji.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Decor.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए जी, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं. आई वुड विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. वैसे स्पेशल हैप्पी बर्थडे मैसेजेस बिकॉज मॉर्निंग शो है एंड यू जस्ट वांट टू सी द अपॉर्चुनिटी टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे फॉर ऑल योर डियर वंस. सो यू आर द मोस्ट वेलकम हियर ऑन दिस नंबर 549912 94. पर नमस्ते, आई एम रेशमा लक्ष्मण फ्रॉम रिविया दी क्रियोल. टुडे इज माई फादर्स भाई टिप्सू का बर्थडे है और उनको ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं भाई पेशा के नाम से. ओके, वो रहते हैं मेबग एंड मॉम सिला की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर यू. चाचा जी, आप सेलिब्रेट कीजिएगा अपने परिवार के साथ, ढेर सारी शुभकामनाएं. एंड ऑफकोर्स आई गेट हियर टीम केविन हियर फ्रॉम रिविया जोम्पा. टुडे सेलिब्रेटिंग टू स्पेशल डेज एंड टीचर्स डे इज माई वाइफ बर्थडे ऑल्सो अनुषा. उनको ढेर सारी शुभकामनाएं. वन विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. ओके जी, फ्रॉम हस्बैंड नमस्ते जी, विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे. इट्स फ्रॉम नीना ऑफ क्रेवके ऑल्सो. हेलो RM2 रेडियो मस्ती, वन विश अ वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू माई फ्रेंड. कल उनका जन्मदिन था. उनका नाम है देवना हमसहा जो विलबाग रहती है. और मेरी दोस्त हमेशा खुश रहे, यही मेरे दिल की इच्छा है. फ्रॉम पूनम लालमाची से थैंक यू. यहाँ पर हेलो जी, माय मदर्स बर्थडे है आज. अनुषी तो वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम लट्स ऑफ लव. ओके, लट्स ऑफ लव फ्रॉम हर डॉटर्स एंड हबी की तरफ से भी इधर सारी शुभकामनाएं आपको. ओके जी, अभी के लिए कंटिन्यू विद म्यूजिक एंड थोड़ी देर में आप जुड़े रहिए हमारे साथ. बस 9 मिनट के बाद हम आपको ले चलेंगे भोजपुरी के समाचारों की ओर.
3: Music all day long.

0: सबके के नमस्ते। संक्षिप्त समाचार सुना जा। मॉरिशस में पानी के लेके की स्थिति जस्ती चिंता के जनक होगल बाते। जल संसाधन आरी संचालन के लेके काल ऊर्जा आरी सार्वजनिक सेवा मंत्री पत्रिका कास्यावादन की अध्यक्षता में एगो आपात स्थिति के बैठक लगावल जाए। देश के जलाशय में पानी के स्तर कमती हुआ बाटे। महोवाकवा में खाली 36.6% पानी बचल बाटे। जे कोनो सुधार नहीं आल त साल के अंत लेक दिसंबर महीना लेक पानी के स्तर 20% से कमती हो जाए। एक चलत कई गो सख्त कदम उठावल जाए। आरी इस सब बदलाव में जुन बदलाव आनल जाए सब कदम में ओकर जिम्मेदारी अकाल लगे होला समिति के हो। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के लंदन मिशन के तहत मुख्य रूप से शगुस मामला पर चर्चा करल गल। प्रधानमंत्री बरतानी राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जोनाथन पोवल संगे भेंट करलन। प्रधानमंत्री दफ्तर बगल से एगो कम्युनिके जारी करल गल जुन में ई जानकारी देवल गल। ई मुलाकात के उद्देश्य शगुस द्वीप समूह पर मॉरिशस के संप्रभुता के मामला के आगे बढ़ाए के है। हालांकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ई फैसला के सख्त खिलाफ हवन। प्रधानमंत्री 26 सितंबर के अपन मिशन खातिर लंदन गयलन। प्रधानमंत्री बोलन कि ऊ देश के प्राथमिकता के पूरा करे खातिर प्रतिबद्ध हवन। आज विश्व शिक्षक दिवस मनावल जात बाटे। जुन गुरु बाटे ऊ खाली एगो शब्द नहीं है बखेर जीवन के दिशा देवे होला ऊ शक्ति है जे ज्ञान के रोशनी से अज्ञान के अंधकार के दूर करेलन। एगो शिक्षक किताब के ज्ञान दे के संगे संगे हमनी के जीवन जिए के तरीका सिखावेलन। सही गलत के बीच फर्क समझावेलन। मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ाए के हौसला देवेलन। आरी हमनी के सपना के उड़ान दे के विश्वास देवेलन। हर सफल जना के कहानी में कोनो न कोनो शिक्षक के योगदान जरूर बाटे। आज ई खास दिन पर ही सब गुरुजी बहन जी सब अध्यापक लोग के याद करल जात बाटे। विदेश के खबर में अमेरिका ब्रिटेन के राफ फोर्ट एयरबेस से अपन सब बॉम्बर्स वापस बुला दिले बाटे। एयरबेस के निशाना बनाए के ईरानी साजिश के बीच एगो नावा धमकी मिलल बाटे जेकर बाद अमेरिका ई बड़ा कदम उठैलक। ये सब बम के अब उनकर होम बेस में तैनात करल गल है। गायल कुछ दिन से यूके स्थिति एयरबेस के इर्द गिर्द सुरक्षा तेज करल गल है जब से एगो गुट ई पर हमला बोले के कोशिश कर ले रहल। तय रहल संक्षिप्त समाचार तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की आज्ञा दिया। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
2: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
3: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: वेलकम बैक, इट्स द सेकंड आवर ऑफ योर मॉर्निंग बीट. 8:08 हुए हैं, लेते हैं अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक एंड लेट्स फाइंड आउट मौसम का हाल विद आरएमटी रेडियो मस्ती. हियर वी गो.
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
2: ऑन इट टू स्विनर्स.
3: स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं. दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान. आज सुबह बादल घिरे रहेंगे और वर्षा होती रहेगी, खासकर पूर्वी दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर. दिन के दौरान धूप रहेगी. रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं. प्रवाह रेखा के परिदक्षिण में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी. आज सुबह दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जा रही है. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह सूर्योदय 5:47 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 6:08 पर होगा.
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Les prix malins débarquent chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Alimentation, boissons, produits pour la maison et bien plus encore. De nombreuses offres vous attendent dans nos rayons. Alors remplissez votre caddie à prix malin et profitez-en chez Winners. Retrouvez notre brochure sur winners.me.
5: On est tous Winners.
1: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: 8:13 हुए हैं, आप जुड़े हैं आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। वैसे मैं तो जानती हूँ कि आधी से ज्यादा लोग भी तो तैयार हो रहे हैं, रश कर रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं अपने काम की ओर, लेकिन कुछ लोग तो बस सुबह का ये जो वक्त होता है मी टाइम के लिए निकाल देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, थोड़ा सा योगा, थोड़े से एक्सरसाइजेस एंड दे आर गुड गुड टाइम इन द मॉर्निंग। वैसे स्लो मॉर्निंग भी अच्छी अच्छी होती है, लेकिन अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन विल रश यू एंड द सॉन्ग एंड द ट्रैफिक अपडेट, यू नो हाउ इट गोस।
1: Good time! Get un soleil pécoussé avec un bon zinger, finger licking good time!
2: With KFC, make it a finger licking good time!
3: Finger licking good! KFC!
4: Oula Banzen! Tout est en 18 et 30 ans, nous pouvons atteindre toi les 31 octobre, l'embrasure, le monde pour nous premier SBM Trail! Imagine un déco en plein artille, loin domaine 8

0: You're listening to RM2 Radio Masti.
1: आठ बजकर 50 मिनट हुए हैं अब जुड़े हैं इनटू रेडियो मस्ती एंड हियर वी गो फॉर द कोट ऑफ द डे सिंस इट्स टीचर्स डे तो उसी के आधार पर अ गुड टीचर कैन इंस्पायर होप इग्नाइट द इमेजिनेशन एंड इंस्टिल अ लव ऑफ लर्निंग ब्रैड हेनरी कहता है एक टीचर सिर्फ क्लासरूम में लेसन्स नहीं देता बल्कि स्टूडेंट के अंदर उम्मीद कॉन्फिडेंस और नए सपने जगाता है एक अच्छी टीचर की एक छोटी सी एंकरेजमेंट ही किसी स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बदल सकती है उससे नॉलेज देना और इम्पोर्टेंट लेसन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उनके करैक्टर्स वैल्यूज और सेल्फ बिलीव देना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसलिए टीचर को सिर्फ एडुकेटर्स नहीं बल्कि फ्यूचर के बिल्डर्स कहा जाता है आप जो आज एक स्टूडेंट के दिल और

0: और दिमाग में सो करते हैं ना, वही कल एक बेहतर सोसाइटी के रूप में ग्रो करता है। तो दिल से थैंक यू, अ गुड मॉर्निंग, अ वंडरफुल डे अहेड।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: जेम्स RM2 Radio Musty in the mix. Jeez, the video.

आंखों से तू नहीं, वैसे अच्छी अच्छी आंखें, अच्छी अच्छी आईसाइट, इसका होना भी बहुत ही जरूरी है. लेट्स टॉक अबाउट अ फ्रूट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी टॉक अबाउट पपाया. वैसे पपाया सिर्फ एक टेस्टी फ्रूट ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए बहुत ही यू नो बेनिफिशियल है. इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, फाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं इसमें, जो डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए और आई हेल्थ यस, नज़रों की स्वास्थ्य के लिए और हेल्दी स्किन के लिए सपोर्ट भी करता है पपाया. पपाया यू नो लाइट और न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही यू नो फ़ायदेमंद साबित होता है आपकी हेल्दी डाइट में, इंक्लूड भी कर सकते हैं, हेल्दी चॉइसेस भी कर सकते हैं. सो चूज़ पपाया. तो आज से ही एक हेल्दी फ्रूट चूज़ कीजिएगा. मैंने शुरुआत की थी एप्पल एंड बनाना, आज हमने बात की है पपाया के बारे में. तो आई होप कि आप सुन रहे हो और आप उसको यू नो यू ट्राई टू इंक्लूड इट इन योर डेली डाइट ऑल्सो. हैव अ वंडरफुल डे. 8:35 हुए हैं.

0: News.
1: Radio Musty in the mix.
2: आठ बजकर 41 मिनट हुए हैं, आप जुड़े आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. जिन्होंने मिस किया है स्पोर्ट्स अपडेट, अभी के लिए फिर से सुनिएगा. हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग एंड कैच अप विद अरविंद जी. गुड मॉर्निंग टू यू.
3: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग आरएम टू लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. यूईएफए नेशंस लीग के लीग ए ग्रुप टू में फिर से जर्मनी फंस गया. हार तो नहीं हुई पर चार मैचों में एक हार के साथ दो ड्रॉ. आगे चल के भारी पड़ सकते हैं यर्गन क्लॉप की टीम पर. नए बॉस के लिए खट्टी मीठी शुरुआत. ग्रीस 0 जर्मनी 0. फ्लोरियन वर्ट्ज़ टीम का कप्तान था. इस ग्रुप में ग्रीस की एक भी हार नहीं हुई है. दो जीते हैं, दो ड्रॉ. टोटल आठ अंक 8 पॉइंट्स नेदरलैंड के पास भी हैं. कल नेदरलैंड्स की जीत हुई सर्बिया के खिलाफ 2-1 के स्कोर पर. मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने विनिंग गोल स्कोर किया. पहला गोल क्रूप मेनेज का रहा. अपनी राष्ट्रीय टीम नेदरलैंड्स के साथ कप्तान वर्जिल वैन डाइक का ये 100वां मैच था सेंचुरी इंटरनेशनल अपीयरेंसेस. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना फिर से पोर्टुगल की जीत. पोर्टुगल 2 नॉर्वे 1. फर्स्ट हाफ में युआओ कांसेलो का गोल इक्वलाइज किया आईया ने. फिर सेकंड हाफ में गोंजालो रामोस ने पोर्टुगल को जीत दिलाई. इस मैच में नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग आलोन को चोट लगी है. सेकंड हाफ में उसे निकालना पड़ा. अगले प्रीमियर लीग मैच में वो खेलेगा, मतलब लिवरपूल के खिलाफ वो खेल पाएगा या नहीं अभी तक पता नहीं. पोर्टुगल अपने ग्रुप में 6 अंक से आगे है. दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, जिसने कल वेल्स को 1-0 से हराया. मतलब पोर्टुगल और डेनमार्क के बीच, पहले दूसरे स्थान के बीच 6 अंकों का फासला. बचे हैं 2 मैच. पोर्टुगल 6 अंक आगे, क्वालिफिकेशन पक्का. लीग बी ग्रुप 3 में कोसोवो 1 ऑस्ट्रिया 1 रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 1 इसराइल 1. लीग डी ग्रुप 1 में माल्टा 1 अंडोरा 0. लीग डी ग्रुप 2 में अजरबैजान 1 लिथुआनिया 0. आज के मैच लीग ए ग्रुप 1 में फ्रांस वर्सेस बेल्जियम, इटली वर्सेस टर्की. बाकी फिक्सचर्स, नॉर्दर्न आयरलैंड जॉर्जिया, यूक्रेन का मुकाबला हंगेरी से होगा, बोस्निया वर्सेस पोलैंड, रोमेनिया स्वीडन, साइप्रस लातविया, मोंटेनेग्रो खेलेगा आर्मेनिया के खिलाफ. इंटरनेशनल फ्रेंडलीज, कहने के लिए फ्रेंडली मैच था पर अर्जेंटीना ने बेरहमी से बुर्किना फासो को पछाड़ा 7-0 के भारी स्कोर पर. लोतारो मार्टिनेज, क्रिस्टियानी, पाज, अल्वारेस, सिमियोनी, मास्तांतियोनी के साथ अमाजालो का एक ऑन गोल. यूएसए की जीत 3-0 से मेक्सिको पर. कोमोरो 0 सेनेगल 1, इजिप्ट 0 दक्षिण अफ्रीका 1, मोरक्को 1 माली 1, किर्गिस्तान 3 लेबानन 1. आज के फ्रेंडली मैचों में रुवांडा केन्या, लिश्टेनसाइन वर्सेस जिब्राल्टर, युगांडा का मुकाबला कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से और मॉरिशस वर्सेस श्रीलंका. 7 बजे को 2 में ये मैच खेला जाएगा. पहले मैच में आपको याद होगा क्लब एम की आसान जीत हुई थी 3-0 से. प्रीमियर लीग की वापसी होगी इसी शनिवार को. सैटरडे मैच अर्ली किक ऑफ है आर्सेनल और लीड्स यूनाइटेड के बीच. फिर एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी बोर्नमुथ, इपस्विच टाउन फुलहम, सन्डरलैंड ब्राइटन. लेट मैच 8:30 मैनचेस्टर यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर. फिर संडे फिक्स्चर्स, क्रिस्टल पैलेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, हल सिटी एवर्टन और लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी, ये 7:30. फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग में बहरीन ग्रैंड प्री में मैक्स वेरस्टापेन की जीत. रेड बुल टीम के साथ इस साल ये उसकी पहली जीत है. चैंपियनशिप में किमी राइकोनेन अब रसल से 84 रन आगे है. बचे हैं 7 या 8 रेसेस. टेनिस, चाइना ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचा नोवाक जोकोविच. क्वार्टर फाइनल में जोको ने वर्ल्ड नंबर 2 वेरेव को हराया 4-6, 6-4, 6-4.

0: बिहार से। सेमीफाइनल में उसका सामना है दानिल मेदवेदेव से। चाइना ओपन में ही वर्ल्ड नंबर 2 अरीना साबालेंका की हार हुई। 34th ranked निकोला बातुंकोवा ने साबालेंका को एलिमिनेट किया। टॉप सीड रिबाकीना भी आउट हो गई। जापान ओपन में कार्लोस अल्काराज सेमीफाइनल में है। सेमीफाइनल में उसका सामना अपने हमवतन स्पेन के योम मुनार से है। बॉक्सिंग कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में लगने वाले एलीट अफ्रीकन चैंपियनशिप में मॉरिशस के 6 मुक्केबाज भाग लेंगे। बैडमिंटन अंडर 19 अफ्रीकन चैंपियनशिप से हमारे प्रतिनिधि 5 मेडल वापस ला रहे हैं जीतकर। इस स्वर्ण एक स्वर्ण पदक है गोल्ड मेडल एल्जा और क्याहा हाउ होंग की जोड़ी रंगलाई वुमेन्स डबल्स में अफ्रीकी चैंपियन बनी। सिंगल्स में जोनाथन निंग विंग लिट और ज्ञानेश चेंग्या ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए। बॉयज डबल में प्रणव बोगिरोची और ज्ञानेश चेंग्या ब्रॉन्ज मेडल ला पाए और टीम मिक्स टूर्नामेंट में भी मॉरिशस के नाम ब्रॉन्ज मेडल। क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल लेवल पर रोशनवा स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। कल गुडलैंड्स की बेलमो एफसी ने वेल लायंस को 1-0 से हराया। दिस आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते वैसे आज टीचर्स डे है तो उन सभी टीचर्स उन सभी एजुकेटर्स को सलाम। स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है सो वी से स्पेशल हाई स्पेशल सल्यूट टू ऑल दोज फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर्स जो शुरू से ही हमारे एथलीटों को हमारे नौजवानों को तैयार करते हैं फिजिकल एजुकेशन में। आगे चलकर उनको ट्रेनिंग देते हैं उनका मार्गदर्शन उनको एडवाइस करते हैं तब जाकर चैंपियन बनते हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ इस प्रोग्राम में। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज चैंपियंस। टेक केयर बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड।
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी। थैंक यू फॉर द रिकैप आल्सो। हैव अ वंडरफुल डे।
2: मॉर्निंग बीट A good beat for your morning show. James.
3: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: ही उठकर बस मुस्कुराते रहे, एंजॉय करते रहे हमारी बीत के साथ, हमारी म्यूजिक के साथ। गुड मॉर्निंग टू यू, मीठी मीठी ठाशनी, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू। क्या बात है, जस्ट ड्रॉप ऑफ अवर मैसेज, ब्यूटिफुल, से समथिंग नाइस, से समथिंग राइट। इट्स द हिट रेडियो मस्ती, गीता सीता बलराम फ्रॉम शतबिनागस। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी टीचर्स डे टू मी एंड टू माय कलीग्स। क्या बात है, आपका खुद का जन्मदिन, ऊपर से आप टीचर भी हैं, लेकिन आपने नाम नहीं बताया, क्यों नहीं? यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस सेइंग बॉन कुराज, गुड डे, नमस्ते, ऑसम डे टू यू ऑल। चलिए जी, आप एंजॉय कीजिएगा हर एक मिनट, हर एक समय हमारे साथ। तो नारम टू रेडियो मस्ती, अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन आई एम गोना चेंज अ बिट द बीट, एंड भैया जी सुपर हिट मूवी से लिया गया ये गाना, इन द वॉइस ऑफ यसीर दसाई, द नैना कमिंग अप राइट अवे राइट नाउ। वैसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ओके जी, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: RM2 रेडियो मस्ती, Oula Banzen, tu es né en 18 et 30 ans, nous péatin toi les 31 octobre, l'embrasure, le monde pour nous premier SBM Trail. Imagine un déco en plein attire, loin de domaine.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: चलिए इसी गाने के साथ बस जाने का समय हो चला है। ये चेक है गाइस, एंड ऑफ कोर्स आप बस म्यूजिकल सिलेक्शन को एंजॉय कीजिएगा। हमारे बाद बस आने ऐसे ऐसे शो आपको बस एंजॉय करवाने के लिए। गुड डे एंड गुड मॉर्निंग। शो कंटिन्यूज, द म्यूजिक कंटिन्यूज।

0: 9 बजे है, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे याचना। नमस्कार।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति चिंताजनक जताई जा रही है। जल संचालन को लेकर कल ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा मंत्री पैट्रिक असियावादेन की अध्यक्ष

0: अध्यक्षता में एक आपात समिति लगाई जाएगी। देश के जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। महोबाकवा में मात्र 36.6% पानी है। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो साल के अंत तक यानी दिसंबर तक पानी का स्तर 20% की रेखा से कम हो जाएगा। इसके चलते कई सख्त कदम निर्धारित हैं और समिति में बदलाव लाने की जिम्मेदारी डाली जा रही है जो कल लगने वाली है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के लंदन मिशन के तहत मुख्य रूप से शागस मामले पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने बरतानी राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जोनाथन पावल के साथ आमने सामने मुलाकात की। प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा जारी कम्युनिके में इस बात की जानकारी दी गई है। इस मुलाकात का उद्देश्य शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता के मामले को आगे बढ़ाना है। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री 26 सितंबर को अपने इस मिशन के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज का दिन उन सभी को समर्पित जो हमें जीवन की राह दिखाते हैं। शिक्षक सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली वह शक्ति है जो ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधकार दूर करती है। एक शिक्षक किताबों का ज्ञान देने के साथ साथ हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, सही और गलत के बीच फर्क समझाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और हमारे सपनों को उड़ान देने का विश्वास भी हम में जगाते हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी में किसी न किसी शिक्षक का योगदान ज़रूर होता है। डांट कर, फटकार कर, कभी समझा कर, कभी एक छोटे से प्रोत्साहन के शब्द से शिक्षक अपने छात्रों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान लेते हैं। आज का दिन उन सभी को सभी शिक्षकों को समर्पित है और आज के दिन विशेष रूप से उन्हें नमन किया जा रहा है। मॉरिशस अफ्रीकी वित्तीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का शुभारंभ 7 अक्टूबर को एबेन में किया जाएगा। इस अवसर पर करीब 200 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है जिनमें अफ्रीका के विभिन्न देशों से आए लगभग 160 प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंत्री ज्योति जितन के अनुसार अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का उद्देश्य अफ्रीकी पूंजी बाजारों के विकास में योगदान देना है। मॉरिशस इस साल के अंत तक अपना दूसरा उपग्रह लानी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। ये जानकारी मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के अंतरिम निदेशक प्रोफेसर टीसान बहरन ने दी। वे सोमवार को मॉरिशस स्पेस स्ट्रैटेजी 2036 के अनावरण के मौके पर बोल रहे थे। इस रणनीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र को मॉरिशस के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के एक नए स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करना है। विदेशी समाचारों में अमेरिका ने ब्रिटेन के रफ फेयरफोर्ड एयरबेस से अपने सारे बॉम्बर्स वापस बुला लिए हैं। एयरबेस को निशाना बनाने की कथित ईरानी साजिश के बीच एक नई और अज्ञात धमकी के बाद ऐसा किया गया। इन बॉम्बर्स को अब उनके ही होम बेस में तैनात किए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों ने यूके स्थित इस एयरबेस के इर्द गिर्द सुरक्षा तेज कर दी गई जिसके जब से एक गुट ने इस पर हमला बोलने की नाकाम कोशिश की थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन। Your news on NBC Play and NBC.mu.
1: Welcome to RM2. Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: गुड मॉर्निंग, इट्स दमनी। स्वागत है आप सबका मस्ती मॉर्निंग में, जहाँ सुबह की शुरुआत होती है गुड वाइब्स, बॉलीवुड बीट्स और थोड़ी सी मस्ती के साथ। और ऊपर से आज का दिन थोड़ा और स्पेशल है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं टीचर्स डे। वो टीचर याद है ना, जो होमवर्क ना करने पर डांटते भी थे, लेकिन एग्जाम के टाइम पर एक्स्ट्रा हेल्प भी करते थे। वो टीचर जिन्होंने सिर्फ किताबें नहीं बल्कि लाइफ के लेसन्स भी सिखाए हैं। आज एक बार दिल से थैंक यू बोलिए अपने किसी फेवरेट टीचर को व्हाट्सएप के जरिए या फिर सरप्राइज करके, क्योंकि कुछ टीचर्स क्लासरूम से निकल जाते हैं लेकिन उनकी बातें ना जिंदगी भर साथ रहती है। तो टीचर्स के नाम एक बड़ा सा सैल्यूट अभी के लिए। बैक इन टू द गुड म्यूजिक आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: यस, मोहित चौहान की आवाज में था, वो चिकरी चिकरी गाना ऐसा होना चाहिए जिसे बिल्कुल अच्छी फील आए और सुबह के मूड को और भी ब्राइट करे। मस्ती मॉर्निंग में तो पॉजिटिविटी का पीरियड शुरू हो चुका है, आप बस अटेंडेंस के लिए हाजिर हो जाओ।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: एंड यस, आप कनेक्टेड हो चुके हो आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ. सो बेफिक्र चलते रहिए हमारे साथ, क्योंकि गानों के साथ साथ आपका हॉरोस्कोप भी लेकर आने वाली है कुछ ही देर में. आज का लकी नंबर और कलर कौन सा होगा कुछ ही देर में विल गेट टू नो. यहीं पर आप रहना है कनेक्टेड. तो चलिए डाइव राइट बैक इनटू द गुड म्यूजिक. इस बार अरमान मलिक की आवाज में आपके लिए खास ऑन दिस ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: And yes, सभी के लिए सीधा आपकी राशि फल लक की तरफ बढ़ते हैं. शुरुआत करते हैं with
2: Aries मेष राशि.
1: आज दिल की कोई बात फाइनली क्लियर हो सकती है. घर परिवार या पर्सनल मैटर में पीस मिलेगा और क्रिएटिविटी भी हाई रहेगी. जो काम रुक गया था उसको दोबारा करने का परफेक्ट दिन है. लकी कलर आज आपका है कोरल और नंबर है 9.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज ना सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है. टीम वर्क से काम और स्मूथ होगा. अपनी नॉलेज शेयर कीजिए क्योंकि आपकी एक एडवाइस किसी और के काम आ सकती है. लकी कलर आपका है एमराल्ड ग्रीन और नंबर है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: थोड़ा स्लो होना आज वीकनेस नहीं है बल्कि विजडम है. किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए और असम्पशंस के बजाय सीधा सवाल पूछिए. क्लैरिटी मिल जाएगी आपको. लकी कलर आपका है स्काई ब्लू और नंबर है 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है. आपकी मेहनत नोटिसेबल होगी और अप्रिसिएशन आपका मूड बना सकता है. दिल की सुनिए लेकिन इमोशनल शॉपिंग से थोड़ा बचिए. लकी कलर आपका है पर्ली व्हाइट और नंबर है 2.
2: लियो सिंह राशि.
1: हर स्पॉटलाइट आपको स्टेज पर खड़े होकर नहीं मिलती है. कभी बैक स्टेज की मेहनत भी मैजिक करती है. आज क्वाइटली पेंडिंग कामों को कंप्लीट कीजिए. रात को थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स भी जरूर कीजिए. लकी कलर आपका है गोल्डन येलो और नंबर है 1.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: नेटवर्किंग और टीम वर्क आज आपके लिए लकी हो सकता है. अपना आइडिया शेयर करने से मत डरिए. किसी सीनियर या कलीग का सपोर्ट अनएक्सपेक्टेडली मिल सकता है. लकी कलर आज आपका है ऑलिव ग्रीन नंबर है 4.
2: लीब्रा तुला राशि.
1: आज एक नई कनेक्शन या कन्वर्सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग डोर्स खोल सकती है. सोशल रहिए, स्माइल कीजिए और किसी की हेल्प को भी एक्नॉलेज करना मत भूलिए. लकी कलर आपका है रोज पिंक और नंबर है 7.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज अपनी टैलेंट को हाइड करने का दिन नहीं है. किसी नए पर्सन या सीनियर के सामने अपना स्किल शोकेस करने का मौका मिल सकता है. कॉन्फिडेंस रखिए. लेट देम सी व्हाट यू कैन डू. लकी कलर आपका है बर्गंडी और नंबर है 8.
2: सजिटेरियस धनु राशि.
1: प्रोग्रेस थोड़ी स्लो लगे तो फ्रस्ट्रेटेड मत होइए. आज सितारे का मैसेज सिंपल है, कीप गोइंग. जो एफर्ट आप कंसिस्टेंटली करेंगे वही आगे रिजल्ट्स बनेगा. लकी कलर आपका है टर्क्वाइज और नंबर है 3.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: आज किसी अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट लाइक डील में छोटी सी डिटेल आपके फेवर में सरप्राइज दे सकती है. इसलिए कुछ भी साइन करने से पहले फाइन प्रिंट जरूर पढ़िए. लकी कलर आपका है चॉकोल ग्रे और नंबर है 10.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आज हर चीज में फॉल्ट ढूंढने के बजाय जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करते हैं. पॉजिटिव अप्रोच से एक रिलेशनशिप या वर्क प्लेस सिचुएशन का मूड कम्प्लीटली चेंज हो सकता है. लकी कलर आपका है इलेक्ट्रिक ब्लू और नंबर है 11.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: आज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वही पुराना फॉर्मूला यूज करना जरूरी नहीं. अप्रोच बदलिए. पर्सपेक्टिव बदलेगा एंड सडनली सॉल्यूशन सामने आ सकता है. लकी कलर आपका है लैवेंडर और नंबर है 7.
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे जिद करना बुरी बात होती है, लेकिन कभी कभार अपनी फेवरेट पर्सन को अननोय करने में ना बड़ा मजा आता है। इस वक्त हमारे कुछ स्टूडेंट्स अभी उठे होंगे, मम्मी मम्मी कह रहे होंगे ब्रेकफास्ट लगा दो। अरे आज टाइम मिला है मम्मी के लिए कुछ करने का, तो आखिर मम्मियाँ भी टीचर्स होती है, वो थी हमारी पहली टीचर, तो उनके लिए आज कुछ स्पेशल करना तो बनता है। तो आप पीछे से चुपके से एक हक दे दो, उसे अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। बाकी नरमनी तो यही पर है 12 बजे तक, ज़रा आइडियाज के लिए कनेक्टेड रहना आराम जो वीडियो मस्ती के साथ ही।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के लंदन मिशन के तहत मुख्य रूप से शागस मामले पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री ने बरतानी राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जोनाथन पॉवल के साथ आमने सामने मुलाकात की। प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा जारी कम्युनिके में इस बात की जानकारी दी गई है। इस मुलाकात का उद्देश्य शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता के मामले को आगे बढ़ाना है। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री 26 सितंबर को अपने इस मिशन के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि वे देश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति ज्यादा चिंताजनक हो गई है। जल संचालन को लेकर कल ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा मंत्री पत्रिका सेवादन की अध्यक्षता में एक आपात समिति लगाई जाएगी। देश के जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। महोवाकवा में मात्र 36.6% पानी है। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो साल के अंत तक पानी का स्तर 20% की सीमा से कम हो जाएगा। इसके चलते कई सख्त कदम निर्धारित हैं। समिति में बदलाव लाने की जिम्मेदारी के बारे में कल लगने वाली समिति में इन जिम्मेदारियों के लिए फैसले लिए जाएंगे। मॉरिशस अफ्रीकी वित्तीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है।

0: अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का शुभारंभ 7 अक्टूबर को इबेन में किया जाएगा। इस अवसर पर करीब 200 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें अफ्रीका के विभिन्न देशों से आए लगभग 160 प्रतिनिधि होंगे। मंत्री ज्योति जितन के अनुसार अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का उद्देश्य अफ्रीकी पूंजी बाजारों के विकास में योगदान देना है। विदेश समाचारों में अमेरिका ने ब्रिटेन के राफेल फोर्ड एयरबेस से अपने सारे बॉम्बर्स वापस बुला दिए हैं। एयरबेस को निशाना बनाने की कथित ईरानी साजिश के बीच एक नई और अज्ञात धमकी के बाद ऐसा किया गया। इन बॉम्बर्स को अब उनके ही होम बेस में तैनात किए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों ने यूके स्थित इस एयरबेस के इर्द गिर्द सुरक्षा तेज कर दी गई, जब से एक गुट ने इस पर हमला बोलने की नाकाम कोशिश की। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। Avenue Kobijo Motidame, Residence Home, Avenue Kobijo Motidame, Chanvi Salki, 96 years old ke janab Rampat Abdul Sattar, janab Rampat Abdul Sattar intikal kar gaye hain, unka janaza aaj din ke 11 baje unke bete Swaleh Rampat ke makan home residence home avenue ko bijo motida se uthakar dafnane ke liye Medin Kondemas ka kabristan le jaya jayega. Funeral today at 11 am. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU. You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: दस बजकर 9 मिनट हो चला है मस्ती मॉर्निंग का सेकंड पीरियड भी शुरू, तो इस आओ में गानों के साथ टिप्स भी होंगे और आपके मैसेजेस डेडिकेशंस भी पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए चंडू चैंपियन मूवी के गाने से सुबह को और भी ऑनगोइंग और मोटिवेटिंग बनाते हैं आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: La fin l'année des costés, t'en parais?
3: Pas juste l'année, et ta dépense aussi.
2: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client code Rogers Capital, pégaye 500 roupies rabais, l'ose de première mensualité.
3: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
2: Application facile! Zis avec de code identité.
3: Aste à m'offrir l'année sans tracas.
2: Attendez, fais ou application premier crédit code Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Condition applicable. Rogers Capital Credit. Opère sous licence de la FSI.
4: Oula Banzen! Tous les ans, 18 et 30 ans, nous perdons toi les 31 octobre, l'embrasure, le monde pour nous premier SBM Trail. Imagine un déco en plein attir, loin domaine 800.

0: participants. Allô, rendez-vous les 31 octobre. SBM Trail, parade ça!
1: RM2 Radio Musty.
2: कभी किसी से न प्यार करना, नौजवानों बात मानो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: के सिरा सिरा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज जो लम्हा सामने है उसका अगर पूरा फायदा नहीं उठाया तो क्या किया। घर ना सिर्फ साफ सुथरा नहीं, लिव्ड इन और लव्ड भी लगना चाहिए। तो आज ना माहौल को थोड़ा सॉफ्ट रखिए, लाइट्स, एक कैंडल, खिड़कियाँ को खोलिए या फिर फेवरेट म्यूजिक को चलाइए और बस 15 मिनट को फोन को साइड में रखिए। अलग सुकून मिलेगा, ट्राई करके देखना जरूर, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, घर के कोजी कोने में भी रोज मिल सकता है।
0: RM2
1: Radio Musty.
3: La fin l'année des costés, tu ne parais?
4: Pas juste l'année, et ta dépense aussi.
3: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client code Rogers Capital, pégaye 500 roupies rabais, l'aux autres premiers mensualités.
4: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
3: Application facile! Zis avec ton code identité.
4: Asté à mon faire l'année sans tracas.
3: Attendez, fais ou application premier crédit code Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Conditions applicables. Rogers Capital Credit. Perçu licence de la FSI.
5: Les prix malins débarquent chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Alimentation, boisson.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: साथ में गाओ वाइब करो क्योंकि मस्ती मॉर्निंग शो ऑन गोइंग है आपके नाम 10:41 हुए हैं जल्द ही आप सुनने वाले हैं फैशन टिप्स फना हुआ मैं हुना का एक गाना सुनते हैं साथ में
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: वैसे आपने वार्डरोब खोल के कभी ऐसा फील किया कि मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, जबकि कपड़े भर भर के पड़े हैं? आज ना एक जब वी मेट चैलेंज कीजिए, अपने वार्डरोब से एक पुराना आउटफिट निकालिए और उसको नए एक्सेसरीज के साथ स्टाइल करके देखिए। सेम क्लोथेस है लेकिन कम्प्लीटली नया वाइब होगा।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अभी आपके लिए है रूम रीसेट का टिप। स्टडी टेबल्स पर बुक्स है, नोटबुक्स है, पेन्स है और स्नैक्स का हिमालय बन गया है। ऐसे स्टडी कैसे करेंगे? चलो बस 5 मिनट के लिए आप टेबल को रीसेट करो। जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है उसे साइड में रखो। क्लीन स्पेस देता है थोड़ा क्लियर माइंड। और हाँ, बेड पर लेट कर पढ़ने का प्लान हम सब जानते हैं उसका एंडिंग क्या होता है, कैसा होता है, हम सो जाते हैं। तो अगर पढ़ना है सही तरीके से करते हैं, ब्रेक्स के बीच में नमनी आपको यहीं पर मिलेगी RM2 वेरी मस्ती पर ही।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो

0: दिन के 11 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे याचना। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मंत्रिपरिषद ने खाद्य फसलों की खेती में कीटनाशकों के दुरुपयोग और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभावों की जांच के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति गठित करने को मंजूरी दी है। इस समिति की अध्यक्षता कृषि उद्योग मंत्री करेंगे। समिति का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि मॉरिशस में कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर की बढ़ती व्यापकता के बीच कोई संभावित संबंध है या नहीं। मॉरिशस इस साल के अंत तक अपना दूसरा उपग्रह यानी सैटेलाइट लॉन्च करने का इरादा रखता है। ये जानकारी मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के अंतरिम निदेशक प्रोफेसर तिसान बहरन ने दी। वे सोमवार को मॉरिशस स्पेस स्ट्रेटेजी 2036 के अनावरण के मौके पर बोल रहे थे। इस रणनीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र को मॉरिशस के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के एक नए स्तंभ के रूप में विकसित करना है। मकसद सिर्फ शोध के लिए उपग्रह विकसित करना नहीं बल्कि सैटेलाइट से मिलने वाले आंकड़ों का बेहतर इस्तेमाल करना भी है। मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति ज़्यादा चिंताजनक होती जा रही है। कल संचालन को लेकर ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा मंत्री पैथिकासिया वादन की अध्यक्षता में एक आपात समिति लगाई जाएगी। देश के जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। मगोवाक्वा में मात्र 36.6% पानी है। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो साल के अंत तक पानी का स्तर 20% की रेखा से कम हो जाएगा। इसके चलते कई सख्त कदम निर्धारित हैं जिनकी जिम्मेदारी कल लगने वाली समिति की होगी। विदेश में बरमूडा से बोस्टन जा रहे एक मेडिकल विमान शनिवार को समंदर में गिरा। इसमें 6 यात्री सवार थे जिनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। कल यूएस कोस्ट गार्ड ने ऐलान किया कि उसकी टीम बचाव कार्रवाई रोक रही है। अभी तक इस दुर्घटना के सही कारणों का

0: का पता नहीं चल पाया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रोज शुमेला फौज पुस्तुफलक में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमती देवी सुनाराम जो अनीता कुचुया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान रोज शुमेला फौज पुस्तुफलक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। नंबर 10 जूलियस बुशरा स्ट्रीट बैटरी कासे में, नंबर 10 जूलियस बुशरा स्ट्रीट बैटरी कासे में 59 साल की 59 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती संगीता देवी नागादू जो ज्योति के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके मकान नंबर 10 जूलियस बुशरा स्ट्रीट पत्रिकासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रूले वाले देवघट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। पिछी विलाज गुडलैंड्स में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कोमावदी रंगन पैदाशी नाम पालानी और जो उमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 2:30 बजे उनके मकान पिछी विलाज गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 2:30 PM। पंडित किस्तो स्ट्रीट पिछी बेलिया में 97 साल के 97 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बदमुंती निकित सिंह पैदाशी नाम भलक सिंह और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके बेटे प्रीतम सिंह निकित सिंह के मकान पंडित किस्तो स्ट्रीट पिछबिलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: रफ्तार से हमने भी ले लिया है एंट्री तीसरे यानी कि मस्ती मॉर्निंग के आखिरी आओ में इस दमनी 12 बजे तक। तो इस आओ में तो मोस्ट बनाते हैं, जो काम पेंडिंग है वो साथ में करते हैं मोरी वाइटिंग गानों के साथ। आई बी राइट हियर। तो चलिए म्यूजिक के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हुकस पुकस का गाना, तो साथ में फन करते हैं मस्ती मॉर्निंग में।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे ये लम्हा आपका हमारा स्पेशल है. अभी के लिए हम शू आप में से कुछ घर पर ही है, तो मम्मी के किचन में सिर्फ खाना खाने मत जाना. आज उनकी थोड़ी हेल्प भी कर दो, प्लेट सेट कर दो, वेजिटेबल्स को वॉश करो, या फिर लंच के बाद किचन को क्लीन कर दो. लाइफ स्किल्स भी सिलेबस का हिस्सा होता है, तो टीचर से बोलो ये भी सिखा दे थोड़ा सा, क्योंकि लाइफ स्किल्स से इंसान बहुत आगे जाता है. इन लर्निंग कभी रुकती नहीं है और हमें भी सीखते जाना है.
1: Radio Musty.
3: Hey Kevin, tu as l'écran téléphonique cassé?
4: Ouais, correct ça.
3: Moi, j'ai un Samsung Care Plus, moi.
4: En plus, garantie 24 mois, le bel smartphone Samsung. Avec Samsung Care Plus, tu gagnes une couverture additionnelle, le bel accident, l'auto l'écran. Comme l'écran cassé. Relax. Quand vous achetez certains smartphones Samsung, vous avez 30 jours pour enregistrer gratuitement le Care Plus. Et il est valide un an. Plus l'information, le nous passe Facebook Samsung Mauritius. Relax avec Samsung Care Plus.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जी हाँ, मैसेजेस पढ़ने का टाइम हो गया है। कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया हमारे सभी लिसनर्स का। आज है ज्योति केदना जी का जन्मदिन। बेस्ट विशेस आपकी फैमिली और दोस्तों की तरफ से, एंड आर एम टू वेरी मस्ती की तरफ से भी बेस्ट विशेस टू यू। दुर्गाना जी भी साथ दे रही है सुबह से। एंड अभी अभी आया आरती जी का मैसेज, एक गुड मॉर्निंग कोड भेजा है उन्होंने विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स। हाउ स्वीट। एंड वी ऑल्सो हैव यश जो कनेक्टेड है यूनियन पार्क से। वो इस वक्त घर की सफाई में लगे हुए हैं। नवमी पूजा के लिए वो हर कोने को साफ कर रहे हैं। वो गुहार शिव। बिग हेलो टू गिरीश हरलोल हमारे सिंगर दोस्त जो मेवक से है, एंड टू ऑल हरला फैमिली जो साथ दे रहे हैं घर की सफाई करते वक्त। तो ये नेक्स्ट गाना करते हैं आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अभी के लिए एक आखिरी टिप है हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए जो आज घर पर है. लंच को स्किप करके सिर्फ चाय या बिस्किट पे मत चलना. आई नो थकान महसूस होती रहती है, लेकिन आज थोड़े एफर्ट्स करके आप एक सिंपल हेल्दी प्लेट बना सकते हैं. थोड़ा राइस या रोटी, दाल, आपके पसंद की मीट, वेज या नॉन वेज, साथ में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. हेल्दी लंच का मतलब बोरिंग लंच नहीं होता. बस प्लेट में थोड़ा बैलेंस होना चाहिए. लो बस बन गए आपका बैलेंस्ड डाइट मील. You can find me in the
1: club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.
3: भूख लगी, जोरों की भूख लगी. मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी.

0: इसी गाने के साथ इस टाइम टू से बाय, होप यू हैड अ मस्ती मॉर्निंग। गिनी शानी वाली है नेक्स्ट रेट्रो रिदम में आपके इस आफ्टरनून को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, तो यही पर आप जुड़े रहिए आरएम जू रेडियो मस्ती पर ही। हैव अ ग्रेट डे अहेड।
1: यू आर लिसनिंग टू आरएम जू रेडियो मस्ती।

0: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज का दिन उन सभी के लिए खास है जो जीवन में हमें राह दिखाते हैं। शिक्षक सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली वो शक्ति है जो ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधकार दूर करती है। एक शिक्षक किताबों का ज्ञान देने के साथ साथ हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, सही और गलत के बीच फर्क समझाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और हमारे सपनों को उड़ान देने का विश्वास जगाते हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी में किसी न किसी शिक्षक का योगदान जरूर होता है। कभी डांट फटकार कर, कभी समझा कर और कभी एक छोटे से प्रोत्साहन न के शब्द से शिक्षक अपने छात्रों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान लेते हैं। कक्षा में बिताए पल शिक्षक की सीख, उनके दिए संस्कार, ये ऐसी पूंजी हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। शिक्षक एक ऐसा दीपक जो खुद जलकर दूसरों की राह रोशन करते हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम उन सभी शिक्षकों को नमन करते हैं जिन्होंने ज्ञान, संस्कार, विश्वास देकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारा और अपना जीवन उनको समर्पित किया। मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति ज्यादा चिंताजनक हो चली है। जल संचालन को लेकर कल ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा मंत्री पथिकासिया वर्धन की अध्यक्षता में एक आपात समिति लगाई जाएगी। देश के जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। माओवाकवा में मात्र 36.6% पानी है। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो दिसंबर तक पानी का स्तर 20% तक की रेखा से कम हो जाएगा। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी और अधिकारी लोगों से पानी जाया न करने की मांग कर रहे हैं। मॉरिशस इस साल के अंत तक अपना दूसरा उपग्रह यानी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। ये जानकारी मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के अंतरिम निदेशक प्रोफेसर तिसान बाहुरन ने दी। वे सोमवार को मॉरिशस स्पेस स्ट्रैटेजी 2036 के अनावरण के मौके पर बोल रहे थे। विदेश में बरमूडा से बस्टन जा रहा एक मेडिकल विमान शनिवार को समंदर में गिर गया। इसमें 6 यात्री सवार थे जिनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। कल यूएस कोस्ट गार्ड ने ऐलान किया कि उसकी टीम बचाव कार्रवाई रोक रही है। अभी तक इस दुर्घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार।

शोक समाचार सुनिए। रेम्योनिये लागोलेट में, रेम्योनिये लागोलेट में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री बाबाजी जो लातेत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी मानती बाबाजी के मकान रेम्योनिये लागोलेट से उठा

0: कर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 10 AM। शिवाला रोड बाल्मिक लेन त्यामिनिस्ट्रियोले में, शिवाला रोड बाल्मिक लेन त्यामिनिस्ट्रियोले में 68 साल के 68 years old के श्री मदनलाल जीवन जो सुनील के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके मकान शिवाला रोड बाल्मिक लेन त्यामिनिस्ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM। सुहावन लेन लोअर वेल में 57 साल के 57 years old के श्री प्रेमनाथ रिसल जो विनय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:45 उनकी पत्नी अमृता रिसल के मकान सुहावन लेन लोअर वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:45 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
2: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
0: Retro Rhythm.
2: तो चलिए जी, जैसे कि ये गाने के बोल हैं कि आप तरस जाएंगे ये प्यार के लिए, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी तरसे प्यार के लिए। हम तो हाथ जोड़ के रोज अपने रब से यही है विनती करते हैं कि ये बेशुमार प्यार आप लोगों की जिंदगी में हमेशा हो, प्यार की कभी कमी ना हो, और इसीलिए हम आ जाते हैं आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती, ढेर सारा प्यार लेकर इन खूबसूरत गानों के जरिए आपकी जिंदगी में प्यार बरसाने के लिए। सो माय डियर लवली लिसनर्स, चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 12:10 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी और गिनीशा का प्रणाम, कैसे हो हमारे प्यारे प्यारे लवली लिसनर्स। दिल से हम आशा करते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा रहा है, और आज मंडे है तो आपका ये जो हफ्ता है उसकी शुरुआत अच्छी सी हुई होगी। अगर नहीं तो आप फिक्र नहीं करना, हम हैं ना साथ देने के लिए। I've got you such beautiful and lovely गानों का selections कि आपकी होंठों पर हम मुस्कुराहट लेकर ही आएंगे। बिल्कुल जी, लेके जाएंगे कुछ पुराने गानों की गलियों में, कुछ ऐसे गाने जो सुनते ही दिल खुश हो जाएंगे और आपकी यादें को हम ताजा कर लेंगे। So just get ready to go down memory lane. और हाँ जी, अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो बड़े शिद्दत से हमारा साथ देने आ गए हैं, एंड ऑफ कोर्स टू ऑल दोस जो बैठ चुके हैं, खाना खाने लग गए हैं। सो बोन अपेटी टू यू, यस, फ्रॉम द एंटायर रेडियो मस्ती फैमिली की तरफ से। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक, आवर इनटू रेडियो मस्ती।

की आवाजों में लेकर आई है कितना प्यार तुमसे करते हैं अब मालूम हो जाएगा आपको. टेकन फ्रॉम द मूवी एक लड़का एक लड़की 1992 में रिलीज हुई थी.

0: खत लिख कर की जाती थी ना इंतजार आंखों से होता था और हर एहसास एक खूबसूरत गीत बन जाता था उस जमाने को हम इन्हीं गीतों से दोबारा लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है योर रेट्रो रिदम जहां पुराने गीतों की मिठास यादों की खुशबू और दिल की धड़कनों में सब मिलकर बनाते हैं एक हसीन साशा एक हसीन सी एहसास आप लोगों के लिए और वैसे ही तो चलिए वक्त की किताब का एक और पन्ना पलट देते हैं और लौट चलते हैं उस जमाने में जहां हर सुर में एक कहानी हुआ करता था क्या ख्याल है आप सभी का
1: रेट्रो रिदम
0: बिल्कुल जी रेट्रो रिदम एक ऐसा शो जहां पे आपके दिल की तार को हम चिरने आ जाते हैं हम है गिनिशान द माइक जो साथ दे रहे हैं इस खूबसूरत से सफर में जहां पे पुराने गीतों की बरसात हो रही है और साथ साथ में आप लोग जो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक RM2 रेडियो मस्ती और 5499-1294 पर आप भेज सकते हैं हमें अपने डेडिकेशन अपने दिल की बात तो चलिए जी ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे सुजाता के लिए जो हमें देख रहे हैं लाइव ऑन टिकटॉक संजीव रामगुलाम जी विनय ये अगला गाना आपके लिए एंड पांडे जी एंड अंतेश सिचन और ये अगला गाना शामिला के लिए जो वाकवा की रहने वाली हैं अंश के लिए एंड चलिए जी हेमा वुडन के लिए एंड Sharuni, hey, kaise ho meri beautiful? Ye agla gana for you, for Viren. And we do have a Nikhil and Katiba. Walaikum assalam, aapko bhi. So the next one goes out to you. And chaliye ji, Malrotra, Vinay ji, aap kahan se saath de rahe hain? Aap bhi bata sakte hain hame. Aur filhal ke liye, I've got you such a beautiful and mesmerizing song, my dear. I know that you are going to love it. To chaliye ji, badhte hain agle gaane ki aur. Jo hain Bappi Lahiri ki awaaz mein. Unke jitne bhi diehard fans hain, I'm pretty much sure ki aap gunaenge aap bhi gaenge hamare saath

वाकई में सच अ ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग ट्रैक आप लोगों के लिए हम पेश कर रहे हैं दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रेट्रो रिदम। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ है। वैसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, जहां मोहब्बत

स्टूडियो की घड़ी में 12:32 हो चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लेकर आए एक खूबसूरत सा गाना लता मंगेशकर और लेट एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, मैंने प्यार किया। एक ऐसी खूबसूरत दास्तान जहां दोस्ती ने मोहब्बत का हाथ थामा और दिल ने कहा, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। याद आया कुछ? यस, बहुत कुछ यादें हम ताज़ा कर रहे हैं आप लोगों के। तो चलिए जी, ये खूबसूरत सा गाना उन तमाम सुनने वालों के नाम वो ट्रूली मैडली डीपली लव एंड जिनको अपने प्यार के अंदर अपना बेस्ट फ्रेंड मिला है और अपने बेस्ट फ्रेंड के अंदर उन्होंने अपने प्यार को पा लिया है, है ना रागिनी जी? दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू और सरजू जी के लिए। आराम से बैठ के एंजॉय कर लीजिए।

0: Retro Rhythm.
1: बिल्कुल जी, ये रेट्रो रिदम में ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नगमे हम पेश कर रहे हैं। ओ मेरे दिल के चैन, एक ऐसी नर्म नाजुक मोहब्बत की आवाज़ जो आज भी दिल को सुकून देती है और पुरानी यादों में ले जाती है। पुरानी यादें हम ताज़ा कर रहे हैं और जब पुरानी यादें इंसान याद करते हैं तो होंठों पर मुस्कुराहट और दिल में प्यार आ ही जाता है। वल गुस्ताखी माफ़ आपकी उन यादों को छेड़ने के लिए, लेकिन क्या करे कमबख्त, जब प्यार की बात होती है तो यादों को छेड़खानी उनके साथ छेड़खानी करना ही पड़ता है। तो चलिए जी, 12:41 हो चुके हैं। कृष्ण तो माइक इन दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रेट्रो रिदम हैपनिंग राइट नाउ ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। एंड टू ऑल दोस हु आर वर्किंग राइट नाउ, कुहाश टू यू माय डियर। एंड टू ऑल दोस हु आर स्टिल वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बाकी जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया ऑन टिकटॉक, डू इट राइट नाउ राइट अवे। इट्स टिकटॉक आवर एंटी रेडियो मस्ती। तो चलिए 5499124 पर फिलहाल के लिए चेक करते हैं किसने किसको याद किया है। और अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे ललित मोहन जी के लिए है, जो इंडिया से हैं लेकिन शायद मॉरिशस में बस चुके हैं। तो ये गाना आपके लिए, करुणा, एक गाना आप सुनना पसंद करेंगे। आप अपने पोपा जी के लिए, आज उनका बर्थडे है, 80 साल के हो गए, 80 years old, so happy birthday to him।

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, विशिंग यू अ लवली अ मैजिकल बर्थडे माय डियर। यस, आज उनका जन्मदिन है, 80 साल के हो गए फूफा जी। और भाई ये टिप्सू और मेबक के रहने वाले हैं। सो बेस्ट विशेस आपकी वाइफ शेला की तरफ से, बेटी रेशमा और उनका जो बेटा है कविश। एक गाना हो जाए या बिल्कुल सारे गाने उन्हीं के नाम। सो हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम गेनुआ फैमिली, टिप्सू फैमिली, एंड हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जी, अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे दोस्त डेविना राम साहा के लिए, जिसका कल जन्मदिन था। सो बी विशिंग यू बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहे, और यही दुआ है आपके लिए पूनम की तरफ से, जो लाल माची की रहने वाली है। एंड ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे, क्यों कोई है जो एंजॉय कर रहे हैं ये शो, बॉम्बू से धनेश्वर जी, उनकी पत्नी सुनीता, रानी निशा, मीना, ऋषि और छोटा तहान और हंसवी और बियांका, बियाना, भविका एंड डेवडोस एंड सनीचर कावलेसा परिवार के लिए ये अगला गाना। और ऑफ कोर्स टू ऑल दोस अलीमा डुमन बाशिया जी साथ दे रहे हैं ऑन टिकटॉक, आप हमें देख रहे हैं लाइव, तो ये गाना आपके लिए जियाना शबरीन लानेश। एंड चलिए संस्कृति, ये अगला गाना, आस्था का जन्मदिन है आज, सो उनके लिए हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वाला गाना, चलिए हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड सकीना जी, ये अगला गाना आपके नाम। एंड गन अर्जुन जी, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू, वी हैव वीर एंड

0: प्रेमचंद ये अगला गाना कोई भी गाना किशोर दा की आवाज में चंदर लक्ष्मी जी और द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड कल्याणी जी ये अगला गाना आपके नाम है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग नो टाइम बढ़ते हैं अगले गाने की ओर जो है हरिहरना की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना है जी जो कुछ भी आप कर रहे हो ना बस दो मिनट के लिए रुक जाइए इस गाने को आप दिल से एंजॉय कर लीजिए खासकर हमारी तरफ से आपके नाम ऑन
1: RM2 रेडियो मस्ती

बिल्कुल जी, ऐसे आग लगाएंगे आपके दिल में प्यार की आग, कि आप बस छोटे टाइम में ही पिघल जाएंगे, प्यार हो जाएगा और होता ही चला जाएगा। सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक की शोरदा की आवाज में, खासकर आपके लिए दिलबर मेरे, एक ऐसा गीत जहां मोहब्बत सिर्फ अल्फाजों में नहीं बल्कि हर सुर और हर धड़कन में महसूस होती है ना। तो ये खूबसूरत सा गाना उन तमाम सुनने वालों के नाम जो किशोरदा के बहुत ही डाई हार्ड फैन है। तो चलिए फिलहाल के लिए, भावना के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग माई डियर। दोस्तों तुम सबको ये खूबसूरत सी शो रेट्रो रिदम मुबारक हो। चलिए आप एंजॉय कर लीजिए भावना गंगा, फ्रॉम कैथरबोन दिस वन गोज आउट टू यू माय स्वीटहार्ट।

Thank you so much, Isa, देने के लिए on RMT Radio Masti, and that's your retro rhythm with Megan Isha. And जी हाँ, फिलहाल के लिए check your time. Studio की घड़ी में it's exactly 1 PM.

0: आइए सुनते हैं समाचार पूजा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को मेरा नमस्कार। शुक्रवार को लंदन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और ब्रिटेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पावेल के बीच शागुस द्वीप समूह के मुद्दे पर हुई मुलाकात का जिक्र रविवार को प्रकाशित खबरों में किया गया और प्रधानमंत्री के हवाले एक्सप्रेस डिमांश और वीकेंड ने बताया कि यदि शागुस समझौते की उचित समय सीमा के भीतर पुष्टि यानी रेटिफिकेशन नहीं होती है तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकता है। मेवा तमागे में रहने वाले लोग अपने इलाके में चल रही कई रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। वहां पर 24 विला और 45 आवासीय इकाइयों वाली एक परियोजना, इन सभी विकास कार्यों ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने खास तौर पर इन परियोजनाओं से होने वाले परेशानी और असुविधाओं के साथ साथ बाढ़ की समस्या और गंभीर होने का डर है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने इलाके में बाढ़ की समस्या को बढ़ते हुए देखा है। मॉरिशस में जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए बहुत जल्द एक बैठक लगाई जाएगी। सिलसिले में ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन की अध्यक्षता में एक समिति कल बैठक करेगी। जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है। देश के मुख्य जलाशय माओवाकवा में पानी का स्तर मात्र 36% रह गया है और अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो साल के अंत तक ये स्तर 20% से भी नीचे जा सकता है। इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और सख्त कर दिए जा रहे हैं। कल होने वाली संकट समिति की बैठक में मौजूदा कदमों की समीक्षा होगी और स्थिति के अनुसार समायोजित करने की जिम्मेदारी भी होगी। विदेश में फ्रांस में हाल के दिनों में दंगारोधी पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों के बाद आज 500 तक स्कूल आंशिक या पूरी तरह बंद रह सकते हैं। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने कल रविवार को ये जानकारी दी है। वहां की शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होने के कारण लगभग 400 से 500 हाई स्कूलों में कक्षाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित रहेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद से 24 स्कूलों में आग लगा दी गई या उनमें तोड़फोड़ की गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। सुहावन लेन लोअर वेल में 57 साल के 57 years old श्री प्रेमनाथ रिसोल जिन्हें लोग विनय नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम पौने तीन बजे इनकी पत्नी अमृता रिसोल के मकान सुहावन लेन लोअर वेल से उठाकर दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:45 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति।

0: है।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
2: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musti.

0: listening to Radio Masti Retro Rhythm.
1: बिल्कुल जी, हम कभी नहीं होंगे जुदा आप लोगों से, क्योंकि ये प्यार इतना गहरा है आप लोगों के साथ, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कि रोज तो वैसे ही आपका प्यार हमें खींच कर यहाँ तक लेकर ही आता है ऑन रेडियो मस्ती। और ये है अपना रेट्रो रिदम। बिल्कुल जी, 1:11 हो चुके हैं। सो विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी, और गिनेशा का प्रणाम। वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो, जहाँ पे एक के बाद एक खूबसूरत खूबसूरत नगमे हम पेश कर रहे हैं। तो चलिए जी, आज है मंडे 5th of October 2026, आज एक स्पेशल डे, टीचर्स डे। तो दोस्तों, आज का दिन उन खास लोगों के नाम जिन्होंने हमें सिर्फ किताबों के पन्ने पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि जिंदगी को समझना भी सिखाया, और वो भी बारीक बारीक तरीके से। एक टीचर, अध्यापक, जो कभी बहुत ही ज़्यादा सख्ती से गलती सुधारते भी हैं, और कभी एक छोटी सी ऐसी तारीफ से हौसला बढ़ा देते हैं, और कभी बिना कहे ही हमें यकीन दिला देते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हमारे टीचर्स, स्कूल के वो दिन, क्लासरूम की वो बातें, टीचर्स की वो डांट, और कभी कभी मिलने वाली वो एक्स्ट्रा स्माइल जो टीचर्स हमें पास करते हैं, वक्त के साथ सब यादें बन जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज टीचर्स डे है, और इस खास दिन पर हम सलाम करते हैं हर उस टीचर को जिन्होंने हमारे ये कल को बेहतर बनाने के लिए अपना आज दिया। बिल्कुल जी, आप सभी टीचर्स को दिल से हैप्पी टीचर्स डे ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। और ये अगला गीत हमारे उन्हीं गुरुओं के ये नाम जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को सुर, रंग और एक खूबसूरत दिशा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एंड आज तो वैसे छुट्टी का दिन है, बहुत सारे टीचर शायद घर पे होंगे, साथ दे रहे होंगे, और अगर ऐसी बात है तो ये गाना आप एंजॉय कर लीजिए।
0: आवर एंटी रेडियो मस्ती।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: दोस्तों, आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज पेश कर रहा हूं, तज़मीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गायकी टूट गए लिखने वाले शायर जनाब खतिल शिफाई साहब की गजल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने। बहुत शुक्रिया।

0: पंकज उदास की आवाज में ये खास कर आप लोगों के लिए प्यारा सा गजल है जी हाँ, जो बस बहुत सारे लोग हमारे साथ गुनगुना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं लाइव ऑन टिकटॉक, थैंक यू सो सो मच। बाकी लोग आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, द रियल मस्ती इज हैपनिंग देयर। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर,
1: रेट्रो रिदम।
0: तो चलिए जी, टाइम बीता चला जा रहा है, 1:25 हो चुके हैं। तो दोस्तों हाँ जी, ऑन 5499124 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर दिल की बात, योर डेडिकेशंस, और बस हम आपके साथ कुछ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल जी, जिंदगी में हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है ना। सो कुछ पल हमें हंसाता है और कुछ हमें सिखाता है और कुछ बस इतना कहता है कि कीप गोइंग, यू शुड नेवर एवर स्टॉप। तो आज पुरानी फिक्रों को थोड़ा सा साइड पर रखिए और एक स्माइल के साथ अपने दिन को आप एंजॉय कर लीजिए और याद रखिए कि छोटी छोटी खुशियाँ जो होती है ना, जिंदगी को खूबसूरत बना देती हैं। आप सुन रहे हैं रेट्रो रिदम। अब और वक्त है एक और फील गुड गाने का, जो मूड को थोड़ा और ब्राइट कर देंगे और होंठों पर और मुस्कुराहट लेकर आएगी। लेकिन साथ में ऑफ कोर्स आई हैव टू चेक इट ऑन योर डेडिकेशंस। सो ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे शीतल, नितिन, रीटिना, नताशा, डिया, पूनम और प्रिया के लिए, एंड विशिंग ऑल ऑफ देम हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच जीना जयसूरी जी। यस, दिस वन गोज आउट कमिंग अप आपके लिए माय डियर, माय ब्यूटीफुल, excellent selection gini and enjoying the presentation, okay, outstanding, god bless you, thank you, aap logon ka pyar hai ji jo itna khinch kar lekar aate hain aur hum shiddat se pyar barsate hain. So the next one for Chun and family and husband ke liye, that's coming from maya from Mayberg. ये वादा रहा गाना जो हमने चलाया था खासकर आपकी वाइफ भारती के लिए, भी नव आपका बेटा और सारे दोस्तों के लिए, नेशनल कोस्ट गार्ड मॉरिशस में काम करते हैं, टोयोटा मॉरिशस एंड ऑल फेसबुक फॉलोवर्स, एनीवन जो आपको जानते हैं, ऑफ कोर्स अभी रामबो जो रोसिल के रहने वाले हैं, इट्स अ नाइस नेम रामबो। तो चलिए जी, ये अगला गाना आपके लिए भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे शिमला और ट्रियोली, विशिंग एवरीवन हैप्पी टीचर्स डे एंड लव यू डियर एंड लव यू टू। सो द नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे, हमेशा की तरह स्वीट स्वीट गाने लेकर आई हैं, ऑफ कोर्स अनीता जी फ्रॉम फिकम फ्लैग, आपकी बहन शोभा के लिए भी जो बीमार है, सो गेट वेल सून। तो चलिए जी, आपके लिए ये अगला गाना, एंड हियर वी गो, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हम खूबसूरत खूबसूरत हमारे लिसनर्स के लिए लेकर आए हैं, अभिजीत और निर्जा पंडित की आवाजों में।

0: सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक है किशोर दा मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की और उषा जी उषा मंगेशकर की आवाज़ों में खासकर आप लोगों के लिए ऑन ऑरेंटी रेडियो मस्ती
1: रेट्रो रिदम।
0: टाइम बीता चला जा रहा है, 1:37 हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और रेट्रो रिदम में एक के बाद एक चुन चुन कर हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे खूबसूरत गाने जो बस आपके दिल को भा जाए। टू ऑल दोस्त हू आर ड्राइविंग राइट नाउ, हम बस इतना कहना चाहेंगे ड्राइवर साहब आराम से गाड़ी चलाना, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा आप हाई कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे गाने हैं जो बस सीधे जाके मन को इतना खुश कर देते हैं ना कि आपका दिन बन जाएगा। बिल्कुल जी, और फिलहाल के लिए अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं, बिल्कुल जो एंजॉय कर रहे हैं इतने खूबसूरत खूबसूरत नगमे को, और श्वेता हुकुम बोनाकर से साथ दे रहे हैं विशिंग ईच एंड एवरी टीचर्स ऑफ मनीलाल डॉक्टर एसएसएस लालमाची हैप्पी टीचर्स डे ऑन द स्पेशल सॉन्ग। उनके जो मिसेज फकवा हैं और रक्षा, उनके लिए उनके सारे कोलीग्स रूबी रेशमा पूर्णिमा निशा सभी लोगों की तरफ से। Hey, good afternoon, RMT team. आपको भी life is beautiful and the wonderful part is school life. बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर कोई आके मुझसे पूछे ना कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए, हम तो कहेंगे bring back those school days. And actually किसी ने लिखा है still miss my college friends, teachers and those days. And एक गाना teachers के लिए wishing best happy teachers day to everyone. तो चलिए जी, ये अगला गाना जो है ये प्रिया की तरफ से मौसल मौसा तौर, आपने एक गाने की मांग की है, थोड़ी देर में जरूर करेंगे कोशिश। टू प्ले दैट गीता सीता बलोगामा जी फ्रॉम शैतु बनारस, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम हमें देख रहे हैं लाइव फ्रॉम ऑन टिकटॉक, सो एंजॉय कीजिए ये अगला गाना आपके लिए। कुर्सी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वी हैव फ्रॉम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो फ्रॉम फिजी आइलैंड, सो योगेश सारे स्टाफ के लिए जो फ्लैग हॉस्पिटल में काम कर रही है, एंड एज वेल टू ऑल स्टाफ वर्किंग एट द हॉस्पिटल ऑफ कॉन्दस विक्टोरिया हॉस्पिटल जो किचन डिपार्टमेंट में है। एंड चलिए ये करुणा जी के लिए अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे, शी इज ऑल्सो वॉचिंग अस, एंड अहमद तुगबली ये अगला गाना आपके लिए, हेमंत कुमार जी आपकी वाइफ उमा के लिए, नीर के लिए, एंड वेल वी हैव प्रिया, वी हैव विकास आलियाओ, वी डू हैव पूजा, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू। हैव वी गो टू ऑल दोस जो हमें देखना चाहेंगे लाइव, सो व्हाई नॉट, इट्स हैपनिंग ऑन टिकटॉक आवर इनटू रेडियो मस्ती, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं मिस्टर बेन को जो ऑस्ट्रेलिया से हमारा साथ दे रहे हैं, और ये गाना लता जी और शबीर कुमार

0: की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गाना है Here we go हमारी तरफ से आपके नाम
1: RM2 Radio Mastery

0: रेट्रो रिदम।
1: जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, अरे इसका क्या मतलब है कि जाने कहां होंगे, यहीं पे होंगे ना। अनाउ राइट टू रेडियो मस्ती, यहीं पे सभी मिलते हैं। प्यार जहां पे होता है ना, सभी लोग वहीं पे आ जाते हैं। और ऑन रेडियो मस्ती हम बिल्कुल अपने पूरे रेडियो मस्ती फैमिली के लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार और खूबसूरत गाने तराने लेकर आते हैं। तो चलिए जी, 5499-1294 पर चेक करते हैं किसने किसको याद किया है। एंड ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू सुनीता लोलचंजी, जो मिलान से हमारा साथ दे रही है। सो आप इटली से हो और एंजॉय कर रहे हो इन खूबसूरत गानों को। सो फॉर योर डॉटर इन लॉ दीक्षा के लिए एंड फॉर टीचर्स डे, एंड आई गेस शी इज अ टीचर, मे बी दैट्स व्हाई। सो हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। एंड कौन तू मास्क पर वी से जयनीश, आज उनका सेकंड बर्थडे है। सो जयनीश माई स्वीट हार्ट, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे, विशिंग यू हैप्पी बर्थडे।

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, शुभ योम मैजिकल बर्थडे माय स्वीट हार्ट। 2 साल के हो गए। बेस्ट विशेस आपकी मामा स्वीटी और आपके पापा की तरफ से। आपका मैसेज अधूरा रह गया, सो आई गेस मामा एंड पापा लव्स यू लॉट एंड द एंटायर फैमिली वुड लव टू डेडिकेट This song coming up specially for you and all those who are celebrating their birthdays. जी हाँ, I just want to wish you a magical birthday. कोई भी खुशी का मौका है आज, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, so of course 54991294 पर। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। आज तो टीचर्स डे है, तो हमारे सारे टीचर्स के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे अगला गाना, एंड as well to all those who are watching us live on TikTok। नौशादा जी के लिए, हरुण के लिए, नीर के लिए, अंजलि गम लगन के लिए, उनका जन्मदिन है। So happy birthday to you, my sweetheart. And Kalyani Singh, Uma Kano Tirama na ke liye. Thank you so much. जैसे कि हम कह रहे थे कि आज टीचर्स डे हैं, तो सारे टीचर्स के नाम। और चलिए अगला गाना स्पेशली आपके लिए, टेकन फ्रॉम द मूवी सर, कुमार सानू की आवाज़ में। आकाश चेतन मनसुख फ्रॉम बाबू, ये है आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। साथ रहते रहते यूं ही वक्त गुजर जाएगा, दूर होने के बाद कौन किसे याद आएगा। जी लो ये पल जब हम तुम्हारे साथ हैं, कल का क्या पता वक्त कहाँ ले जाएगा। बिल्कुल जी, जो बच्चे आज का अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम तो कहेंगे इस वक्त को अच्छे से जी लो, पढ़ाई करो, मस्ती करो, टीचर्स के साथ अच्छा सा वक्त गुजार लो। आगे जाके लाइफ में इन पलों को जब आप याद करोगे, फोटो पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए।

0: शगुन।
1: बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा शगुन है ना, जब बिजली चमके और आप लिपट जाते हैं अपने प्यार से। सच ब्यूटीफुल एंथम, बहुत ही मेस्मराइजिंग सा गाना है कुमार सानू की आवाज में। बरसात की धुन तो हमने आपको सुना दिया, लेकिन फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनी शायद से गुड बाय टू यू। जी हाँ, रेट्रो रिदम यहीं पे खत्म होता है। आपके और हमारे बीच में एक गाना रह गया है बाकी सुनाने के लिए, तो चलिए जी फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, लेकिन वादा करते हैं फिर से लौट के आएंगे आज ही, यानी कि आपके रफ्तार वॉइस में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी कि एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद। तो चलिए जी 2 घंटे के बाद हम फिर मिलेंगे, और फिलहाल के लिए अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली टू दोज जिन्होंने बड़े शिद्दत से साथ निभाया है इस खूबसूरत सी सफर में, एंड राजा मणि जी के लिए और सीता जी के लिए जो साथ दे रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोज जिन्होंने बड़े प्यार से साथ निभाया ऑन टिकटॉक और एम टू रेडियो मस्ती। इजाजत दीजिए, टेक केयर, सी यू एट 4 o'clock।
2: RM2 Radio Mastin.

0: आइए सुनते हैं समाचार पूजा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस में जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन की अध्यक्षता में एक समिति कल बैठक लगाएगी। जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है। देश के मुख्य जलाशय माओवाकुआ में पानी का स्तर मात्र 36% रह गया और अगर स्थिति में सुधार नहीं आता है तो साल के अंत तक ये स्तर 20% से भी नीचे जा सकता है। इस स्थिति को देखते हुए पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और कड़े किए जाने की संभावना है। शुक्रवार को लंदन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और ब्रिटेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पॉयल के बीच शागुस द्वीप समूह के मुद्दे पर हुई मुलाकात का जिक्र कल रविवार को प्रकाशित समाचार पत्रों में किया गया। प्रधानमंत्री के हवाले से एक्सप्रेस जिमांश और वीकेंड ने बताया कि यदि शागुस समझौते की उचित समय सीमा के भीतर पुष्टि यानी रेटिफिकेशन नहीं होती तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकता है। मेवाता मागे में रहने वाले लोग अपने इलाके में चल रही रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर चिंतित हैं। 24 विला और 45 आवासीय इकाइयों वाली इस परियोजना मतलब ये परियोजना इन सभी विकास कार्यों ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें खास तौर पर यहाँ पर परियोजनाओं से होने वाली परेशानियों और असुविधाओं के साथ साथ बाढ़ की समस्या और गंभीर होने का डर है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने इलाके में बाढ़ की समस्या को बढ़ते हुए देखा है। विदेश में फ्रांस में हाल के दिनों में दंगारोधी पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों के बाद आज 500 तक स्कूल आंशिक या पूरी तरह बंद रह सकते हैं। वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होने के कारण कक्षाओं में मतलब कक्षाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद से 24 स्कूलों में आग लगा दी गई और उनमें तोड़फोड़ भी की गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 10 जूलियस बुशेरा स्ट्रीट बैटरी कासे में 59 साल की 59 years old श्रीमती संगीता देवी नागादू। श्रीमती संगीता देवी नागादू जिन्हें लोग ज्योति नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे यानी इस समय इनके मकान नंबर 10 जूलियस बुशेरा स्ट्रीट बैटरी कासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले दोपहर तक किश्मशान भूमि ले जाई जा रही है। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। और सुहावन लेन लुअविल में 57 साल के 57 years old शिवप्रेम नाथ रिसोल जिन्हें लोग विनय नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे इनकी पत्नी अमृता रिसोल के मकान सुहावन लेन लुअविल से उठाकर दाहुची किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:45 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: time to
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: और चलिए दोस्तों, यहाँ पर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स का कारवां आपके लिए हमने सजा दिया है. दो से लेकर चार बजे तक इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक्स या फिर पेपी ट्रैक्स, सब कुछ मिलने वाला है विद बी टाउन की अपडेट्स. मैं हूँ परी आपके साथ. 2:11, 5th ऑफ अक्टूबर, मंडे की आफ्टरनून. ट्यून इन है आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: FM2 रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: चलिए दोस्तों यहां पर बी टाउन की अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते हैं आफ्टरनून टाइम एंड दैट्स योर आरएम टू रेडियो मस्ती। जानवी कपूर के एयरपोर्ट लुक ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है। उनकी टी शर्ट में रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के लिए कुछ ऐसा लिखा था जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। हाल ही में जानवी कपूर पेरिस फैशन वीक में शामिल हुई। उनके इस ग्लैमरस लुक के बाद उनके एयरपोर्ट पर एक कैजुअल लुक को भी फैंस ने काफ़ी अट्रैक्ट किया और जानवी कपूर ने पेरिस फैशन वीक में शामिल होने के बाद एयरपोर्ट पर अपने लुक के साथ पैपराजी का ध्यान अपनी ओर खींचा, जहां उनके फैंस और फ्लाइट अटेंडेंट ने उनके साथ पिक्चर्स क्लिक की। खास बात यह है कि उस वक्त जानवी कपूर ने जो टी शर्ट पहन रखी थी उसमें खास बात लिखी हुई थी। उनकी पिंक कलर की टी शर्ट में अगर खो जाए तो शिखर पहाड़िया को रिटर्न कीजिए, ये लिखा हुआ था, इफ लॉस्ट प्लीज रिटर्न टू शिखर पहाड़िया, एंड दैट वॉज रियली क्यूट। यहाँ पर फैंस ने पोस्ट के बाद फोटोज ये जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर फर्स्ट डे से ही यानी कि जब से वो शिखर पहाड़िया को डेट कर रही है उन्होंने कभी भी अपने रिलेशनशिप को छुपाया नहीं, एंड दैट्स काफी डिफरेंट कंपेयर टू अदर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो अपने रिलेशनशिप को काफी प्राइवेट रखती है एंड ओनली फ्रेंड्स का जो टैग है वो लगा कर रखती है। लेकिन जानवी कपूर वॉज वेरी ओपन अपने रिलेशनशिप को लेकर और पहले ही दिन से उन्होंने बताया कि शिखर पहाड़िया उनके बॉयफ्रेंड है और कितनी बार उन्होंने ये भी शेयर किया है कि उनके ब्रेकअप्स भी हुए हैं बट ऑल द टाइम दे गेट बैक टुगेदर। सो अभी के लिए तो गुड विशेस टू दिस ब्यूटिफुल कपल, जो काफी रियल फील होता है क्योंकि नॉर्मली जो रियल लाइफ होती है उसमें भी ऐसे ही कुछ रिश्ते होते हैं जो सेलेब्स के साथ जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो लगता है कि इनकी भी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल सी ही है। सभी के लिए जानवी कपूर सुपर डुपर एक्साइटेड इन हर रिलेशनशिप विद शिखर पहाड़िया, ये तो लग रहा है उनके ये टी शर्ट को देखकर एंड उनकी हैप्पीनेस को देखकर। सो चलिए गुड विशेस तो हम पहुंचाते रहेंगे और अभी के लिए दोस्तों आप हमारा साथ दे रहे हैं, सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर परी का साथ एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मूसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti।

सजन सजन में कहां जाऊं यस दैट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक मृणाल ठाकुर पर पिक्चराइज ये गाना और आजकल ओटीटी पर उनकी फिल्म काफी चर्चाओं में है जो रिलीज हुई ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर पूजा मेरी जान सो अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा देखिए जरूर ओटीटी पर रिलीज हुई है ये एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ मृणाल ठाकुर आई एम श्योर आपको ये अच्छी जरूर लगेगी चलिए दोस्तों अभी के लिए आपके मूड को थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं मंडे आफ्टरनून एंड वी हैव दिस एवरग्रीन सुपर ब्यूटीफुल ट्रैक यानी कि लेटेस्ट गाने जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं लेकिन उन डिफरेंट गानों के बीच ये जो है अलग ही खुशबू लेकर आता है दैट्स गहरा हुआ फ्रॉम द फिल्म धुरंधर एंड ऑफकोर्स टू ऑल द लव वर्ड्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं टू ऑल द कपल्स एंड ऑफकोर्स टू ऑल द लिसनर्स साथ देने के लिए शुक्रिया आरएफ टू रेडियो मस्ती इट्स योर बॉम्बे टॉकीज परी का साथ दिन के 4 बजे तक

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. पूजा से आपको नमस्कार.
1: नमस्कार परी. सभी को मेरा नमस्कार. टीचर्स डे के मौके पर शिक्षण से जुड़े पेशेवरों ने एक बार फिर उन चुनौतियों को गौर किया जिनका सामना उन्हें रोजाना करना पड़ता है. अनुशासन, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक समर्थन और काम करने

0: की परिस्थितियों जैसे मुख्य पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। शिक्षक डे के संदर्भ में गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन ने आज कैचबोन में एक विशेष समारोह का आयोजन किया था। मौके के मुख्य मेहमान शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिए। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2025-2026 की अवधि के लिए सरकार ने शिक्षा प्रणाली के लिए 25.7 मिलियन रुपए निर्धारित किए हैं। ये जीडीपी में 8.9% की बढ़ोतरी दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या ने हल्की मतलब छात्रों की संख्या में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ल्ड नीट टेक्सटाइल और यूनिवर्सल फैब्रिक के लगभग 600 कर्मचारी अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हैं। वहीं श्रमिक संघों के फेडरेशन ने इस बात की आलोचना की है कि जब से इन कंपनियों को वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लाया गया है तब से कोई नई त्रिपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। विदेश में फ्रांस में हाल के दिनों में दंगा रोधी पुलिस और छात्र प्रदर्शन कार्यों को लेकर वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होने के कारण लगभग 400 से 500 हाई स्कूलों में कक्षाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित की गई हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। रेम्यूनियर लागुलेट में 63 साल के 63 years old श्री बाबाजी जिन्हें लोग लातेत नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी मानती बाबाजी के मकान रेम्यूनियर लागुलेट से उठाकर बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM शिवाला रोड बाल्मीक लेन नतिया मिनिस्ट्रियोली में 68 साल के 68 years old श्री मधुरलाल जीबन श्री मदन लाल जीबन जिन्हें लोग सुनील नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान शिवाला रोड बाल्मीक लेन तिया मिनिस्ट्रियोली से उठाकर तिया मिनिस्ट्रियोली किश्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM रोड शुमेला फोर्ज पुस डी फ्लैक में 69 साल की 69 years old सुमति देवी सोनाराम जिन्हें लोग अनीता कुचिया नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान रॉयल रोड शुमेला फोर्ज पुस डी फ्लैक से उठाकर लावांचिया की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM और बुलांजे रोड पिजों लेन मुताई ब्लॉन्च में 78 साल की 78 years old श्रीमती विद्यामती सुगंध पैदाशी नाम बुधराम और जिन्हें लोग विद्यामती नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके मकान बुलांजे रोड पिजों लेन मुताई ब्लॉन्च से उठाकर मुताई ब्लॉन्च किश्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play and NBC.MU. More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों यहाँ पर साथ दे रहे हैं आप 3:26 अजय देवगन अभिनीत हालिया रिलीज दृश्यम 3 द कंक्लूजन की कहानी में बीते दो फिल्मों

0: से चल रहे सस्पेंस को अब खत्म कर दिया गया है मगर फिल्म के क्लाइमैक्स को रिलीज से पहले छुपाने के लिए मेकर्स ने काफी जद्दोजहद की फिल्म के लेखक आमिल कियान खान ने बताया कि किस तरह इसके अंत को सबसे छुपाकर रखा गया फिल्म के राइटर आमिल कियान खान ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान बताया कि किस तरह पूरी फिल्म के क्लाइमैक्स यानी कि पूरी जो फिल्म थी वो क्लाइमैक्स पर टिकी हुई थी और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि असल में विजय सलगांवकर की तरह उन्होंने ही प्रोडक्शन का काम संभाला और क्लाइमैक्स के बारे में क्रू के एक से बढ़कर एक जो सदस्य थे उनसे ये जानकारी छुपा कर रखी गई लोगों को जरूरत के हिसाब से ही जानकारी दी जाती थी कभी कभी किसी विभाग को केवल इतना ही पता होता था कि किसी सीन को शूट करना काफी जरूरी है और ये जरूरी सीन क्या होने वाला है ये भी उन्हें नहीं पता होता था सो यहां पर ये तो हम जानते हैं कि सस्पेंस को बनाए रखने के लिए ये किया गया और यहां पर लेखक का कहना है यानी कि द राइटर उन्होंने बताया कि ये जो क्लाइमैक्स था काफी लोगों से छुपा के रखा गया इवन द टीम काफी सारी टीम को पता नहीं था कि फाइनली एंड में होने क्या वाला है आगे बातचीत में आमिल कियान खान ने बताया कि फिल्म के कई बड़े कलाकार और क्रू सदस्यों के साथ साथ मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी मुझसे क्लाइमैक्स जानने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन मैंने भी ये बात सभी से छुपा कर रखी और फिल्म दृश्यम 3 द कंक्लूजन को लिखने में उनको काफ़ी सारी मुश्किलें भी आई कहते हैं कि उनके पास फोल्डरों के अंदर फोल्डर्स होते थे तारीख डेट्स संख्या और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी जिसका उनको ख्याल रखना था और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क और ये हम जानते हैं कि दृश्यम 1 एंड 2 ये जो साउथ की फिल्में थी उसका रीमेक्स थी लेकिन द थर्ड वन यानी कि दृश्यम 3 द कंक्लूजन ये ओरिजिनल कहानी है यानी कि इट्स ओरिजिनल स्टोरी और उसको लिखने के लिए यहाँ पर जो राइटर साहब है वो बता रहे हैं कि काफ़ी सारी मुश्किलें आई और एक ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आना एक ऐसी स्टोरी लेकर आना जो सबका जो सस्पेंस है यानी कि मूवी का जो सस्पेंस है उसे एंड तक बनाए रखे और सबके दिल में वही धक धक चलती रहती है कि भाई एंड में होने क्या वाला है सो इफ यू हैवंट वॉच दृश्यम अभी तक देखिए जरूर क्योंकि बहुत ही अच्छी थ्रिलर फिल्म बनाई है मिस्ट्री को एंड तक बनाए रखा है और देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार विजय सलगांवकर के साथ क्या होता है सो अगर आप भी फैन है दृश्यम सीरीज के सो डू नॉट मिस दिस वन दृश्यम 3 द कंक्लूजन
1: रेडियो मस्ती योर नंबर 1 बॉलीवुड स्टेशन

और चलिए दोस्तों दास बन पिया आपके लिए फ्रॉम फिल्म यस, ये उसी फिल्म का गाना है जो इतनी तो चली नहीं लेकिन गाना रहा पॉपुलर एंड वेल सून वील बी सेलिब्रेटिंग नवरात्रि। सो स्वागत है, खुश आमदीद उसी फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। 3:40 आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन 5499 1294 पर थोड़ी ही देर में।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, बी टाउन में इतना कुछ होता रहता है और अभी ऑन 2 अक्टूबर दो फिल्में रिलीज हुई है, एक ऑन OTT और एक बड़े पर्दे पर. यस, बड़े पर्दे पर जो फिल्म रिलीज हुई है दैट्स दृश्यम द कंक्लूजन द फाइनल पार्ट, यानी कि दृश्यम 3, और रिव्यूज काफ़ी अच्छे आ रहे हैं. फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और फिल्म कर रही है तगड़ी कमाई. और दूसरी फिल्म जो रिलीज हुई वो है पूजा मेरी जान. यस, इस फिल्म में नजर आई हैं मृणाल ठाकुर और उनका साथ देती हुई हुमा कुरैशी. वी ऑल्सो हैव विजय राज. और कोर्टरूम ड्रामा है, क्या होता है कहानी में ये इसको जानने के लिए आपको इस फिल्म को जरूर देखना होगा. चलिए दोस्तों, अभी के लिए आपके मैसेजेस डेडिकेशन 5499 1294 पर आ गए हैं. एंड यहाँ पर विजया जी कहती हैं रामायण आपात ऑफ धर्मा, इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ है और आपको ये काफ़ी पसंद आया है. चलिए, अभी तक हमने तो नहीं देखा, देखेंगे ज़रूर, लेकिन अगर आपको पसंद आया है तो आई एम श्योर कि अच्छी ही होने वाली है, अच्छा ही होगा ये ट्रेलर. सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विजया जी. अगला गाना होगा आपके नाम एंड विशिंग यू वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ. लाल माती से आए हैं डेविसन अपनी गुड विशेज लेकर. सो वेल डेविसन, आई डू होप यू एंजॉइंग योर मंडे. अभी तो हफ्ता शुरू हुआ है एंड विशिंग यू वंडरफुल वंडरफुल वीक अहेड. साथ निभाते रहिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती. और चलिए कहते हैं गुड आफ्टरनून परी. यहाँ पर एक स्वीट सा मैसेज आपने शेयर किया है. कहते हैं कि औरत सिर्फ एक नाम नहीं, मोहब्बत सब्र और कुर्बानी की मिसाल है. कभी माँ बनकर दुआ देती है, कभी बेटी बनकर घर में खुशियाँ लाती है. उसकी खामोशी को कमज़ोरी मत समझना, वो टूट कर भी अपनों के लिए मुस्कुराती है. औरत की इज्जत करना सीखो क्योंकि उसी से हर घर की रोशनी होती है. वेल दैट्स कमिंग फ्रॉम आवर डियरेस्ट सायरा बानू. विशेज हैं फॉर ऑल द लवली लेडीज, लव यू लेडीज. ये स्वीट मैसेज है फ्रॉम सायरा बानू एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज. वैसे हम कहते हैं ना कि जानते तो हम हैं, लेकिन जब कोई ऐसा लिख देता है, कोई शेयर करता है, तो यू फील रियली नाइस कि चलिए यहाँ पर कद्र जो है वो लोग करना सीखे तो ये बहुत अच्छी बात है. जैसे हम कहते हैं वी ऑल हैव द गुड एंड द बैड पार्ट, और ये हमें ही पता है कि हमारे अंदर क्या कुछ छुपा होता है. लेकिन जैसे हम कहते हैं दैट लेडीज जो है दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे यहाँ पर आपने लिखा कि मोहब्बत सब्र और कुर्बानी की मिसाल, आई गेस दैट्स द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जो बस लेडीज़ में देखने को मिलता है. एंड थैंक यू सो मच सायरा बानू जी, आपने ये स्वीट सा मैसेज यहाँ पर शेयर किया फॉर ऑल द वंडरफुल लेडीज़. सो आई एम श्योर कि ऑल द लेडीज़ जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, आप तो इस वक्त मुस्कुरा रही हैं, बिकॉज ये तो हम सब कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे अल्फाजों में ढाल दिया है सायरा बानू ने. सो ये था एक स्वीट सा मैसेज फॉर ऑल द लेडीज़ कमिंग फ्रॉम सायरा बानू. और चलिए यहाँ पर वर्ण एंड प्रीत के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं गाना और एंजॉय कर रहे हैं आप हमारे साथ. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. ओके, आप वर्षा एंड प्रीता मुझे ओके आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. लेकिन देखिए, हम आपका मैसेज समझ गए. एक्चुअली वी डिड नॉट गेट द फुल मैसेज यहाँ पर, लेकिन आपके मैसेज लिखने की स्टाइल से हमें समझ आ गया दैट आप है प्रीतम बेटू और पीटू से साथ दे रहे हैं. इस वक्त कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ. तो चलिए दोस्तों, इस अगले गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. छोड़े जा रहे हैं आपको, लेकिन गानों का कारवां जारी रहेगा.

मेरे बाद आ रही है गिनी शालेकर और रफ्तार वाइब्स, उनका साथ निभाइए और कीप एंजॉयिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक जो आपको मिलता है ओनली ऑन RM2 रेडियो मस्ती। चलिए दोस्तों, ये गाना आप सभी के नाम। हैव अ वंडरफुल मंडे एंड अ वंडरफुल वीक अहेड।

0: आइए सुनते हैं समाचार पूजा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनिशा, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस में मधुमेह यानी डायबिटीज की रोकथाम और इसके कारण होने वाली जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की गई है। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नामक गैर सरकारी संगठन का लक्ष्य मॉरिशस की जनता के साथ मिलकर काम करना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। संगठन का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अनियंत्रित मधुमेह के मामलों में 5% की कमी लाना है।

0: के लिए समुदाय आधारित गतिविधियों, शोध और सर्वेक्षणों के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को समझने और उसके आधार पर प्रभावी कदम उठाने की योजना है। टीचर्स डे के मौके पर शिक्षण से जुड़े पेशेवरों ने एक बार फिर उन चुनौतियों को गौर किया है जिनका सामना उन्हें रोजाना करना पड़ता है। अनुशासन, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक समर्थन और काम करने की परिस्थितियों जैसी मुख्य पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। शिक्षक दिवस के संदर्भ में गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन ने कैटोबोन में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। मौके के मुख्य मेहमान शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। वर्ल्ड नीट और यूनिवर्सल फैब्रिक के लगभग 600 कर्मचारी अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हैं। श्रमिक संघों के फेडरेशन ने इस बात की आलोचना की है कि जब से इन कंपनियों को वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लाया गया है तब से कोई नई त्रिपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। विदेश में फ्रांस में पुलिस और छात्र प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद से 24 स्कूलों में आग लगा दी गई है और उनमें तोड़फोड़ भी की गई है। बताया जा रहा है कि 400 से 500 हाई स्कूलों में कक्षाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित की गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides, RM2.

0: subscribe to Radio Masti.
1: बिल्कुल जी, सलाम नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम. कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स? वेल जी, चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 4:07 हो चुके हैं और आज है मंडे 5 अक्टूबर 2024. जी हां दोस्तों, हम हाजिर हो गए हैं विद अ बंच ऑफ बहुत ही धमाकेदार गाने टू गिव यू वन ऑफ द लवलीएस्ट एंड बेस्ट म्यूजिकल कंपनी सदा रखना कंपनी यू बैक होम. सो बस ऐसे ही यूं ही साथ देते रहना और खूबसूरत गाने तराने आप एंजॉय करते रहना एंड कीप ऑन एंजॉयिंग the good music always on our end to radio masti. To chaliye ji 5491194 par agar aap road pe hain, you have some traffic updates to share hamare sath hai taki hum baki jo hamare listeners hain drivers unko aga kar sakte hain agar kuch problem ho. So do let me know on 5491194 par and of course leke jayenge bollywood ki duniya mein for some bollywood ki baatein and sports news, aapke fashion tips, aapke traffic updates, bahut kuch hone wala hai dost. To chaliye ji, here we go, let's kick start this beautiful show. We've some और भी धमाकेदार गाने तड़का मार के सुना रहे हैं आज. Here we go, it's me, Ganesh on the mic. Gonna be here रात के exactly 7 तक.
0: RM2 Radio Masti.
2: Radio Masti.

बिल्कुल जी, ये पैसा हो तो मुसीबत है, ना हो तब भी मुसीबत, लेकिन प्यार हो तो मुसीबत नहीं है, और ना हो लेकिन बहुत मुसीबत हो जाती है। फिलहाल के लिए हम लेकर आए हैं एक और खूबसूरत सा गाना टू ऑल आवर डियर लवली लिसनर्स हु आर ऑलरेडी ड्राइविंग राइट नाउ हिटिंग द रोड, सो ड्राइव केयरफुली। और मिस्टर धर्म जी, ये गाना स्पेशली आपके लिए।

बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रेडियो मस्ती सुनते रहना और एंजॉय करते रहना है। और वैसे ही आज मंडे आफ्टरनून 4 तो बज चुके हैं, मतलब 4:15 तो बज चुके हैं। और अगर आपकी एनर्जी लेवल अभी भी वीकेंड को ढूंढ रहा है ना दोस्त, तो डोंट वरी, आपकी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए रफ्तार वाइब्स इज राइट हियर। और ऑफिस में हो का वैसे ही बस में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, टैक्सी में हो, गाड़ी में हो, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, ट्रैफिक में अगर फंस चुके हो, सो जस्ट टू लेट यू नो कि म्यूजिक को अपना

0: मंडे मोटिवेशन बना लो, स्टे ट्यून ना, क्योंकि रेडियो मस्ती पे वाइब्स अभी भी ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वैसे ऑलरेडी है. और इट्स मी कृष्ण तो माइक साथ देने के लिए, एंड फॉर दोस हु आर ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली एंड एंजॉय योर राइड. एंड जस्ट टू लेट यू नो, द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक, RM2 रेडियो मस्ती.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन।

बिल्कुल जी, तेरे उठे दिल पे हम भी मरते हैं, हाय हाय मेरी जान, बल्ले बल्ले। Such beautiful and lovely गाने, especially for you, my dear lovely listeners. और फिलहाल के लिए अब जो गाना हम लेकर आए हैं, इसके लिए किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आंखें को बंद करो और फील द वाइब्स, लेकिन टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग डोंट क्लोज योर आईज। हिमेश रेशम या विनीत नमाना की आवाजों में, that's hookah bar for you, my dear. Here we go, let's hit it.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OMG सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक है जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आए थे आप लोगों के लिए दैट वाज अ लवली वॉइस ऑफ हमारे प्यारे जो हैं सोनू निगम जी एंड महालक्ष्मी जी. सलाम इश्क मूवी से लिया गया था स्पेशली फॉर यू एंड वाला. चलिए जी फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर जो हम एक्चुअली डेडिकेट करना चाहेंगे टू ऑल लवली स्पेशल टीचर्स इन द वर्ल्ड. जी हाँ आज है 5th of October एंड वी आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे. सो आज का दिन डेडिकेट करते हैं उन स्पेशल लोगों के नाम जो सिर्फ हमें पढ़ाते ही नहीं बल्कि हमें लाइफ जीना भी सिखा देते हैं, है ना. तो ऑल द अमेजिंग टीचर्स आउट देयर, हैप्पी टीचर्स डे ऑन OMG रेडियो मस्ती. वैसे देखा जाए तो उनकी डांट में भी केयर होती है और उनकी एडवाइस में भी एक लेसन होता है और आप सभी लोगों के एनकरेजमेंट में वो पावर होती है जो कभी कभी हमें खुद पर बिलीव करना सिखा ही देते हैं. एंड थैंक यू फॉर दैट. मे बी हम हर दिन थैंक यू नहीं बोलते हैं बट ट्रस्ट मी आपकी मेहनत टीचर्स, आपकी पेशेंस एंड सपोर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता है. तो आज a big big big thank you goes to every teachers jinhone hum sab ko inspire kiya hai, guide kiya hai aur hame ek behtar insaan banne mein help ki hai. So happy teachers day to all the wonderful teachers. Aap sirf features nahi lekin hamare lives ko aap logo ne shape kiya hai. So thank you for that and wishing all teachers happy teachers day on OMG radio masti.
2: OMG radio masti.

0: बिल्कुल जी, जितने भी शहर की लड़कियां, क्या सारे लड़कियों के लिए दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक, स्पेशली ऑन आवर राइट टू रेडियो मस्तिष्क
1: लड़की रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम2
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
4: स्पोर्ट्स न्यूज
5: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: चार बज के 42 मिनट हो चुके हैं ना. यस, चलिए जी, लेके जाएंगे स्पोर्ट्स की गलियों में हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ, जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज. गुड आफ्टरनून अरविंद जी.
6: गुड आफ्टरनून आपको. हेलो एवरीवन, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. यूएफए नेशंस लीग के लिए आज लीग ए ग्रुप 1 के दो मैच खेले जाएंगे, फ्रांस वर्सेस बेल्जियम, इटली वर्सेस टर्की. इस ग्रुप में तीन मैचों के बाद फ्रांस अभी पहले स्थान पे है, 7 अंक लिए हुए 7 पॉइंट्स. बेल्जियम उसे केवल 1 अंक पीछे है. इटली के पास है 4 अंक, जबकि तुर्की के पास कोई भी अंक नहीं है. आज के अन्य मैच, नॉर्दर्न आयरलैंड, जॉर्जिया, यूक्रेन, हंगेरी, बोस्निया, पोलैंड, रोमेनिया का मुकाबला स्वीडन से होगा, साइप्रस, लात्विया, मोंटेनेग्रो, आर्मेनिया, और कल के मैचों में क्रोएशिया, स्पेन, इंग्लैंड, चेक रिपब्लिक. फ्रेंडली मैचों में युगांडा का मुकाबला कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से और मॉरिशस वर्सेस श्रीलंका 7 बजे को 2 में ये मैच खेला जाएगा. पहले मैच में मॉरिशस की जीत हुई थी 3-0 से. पोर्टुगल के खिलाफ खेलते हुए कल अर्लिंग आलोन को चोट लगी है. अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो अगला मैच यानी लिवरपूल के खिलाफ खेल पाएगा या नहीं. इस वीकेंड से प्रीमियर लीग की वापसी होगी. इस सैटरडे को सैटरडे मैच अर्ली किक ऑफ आर्सेनल वर्सेस लीड्स, फिर 6 बजे एस्टन विला, ब्रेडफोर्ड, चेल्सी, बोर्नमुथ, इप्सविच टाउन, फुलहम, सन्डरलैंड, ब्राइटन, और लेट मैच होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड, टोटनहम हॉटस्पर. फिर संडे को क्रिस्टल पैलेस, नॉटिंघम फॉरेस्ट, हल सिटी, एवर्टन और लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी द बिग वन. फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के बहरेन ग्रैंड प्री में मैक्स वेरस्टापेन की जीत हुई रेडबुल टीम के साथ. इस साल ये उसकी पहली जीत है. अभी के लिए एंटोनेली लीडिंग बाय 84 पॉइंट्स. चाइना ओपन भी जारी है. आज काफी मैच खेले जाएंगे. कल सुबह इन पर आपको ज्यादा डिटेल्स देंगे. टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती. टेक केयर. बाय बाय.
3: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट.
7: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
1: Raftar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.

सच ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन हम लेकर आते हैं स्पेशली फॉर यू एवरी आफ्टरनून 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब जहां पे निशा लेके जाते हैं ऑन अ फिल्मी राइड्स थैंक यू सो मच साथ देने के लिए चेक योर टाइम इट्स ऑलरेडी 5 पीएम

वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो ऑन दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, जहां पे इग्निशा लेके जा रही है ऑन द फिल्मी राइड्स। जहां दोस्तों 5:08 हो चुके हैं, विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड मैजिकल मंडे आफ्टरनून। माय डियर नमस्कार और इग्निशा का प्रणाम। जहां दोस्तों मंडे आफ्टरनून के इस खूबसूरत शो में आप सभी म्यूजिक लवर्स का स्वागत है। ऐसे ही अभी थोड़ा टाइम हुआ है रिलैक्स करने का। आई नो काम से बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, शायद बसेस में बैठ के हमारा साथ दे रही हैं। कहीं से भी अगर आप हमें सुन रहे हो तो आपको याद दिला दे थे दिस ब्यूटीफुल लवली शो बस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। आई नो वीकेंड अभी अभी गुजरा है, कुछ मंडे ब्लूज भी हम फील करते हैं, थकावट जाती नहीं है वीकेंड की जब मंडे आते हैं। बट स्टिल वी हैव गॉट यू द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर आपका मंडे थोड़ा बोरिंग चल रहा है, आई होप कि अब मूड थोड़ा बेटर हो गया है बाय लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। हियर वी गो 5499 1294 पर स्टार्ट सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस।

5:16 हो चुके हैं और 5499124 पर I've got your dedication. Thank you so much, my dear lovely listeners, जो अपने खैर खुशियां हम तक पहुंचा रहे हैं words के जरिए. बिल्कुल जी, so I just want to dedicate the next one for Prayan. I just want to wish you a joyful birthday और best wishes coming from your mama Krishti, आपकी बहन Khaira, नानी Anita, Sarita, Johnny, Shubha, नाना Mukesh, Manoj, Suren from Nikit Singh परिवार से जो Rosebel के रहने वाले हैं, dear Paul family of Liskali, Anubhu family of Rosie, and God bless you and lucky charm of our mamas are wishing you a magical birthday.

0: Radio Masti.
1: Bilkul ji, to all those who are celebrating their birthdays as well, I just want to wish you a magical one today on R&T Radio Masti. Aur chale ji, ye agla gana specially shake away enjoy ya kar raha hai kya bahut hi pyare pyare gaane aa ja rahe hain and we are enjoying us. So the next one goes out to you, my dear. I guess it's Gayatri. So Gayatri, you never sign your message. So Gayatri, ye hai agla gana aapke liye. Sweet meethe ki nahi. Yes, good afternoon ji. Ye agla gana for you, Madhvi and Malini. That's Malini and चले ये लड़की है गांव के लड़कियां के लिए कोई गाना अच्छा है ना मैं जरूर प्ले करती हूँ तो चलिए जी अगला गाना अर्शद के लिए एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम बेबी रेबिका की तरफ से राम राम जी आपको भी फ्रॉम कैथोस कृष्णा यशवी ईशानी कॉफी का लुफ ले रही हैं एंजॉय कर रहे हैं दैट्स अ स्वीट एंजॉय करते रहना सो द नेक्स्ट वन गोज़ आउट टू यू हे सिस्टर यस ब्रदर दैट्स बडवाग बिरेसी जी और एक गाना हो जाए आपके नाम जरूर एंड चलिए जी ये अगला गाना उन तमाम सुनने वालों के नाम जो पुराने गानों के शौकीन हैं सो व्हाई नॉट लेट्स गो बैक डाउन मेमोरी लेन
2: R&T रेडियो मस्ती
3: सुनते रहो
4: कोई यहां आह नाचे नाचे

0: Trust me, guys, that was such a beautiful song in the lovely, sweetest voice of Shreya Ghoshal. And Vaishali, jo hai, aap logon ke liye lekar aaye hain on RM2 Radio Masti. And while to all drivers, please drive carefully, aaram se gaari chalana. Dheere dheere, hole hole, bas pahunche jaoge and maintain distance. While driving, seat belt hamesha on rakhe aur mobile phone ko thora door hi rakhe to hi better hai. To chaliye ji, hamare pyare pyare listeners, waise jo bhi abhi aap kar rahe ho na, ek second ke liye pause karo. बिल्कुल एकदम पॉज करो, क्योंकि रेडियो मस्ती पर ना गिने अभी एक वाइब चेक करने वाली है. अगर मूड बस है तो जल्दी से स्माइल करो, अगर आपका मूड खराब है तो बस सिंपल सी बात है, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए, क्योंकि आई एम चेंजिंग द बीट अ लिटिल बीट टू अरमान मलिक की आवाज में. तैयार हो जाइए पहला प्यार को याद करने के लिए. सच अ लवली वन, गिव मी अ ब्यूटिफुल स्माइल नाउ, एंजॉय इट.
1: RM2 Radio Masti.

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: तो चलिए जी 5:40 हो चुके हैं और फिलहाल के लिए योर फैशन टिप्स हम लेकर आए हैं समर ऑफिस फैशन टिप्स, लेकिन आज मैन के लिए. जी हाँ, सो गर्मी का जो सीजन जो है शुरू हो चुका है, तो ऑफिस लुक का मतलब है ये नहीं कि स्टाइल को इसी के भरोसे छोड़ दो. गाइस, रिमेंबर समर में लाइट वेट और ब्रीदेबल फैब्रिक्स चूज करो. लिनन कॉटन या कॉटन ब्लेंड शर्ट्स जो है, एंड दे आर एक्चुअली योर बेस्ट फ्रेंड्स इन समर. सो वाइट, लाइट ब्लू, बेज, पेस्टल ग्रीन एंड जैसे लाइटर शेड्स नॉट ओनली लुक क्लासी देते हैं पर ऑल्सो कीप द लुक वेरी फ्रेश द होल डे. सो फुल फॉर्मल जाना तो लाइट कलर्ड ट्राउजर्स विद अ वेल फिटेड शर्ट ट्राई करो. और अगर ऑफिस का ड्रेस कोड थोड़ा रिलैक्स है तो जीनस विद अ क्रिस्प पोलो कैन वर्क रियली वेल, ट्रस्ट मी. और एक इंपॉर्टेंट टिप है कि फिट मेकर्स, शर्ट ना तो टाइट होना चाहिए ना तो लूज. क्लीन वेल फिटेड क्लोज इंस्टेंटली मेक योर लुक मोर पॉलिश्ड एंड शूज भी क्लीन रखो. बेल्ट और शूज को कोऑर्डिनेट करो और फ्रेग्रेंस ऑफकोर्स समर के लिए समथिंग फ्रेश एंड लाइट चूज करो. सो गाइज, रिमेंबर समर ऑफिस स्टाइल का जो फंदा सिंपल है, स्टे कूल, लुक शार्प एंड ऑलवेज कीप इट क्लासी एंड इजी.
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: to Radio Musty.
1: Vous êtes grande nouveauté chez McDonald's. Découvrez le Spicy Chicken Fillet préparé avec du blanc de poulet 100% local. Du goût, du croustillant, une bonne dose de spicy et surtout, trois façons d'en profiter. En burger, en wrap ou en morceaux. À toi de choisir. Un nouveau goût bien de chez nous. Notre poulet, notre fierté. Local, never tasted this good.
2: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: Le nouveau Spicy Chicken Fillet à découvrir dès maintenant chez McDonald's.
0: RM2
3: Radio Musty.
4: तो चलिए जी अभी 5:54 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में. एंड वेल, जैसे कि आपको पता है गानों के ये जो सिलेक्शंस लेकर आए हैं वो खासकर आपके लिए हैं. तो इस खूबसूरत सफ़र में थोड़ी देर बाद हम बढ़ेंगे 6 बजे की समाचारों की ओर और उसके बाद गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी गिनेशा.

नमस्कार, आप सभी को समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। दुनिया के कई देशों के मंत्री, निगोशिएटर्स और वरिष्ठ अधिकारी इस गुरुवार 8 अक्टूबर से फिजी के नादी शहर में प्री कॉप सम्मेलन के लिए एकत्र हो रहे हैं। ये सम्मेलन अगले महीने तुर्की में लगने वाले कॉप 31 शिखर सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज 5 अक्टूबर को शिक्षकों को सम्मान देने और उन्हें नमन करने का मौका है। ये वही लोग हैं जो हमारे भविष्य के आकार देते हैं, मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और हम में संस्कार डालते हैं। चाहे कैसी भी चुनौतियां हो, बचपन से लेकर बड़े होने तक वे अपने छात्रों के सफर में अहम भूमिका निभाते हैं। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल और नासा के बीच एक समझौता तय। मकसद है एक दूसरे सैटेलाइट का निर्माण तथा एक अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना करना। भले ही अंतरिक्ष में कदम रखना अभी दूर है, लेकिन इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। नई महत्वाकांक्षाएं आकार ले रही हैं। फ्लाई दुबई की उड़ान पर पिछले हफ्ते की गई आतंकी हमले की कोशिश के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विमानन यातायात को लेकर सुरक्षा नियम सख्त किए जाने का ऐलान किया। दुनिया के कई देशों के मंत्री, निगोशिएटर्स और वरिष्ठ अधिकारी इस गुरुवार 8 अक्टूबर से फिजी के नादी शहर में प्री कॉप सम्मेलन के लिए एकत्र हो रहे हैं। ये सम्मेलन अगले महीने तुर्की में लगने वाले कॉप 31 शिखर सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में आयोजित किया गया है।

0: मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिजी की तरफ से दुनिया भर के देशों से मांग की जा रही है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जलवायु पर होने वाली बातचीत ठोस कदमों का रूप ले। अगले 9 से 20 नवंबर के बीच तुर्की में COP31 शिखर सम्मेलन लगेगा। इस सिलसिले में हिंद महासागर के टापू देश एक साथ मिलकर जलवायु से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में पिछले हफ्ते कुदा आर्ट्स सेंटर में एक इलाकाई डायलॉग सत्र लगा। विषय रहा सामूहिक वकालत को बढ़ावा देना और अन्य टापू क्षेत्रों के साथ सहयोग मजबूत करना। सरकारी प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटियों और युवा संगठनों के करीब 60 प्रतिनिधियों ने इस 2 दिवसीय चर्चा में भाग लिया। शुक्रवार 2 अक्टूबर को लंदन में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम और बरतानी राष्ट्रीय सलाहकार जोनाथन पावेल के बीच शागुस मुद्दे पर हुई बैठक कई अखबारों की सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री के एक बयान का हवाला देते हुए लेक्सप्रेस, जिमोश और वीकेंड ने अपने लेखों में कहा है कि अगर उचित समय सीमा के अंदर शागुस संधि को मंजूरी नहीं दी जाती है तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपना सकता है। मेगान पुनापनायकन, गीता सुनाराइन।
1: लंदन की निजी यात्रा पर गए प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने शुक्रवार दोपहर बाद को ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल से मुलाकात की। बैठक के दौरान शागुस द्वीप समूह का मुद्दा मुख्य रूप से उठाया गया। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद हुई, जिसमें उन्होंने मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते को बहुत ही खराब समझौता करार दिया था। लेक्सप्रेस जिमोश के अनुसार ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली। साप्ताहिक अखबार के अनुसार डॉ. नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया कि मॉरिशस इस बात को समझता है कि लंदन के लिए इस मुद्दे पर वाशिंगटन के साथ मिलकर काम करना जरूरी है, लेकिन शागुस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते की पुष्टि में हो रही देरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उचित समय के भीतर संधि की पुष्टि नहीं की जाती है तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा, मैंने ये स्पष्ट किया है कि अगर संधि की उचित समय सीमा के भीतर पुष्टि नहीं की जाती तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ब्रिटिश अच्छी तरह जानते हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये मुद्दा वीकेंड को दिए गए बयान में भी उठाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तय समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा, मैंने जोनाथन पावेल को ये समझाया कि मॉरिशस अब और इंतजार नहीं कर सकता। हम समझते हैं कि इस मुद्दे को लेकर लंदन को अमेरिकियों के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ब्रिटेन शागुस समझौते की पुष्टि करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वे इस दायित्व के लिए बाध्य है। साप्ताहिक अखबार के अनुसार प्रधानमंत्री ने मॉरिशस, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच जल्द ही त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा, मैंने ये स्पष्ट संदेश भी दिया है कि शागुस द्वीपों पर मॉरिशस की संप्रभुता पर कोई बातचीत नहीं हो सकती, भले ही हम जानते हैं कि अमेरिका ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मैंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर संधि की पुष्टि के लिए कोई समाधान नहीं निकलता है तो मॉरिशस के पास कानूनी कार्रवाई शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कानूनी कार्रवाई के मुद्दे पर लेक्सप्रेस जिमोश के अनुसार मॉरिशस, लंदन और वाशिंगटन के बीच जारी बातचीत के दौरान कुछ समय तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मॉरिशस अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं करेगा। अगर जरूरी हुआ तो स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए हमें कानूनी कार्रवाई करनी होगी। दोनों अखबारों के अनुसार डॉ. नवीन रामगुलाम और जोनाथन पावेल के बीच ये बैठक चार्ल्स पावेल की मौजूदगी में हुई, जो पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं।
0: और बुलेटिन की शुरुआत में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। दुनिया के कई देशों के मंत्री, निगोशिएटर्स और वरिष्ठ अधिकारी इस गुरुवार 8 अक्टूबर से फिजी के नादी शहर में प्रीकॉप सम्मेलन के लिए एकत्र हो रहे हैं। ये सम्मेलन अगले महीने तुर्की में लगने वाले COP31 शिखर सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिजी की तरफ से दुनिया भर के देशों से मांग की जा रही है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जलवायु पर होने वाली बातचीत ठोस कदमों का रूप ले। कुनाल

0: गुजी अशिता रघु।
1: नादी शहर में आज पूर्ण बैठक की शुरुआत वाले दीवानुआ ज्ञान का आदान प्रदान विषय के साथ हुई। फिजी की पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा फिजी प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख लिंडा टाबुया ने कहा कि फिजी चार प्राथमिकताओं को लेकर अपना प्रयास जारी रखेगा। इनमें वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को बनाए रखना, जलवायु के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता को जरूरतमंद समुदायों तक पहुंचाना, वैश्विक जलवायु कार्रवाई में महासागर को केंद्र में रखना और प्रशांत क्षेत्र की आवास तथा नेतृत्व को और मजबूत करना शामिल है। दुनिया के प्रमुख निर्णय लेने वालों को अपने तटों तक लाकर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुर्की के अंताल्या में होने वाले COP31 तक पहुंचने का रास्ता प्रशांत क्षेत्र की वास्तविकताओं, उसकी मजबूती और उसके नेतृत्व को ध्यान में रखकर तय किया जाए। COP31 के लिए वार्ता के अध्यक्ष और ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवन ने फिजी में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रमुख परियोजनाओं के तहत $5.7 मिलियन की सहायता देने का वादा किया है। मेरा मानना है कि प्रशांत क्षेत्र दुनिया के छोटे द्वीपीय विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है और जिन देशों को जलवायु के लिए आर्थिक सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें ही इसे हासिल करने में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम इस दिशा में आगे और प्रगति करेंगे। आने वाले दिनों में मैं इस बारे में और जानकारी दूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने प्रशांत क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के प्रयासों के लिए 3 वर्षों में $147 मिलियन का बजट भी तय किया है। यहाँ मौजूद नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे देशों के लिए जलवायु परिवर्तन उनके अस्तित्व के लिए सचमुच एक खतरा है। मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल भी इन चर्चाओं में हिस्सा ले रही हैं। इसका उद्देश्य अगले महीने तुर्की में होने वाले जलवायु सम्मेलन से पहले छोटे द्वीपीय देशों की स्थिति को एकजुट करना है। गुरुवार तक कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी, इनमें जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में कमी, जलवायु परिवर्तन के बीच दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के अधिकार, पानी, आवास और खाद्य सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं।
0: अगले 9 से 20 नवंबर के बीच तुर्की में COP31 शिखर सम्मेलन लगेगा। इस सिलसिले में हिंद महासागर के टापू देश एक साथ मिलकर जलवायु से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाने की तैयारी में है। इस संदर्भ में पिछले हफ्ते कुदाउत सेंटर में एक इलाकाई डायलॉग सत्र लगा। गीता सुनारायण को सुनते हैं।
2: बाढ़, तटीय इलाकों में रेत का बहाव, समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी, जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों का सबसे ज्यादा असर टापुओं पर पड़ रहा है। मॉरिशस में हिंद महासागर आयोग के सदस्य देश अपनी नीतियों और रुख में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि COP31 में वे साझा प्राथमिकताओं के साथ पहुँच सके। हिंद महासागर आयोग के महासचिव कहते हैं, सदस्य देशों के लिए समान स्थिति निर्धारित करना, साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना, प्रशांत और करीबियाई टापुओं के साथ साझेदारी कायम करना चाहते हैं। अलग अलग पक्षों के साथ विचार विमर्श के जरिए ये काम पहले ही शुरू हो चुका है। जुनियो पर्यावरण मंत्री कागन फुकुन भाषा कहती हैं, सभी लोगों ने कहा कि वे प्रभावों का सामना कर रहे हैं। एक ज्यादा शक्तिशाली और सद्भावनापूर्ण ताकत की बात करनी चाहिए ताकि फाइनेंस तक ज्यादा पहुंच हो। इन चिंताओं को जलवायु वार्ताओं में मजबूती से रखने के लिए टापू देशों को अपनी क्षमता भी बढ़ानी होगी और जरूरी साधन उपलब्ध कराने होंगे। मॉरिशस और सेशल्स के लिए राष्ट्रसंघ रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लिजा सिमोइक सिंह कहती हैं, राष्ट्रसंघ जलवायु को लेकर समझौताकारों की ट्रेनिंग पर दिलचस्पी रखता है। पिछले साल मॉरिशस, सेशल्स, कुमुरो, कप वेर्डे के साझेदारों के साथ ऑस्ट्रेलिया जो COP31 की सह अध्यक्षता कर रहा है, वो भी चाहता है कि हिंद महासागर के टापू देशों की आवाज को बातचीत में ज्यादा मजबूती से सुनी जाए। मॉरिशस, सेशल्स, कुमोरो और मारागास्कर के लिए ऑस्ट्रेलिया के उपचायुक्त केट वागियान कहती हैं, ऑस्ट्रेलिया कप को लेकर समझौता बातचीत कर रहा है, महासागर के महत्व को बढ़ावा दे रहा है और पेरिस समझौते को लागू कर रहा है। उद्देश्य है कि टापू देश एक साझा रुख और ठोस प्रस्तावों के साथ कप 31 की बातचीत में शामिल हो।
0: टीचर्स डे के मौके पर शिक्षण से जुड़े पेशे

0: वरुण ने एक बार फिर उन चुनौतियों को गौर किया जिनका सामना उन्हें रोजाना करना पड़ता है। अनुशासन, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक समर्थन और काम करने की परिस्थितियों जैसे मुख्य पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। शिक्षक दिवस के संदर्भ में गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन ने आज कैटबोन में एक विशेष समारोह का आयोजन किया था। अवसर के मुख्य मेहमान शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिए। अनाबेल वुल्बेया, गीता सुना राइन।
1: आज पढ़ना पहले जैसा नहीं रहा। कुछ स्कूलों में छात्रों का व्यवहार शिक्षकों के लिए उनकी जिम्मेदारियों को और चुनौतीपूर्ण बना सकता है। ऐसे में अनुशासन का मुद्दा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन का ये जायजा है जिसने आज कैटबोन में अपने सदस्यों को एकत्र किया। इसके अध्यक्ष विशाल बोजित कहते हैं, समाज बदल गया है, बच्चों का विकास हुआ है, अभिभावकों को भी अध्यापकों के प्रति सम्मान होना चाहिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। चुनौती है बच्चों का समर्थन करना और उम्मीद है कि जो सहयोग हम देते हैं, चाहे वो शैक्षिक हो या सामाजिक, उनमें समाज के प्रति एक जिम्मेदारी हो। ये मांगे शिक्षा मंत्री की चिंताओं से भी जुड़ी हैं। उनका कहना है कि ऐसे छात्रों की मदद के लिए एक नए ढांचे पर काम किया जा रहा है जिनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद कहते हैं, कुछ स्कूलों में ऐसे छात्र हैं जो स्कूल को अनुशासनहीनता और अपने व्यवहार से कब्जे में कर लेते हैं। उनसे बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक सहयोग देते हैं, फिर भी वे अन्य बच्चों को मारते हैं, अध्यापकों को धमकी देते हैं। इन बच्चों से निपटने के लिए एक ढांचा होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल दफ्तर और अन्य मंत्रालयों के साथ बातचीत चल रही है ताकि एक कानूनी ढांचा भी हो। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों और अध्यापकों तथा नॉन टीचिंग स्टाफ की सुरक्षा को खतरा न हो।
2: La sécurité de l'ensemble des enfants et du personnel enseignant non enseignant jamais être affecté.
1: विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर एक और घोषणा की गई। अगले साल 5 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। ये शिक्षकों के प्रति सम्मान का एक प्रतीकात्मक कदम है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनेस्को की शिक्षकों की स्थिति से संबंधित सिफारिश को 60 साल पूरे हो रहे हैं। ये दिन उन सभी शिक्षकों को सम्मान देने का अवसर है जो हर दिन देश के भावी नागरिकों को तैयार करने में अपना योगदान देते हैं।
0: चाहे सड़क पर पैदल चलने वाले लोग हो या गाड़ी में सफर करने वाले, असुरक्षा सबको हो सकती है। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी यूनिट की मिली जुली पहल पर बहुत जल्द एक एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की जाएगी जो विशेष रूप से कम उम्र से ही सड़क सुरक्षा की अच्छी आदतें सिखाने के लिए तैयार किया गया है। इस बीच देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को हर हफ्ते 50 मिनट तक सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। कुतुहाफे में दसियों परिवार अभी भी स्वच्छ पानी और निचली आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कईयों के पास अपनी जमीन के लिए सालों से कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। भूमि और आवास मंत्री शाकिल मोहम्मद ने CWA और CEB के प्रतिनिधियों के साथ आज स्थल का दौरा किया। मकसद रहा स्थिति का जायजा लेना जो कुछ निवासियों के लिए लगभग 15 सालों से खींचती चली आ रही है। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल और नासा के बीच एक समझौता तय हुआ है। मकसद है एक दूसरे सैटेलाइट का निर्माण करना तथा एक अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना भी। भले ही अंतरिक्ष में कदम रखना अभी दूर है, लेकिन इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। नई महत्वाकांक्षाएं आकार ले रही हैं। अंजू राम गुलाम, अर्शिता रघु।
3: 5, 4, 3, 2, 1, टेक ऑफ, या यूं कहें स्पेस मॉरिशस की शुरुआत, जो मॉरिशस की अंतरिक्ष यात्रा को समर्पित नई वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर उपग्रह से मिलने वाले आंकड़ों, आने वाली परियोजनाओं और विभिन्न साझेदारियों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। जुलाई में मॉरिशस नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 70वां देश बन गया है। उपग्रहों से मिलने वाले आंकड़ों और एयरबस तथा यूमेटसैट जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी के जरिए इन तकनीकों से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा रही है। इनका इस्तेमाल वाक्वा मौसम केंद्र में भी किया जाता है।

0: है। भूमि और आवास मंत्रालय की कार्टोग्राफ इन आंकड़ों की मदद से शहरी विस्तार को मापती हैं। करीब 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली मॉरिशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी में भी इनका इस्तेमाल होता है। ये क्षेत्र फ्रांस के क्षेत्रफल से 3 गुना से भी अधिक है। इन आंकड़ों से हमारे समुद्र तटों पर कटाव की स्थिति पर नजर रखने, सड़कों पर चलने वाले वाहनों की पहचान करने और घरों की छतों पर लगाए गए सौर पैनलों की संख्या दर्ज करने में भी मदद मिलती है। कुल मिलाकर 73 संस्थाएं इन उपग्रह आंकड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रोफेसर तिशान बौगन कहते हैं, यदि हम एक स्पेस एजेंसी बनती हैं, चाहे कम संसाधनों के साथ ही हम सहायता मांग सकती हैं जिससे हम विकास कर पाएंगे और इस विकास के लिए इन सैटेलाइट जानकारियों का होना अनिवार्य है, तभी हम विभिन्न सेक्टरों तक इसका वितरण कर पाएंगे। खास बात यह है कि 2021 में हमारे नानो उपग्रह MiaSat-1 के प्रक्षेपण के बाद जो अंतरिक्ष के पैमाने पर एक छोटी माचिस की डिब्बी जितना है, मॉरिशस अब इस साल के अंत तक एक और उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। मंत्री कविराज सुकों कहते हैं कि इसमें हमारा जीरो निवेश है क्योंकि भारतीय सरकार द्वारा हमें आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, न केवल एक दूसरा सैटेलाइट बल्कि हमें मुफ्त में सैटेलाइट जानकारियां भी प्राप्त हो रही है। मॉरिशस की अंतरिक्ष यात्रा अब धीरे धीरे आकार ले रही है और संभावनाओं की खोज तो अभी शुरू ही हुई है। इस बीच सपने देखने में कोई बुराई नहीं, अनंत अंतरिक्ष की ओर और उससे भी आगे।
1: मॉरिशस में मधुमेह यानी डायबिटीज की रोकथाम और इसके कारण होने वाली जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की गई है। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नामक गैर सरकारी संगठन का लक्ष्य मॉरिशस की जनता के साथ मिलकर काम करना है और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। मकसद है वर्ष 2035 तक अनियंत्रित मधुमेह के मामलों में 5% की कमी लाना। इसके लिए समुदाय आधारित गतिविधियां, शोध और सर्वेक्षणों के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को समझने और उसके आधार पर प्रभावी कदम उठाने की योजना है। मधुमेह आज दुनिया के सामने एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मॉरिशस में ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ की ओर से समुदाय आधारित एक पहल की शुरुआत की गई है। इसी दिशा में मॉरिशस स्थित लिस्पेरेंस ट्रेबिशे इलाके में एक सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने घर घर जाकर स्थानीय निवासियों से जानकारी एकत्र की और उनके स्वास्थ्य से संबंधी आंकड़े जुटाए।
2: एक डॉक्टर हमें लगे एक घंटा ले हमें से बात कर लग जावेद पर ढेर बतियलक हमें के चाहना स्वीप हो के हमें के मिला था यानी कोई चीज चाहना स्वीप हो के बस हमियों के लाश जाता है इतना पर हो गल है सर चाहना हमें के स्वीप करे के जे मैं अच्छा रह सर ना लड़का लोग के आगे रह सर ढेर दिन ले जी अब सर
3: मैं बहुत मिठो मीन पूछ जावे चला मैं सामो पापा को शोम Après, pour manger là, ben légumes, ça nous mange plus salade, ça là. C'est avec les buffets là, bien beau. Après, c'est là, ce cherchons tout ça là, comme ça nous calent. Tout bon conseil qu'ils ont donné, on connaît qu'à suivre, plus, oui.
1: इस पहल का मुख्य उद्देश्य मधुमेह की रोकथाम करना, अनियंत्रित मधुमेह को कम करना और इससे होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को रोकना है। संगठन का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को केवल अस्पतालों तक सीमित रखने के बजाय समुदाय को इस अभियान का सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए।
4: हम लोग डायबिटीज को जो बीमार है और प्री डायबिटिक जो डायबिटिक के आगे का स्टेज है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। एक ठुला अनुसंधान हो रहा है। हम लोग पार्टिसिपेंट्स को डायबिटिक पार्टिसिपेंट्स को प्री डायबिटिक पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करेंगे with their consent, you know, in different areas of Mauritius. वहाँ पर हम recruit करेंगे, उन लोग को train करेंगे, how and diet के बारे में सिखाएंगे, physical activity के बारे में सिखाएंगे, alcohol का harmful effect के बारे में बोलेंगे, similarly smoking के effect के बारे में बोलेंगे।
1: ये पहल केवल मॉरिशस तक सीमित नहीं है, नेपाल, अमरीका और पाकिस्तान जैसे देशों में भी संगठन की ओर से इसी तरह की सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। इन गतिविधियों के दौरान लोगों से सीधे मुलाकात की गई,
5: उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को समझने का प्रयास किया गया और मधुमेह की रोकथाम एवं स्वस्थ जीवन शैली को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए।

0: घर घर जाकर लोगों से संवाद करना, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा करना और लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करना इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
1: वर्ल्ड नीट के लाइन टेक्सटाइल और यूनिवर्सल फैब्रिक के लगभग 600 कर्मचारी अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हैं।

0: न होने पर खेद जताया और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर के समक्ष ले जाने की अपनी योजना का ऐलान किया। गीता सुनारायण को सुनते हैं।
1: कई महीनों से वर्ल्ड नीड्स क्लाइंट टेक्सटाइल्स और यूनिवर्सल फैब्रिक्स के कर्मचारी आर्थिक कठिनाइयों और तकनीकी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। तीनों कंपनियां फिलहाल वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन पर हैं, जिससे करीब 600 कर्मचारी अनिश्चितता में हैं। फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने आज वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन लागू किए जाने के बाद से नई त्रिपक्षीय बैठक नहीं बुलाए जाने पर चिंता जताई। एफटीयू ने हाल ही में प्रधानमंत्री को एक याचिका भेजी थी, लेकिन 30 सितंबर की तारीख वाले जवाब में प्रधानमंत्री दफ्तर ने बताया कि इस मामले को उचित कार्रवाई के लिए श्रम मंत्रालय को भेज दिया गया है।
2: De la réunion ou quelque réunion qui fut fixée et au ministère du travail et pour nous nous pouvons toujours réclamer qui la transparence bizarre et l'enquête qui fait le financement et aussi l'argent qu'il recevoir par la compagnie depuis MIC.
1: श्रमिक संघ का कहना है कि ये कदम कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा नहीं करता। एफटीयू ने अब इस मामले की ओर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर का ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया है। साथ ही श्रमिक संघ सरकार से हस्तक्षेप करने और प्रभावित कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है।
0: और बीते शनिवार गोविंदन पूजा का तीसरा शनिवार रहा। भक्तों ने देश के कोविलों में भगवान कृष्ण को समर्पित विशेष पूजा में भाग लिया। Your news on NBC Play and NBC.mu. विदेश में फ्लाई दुबई की उड़ान पर पिछले हफ्ते की गई आतंकी हमले की कोशिश के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विमानन यातायात को लेकर सुरक्षा नियम सख्त किए जाने का ऐलान किया है।

0: अब आखिर में चलिए जानते हैं मौसम का हाल अर्शिता रघु के साथ।
1: आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात के समय आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। कल सुबह ऊंचाइयों पर थोड़ी वर्षा होगी और अन्य इलाकों में दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा, 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान, न्यूनतम तापमान सटे प्लाटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान सेंटर प्लाटो वाले इलाकों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहली इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 6:08 पर और कल सुबह सूर्योदय 5:47 पर।

6:27 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक याच को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रुद्रकोस्ताल पोइंट कानूनी में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड श्री अनिरुद्ध भगवान जिन्हें लोग रवीन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के एक बजे इनके मकान रुद्रकोस्ताल पोइंट कानूनी से उठाकर दाहुची कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोभालेन लाफ्लोरा में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कुमारी देवनारायण पैदाशी नाम लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे उत्तम रघु के मकान शोभालेन

0: लाफ्लोगा से उठाकर घोंप वाक्य शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 19 सनासी गार्डन कॉफिरिंगा पोतुसाबल में 62 साल की 62 years old श्रीमती मनी देवी बंधन, श्रीमती मनी देवी बंधन पैदाशी नाम बांटुआ और जिन्हें लोग उषा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह नौ बजे इनके मकान नंबर 19 सनासी गार्डन फिरंगा पोतु साबल से उठाकर शिबैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। विजय लक्ष्मी रोड पुधोदो हामलेट में 74 साल के 74 years old श्री अनिरुद्ध अहोतार, श्री अनिरुद्ध अहोतार जिन्हें लोग श्याम नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 1 बजे इनकी पत्नी सत्यभामा अहोतार के मकान विजय लक्ष्मी रोड पुधोदो हामलेट से उठाकर काहू मौत्या पीतो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 138 मोसेलमा SIT रोजबेल में नंबर 138 मोसेलमा SIT रोजबेल में 68 साल की 68 years old श्रीमती वेदवंती रितु, श्रीमती वेदवंती रितु पैदाशी नाम कन्हाई और जिन्हें लोग माला नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनके बेटे अविनाश रितु के मकान नंबर 138 मोसेलमा SIT रोजबेल से उठाकर मारीजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। रेम्योनिये लागुलेट में 63 साल के 63 years old श्री बाबाजी जिन्हें लोग लातेत नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे इनकी पत्नी मानती बाबाजी के मकान रेम्योने लागुलेट से उठाकर बाबू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शिवाला रोड बाल्मिक लेन त्यामिनिस्त्रियोले में 68 साल के 68 years old श्री मदन लाल जीवन जिन्हें लोग सुनील नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान शिवाला रोड बाल्मिक लेन त्यामिनिस्त्रियोले से उठाकर त्यामिनिस्त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉयल रोड श्रीमेला फोर्ज पुज दी फ्लाक में 69 साल की 69 years old श्रीमती सुमती देवी सुनाराम जिन्हें लोग अनीता कुचुआ नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान रॉयल रोड श्रीमेला फोर्ज पुजदी प्राक से उठाकर लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। बुलांजे रोड पिजों लेन मोताई ब्लांश में 78 साल की 78 years old श्रीमती विद्यामती सुगंध पैदाशी नाम बुधराम और जिन्हें लोग विद्यामती नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थे कल सुबह दस बजे इनके मकान बुलांजे रोड पिजों लेन मोताई ब्लांश से उठाकर मोताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On MBC Play and MBC.MU. Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

0: Well guys, I really hope you're loving these beautiful and lovely गानों का selections जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. ये हैं आतिफ असलम की आवाज में, हाँ जी, taken from the movie Rustom, 2016 में release हुई थी. And well, we've got you beautiful more गाने coming up specially on Radio Masti. फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, take care, bye bye.
1: North, South, East or West, tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.

0: Time check, it's exactly 7 p.m.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: धीरे धीरे और ऐसे ही धीरे धीरे ये वक्त निकलता जाएगा और किसी को एहसास नहीं होगा, लेकिन हम हैं यहाँ पर आपको ये एहसास दिलाने के लिए। धीरे धीरे वक्त कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, और कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। इसलिए वक्त पर भरोसा करना भी एक तरीके का प्रेयर होता है, एक तरीके की इबादत होती है, और प्यार में इंतज़ार तो करना लाजमी है ही। चलिए 7:06 हो चुके हैं। विशिंग यू ऑल अ लवली लवली गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और यकीन मानिए दिन भर हम इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब आपसे मुलाकात होगी और कब आपसे थोड़ी बातें होंगी, आपके मैसेजेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे और हंसेंगे मुस्कुराएंगे, और आपका प्यार आपका सपोर्ट देकर हम इसका एहसास करेंगे और विल फील ग्रेटफुल। बस इसी वक्त का इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच कि आपका प्यार हमेशा हमें यहाँ तक खींची लाता है। Well, it's your evening lounge on the waves of Radio Masti, जहाँ पर दिव्या का साथ है रात्रि के 9 बजे तक। And maybe this is your sign to slow down a bit, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना कि evenings होते ही हैं slow down करने के लिए। तो अगर आप लोग इस वक्त drive कर रहे हैं, have a musical ride with Radio Masti, और धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाइएगा, उतनी ही धीमी रफ्तार से जितनी धीमी रफ्तार से हम अपने गाने को चला रही हैं, slowly, smooth and soothing गाने, and slowly but surely you'll reach your destination। प्यार की मंजिल तक आपको पहुंचाना हमारा फर्ज है, और प्यार की मंजिल पर हम इतना फोकस करते हैं कि हम सफ़र को ही सुहाना बनाना भूल जाते हैं। तो चलिए, आई जस्ट होप कि इस सफ़र को और भी मज़ेदार बनाने के लिए आप हमारा साथ लेंगे, और आपका प्यार आपका सपोर्ट तो हमारे साथ है ही। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग so much of worth to this show, and aapke messages ka hum intezar karenge, of course on 5499 1294 is the magical number.
1: Evening lounge
2: RM2
1: Radio Masti.

0: 7:19 to all those having their meal right now. आपको बना पे जी शुभाहार एंड जितना हो सके मोबाइल को साइड रखिए एंड कहते हैं ना कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए लेकिन कभी कभार दिस इज द ओनली टाइम जहां पर आप खाते समय बात करें कम्युनिकेट करें आपस में बताइए कि आपका दिन कैसा गया एंड हम भी जानना चाहते हैं कि आपका दिन कैसा रहा. चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुँच रहे हैं और आप कहती हैं हेलो दी माय मैसेजेस फॉर माय हबी रवि ड्राइविंग राइट नाउ आई कैन नॉट बी मोर ब्लेस्ड फॉर हैविंग यू इन माय लाइफ आई विल चेरिश यू इन माय हार्ट ऑलवेज एंड फॉर एवर थैंक यू फ्रॉम कारेश एंड दिस इज़ इट. जब भी आपको ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिलता है ना तो यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टवर्ड्स गॉड टवर्ड्स लाइफ एंड टवर्ड्स द पर्सन जो आपको पलकों पर बिठा के रखता है. तो चलिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी कारेश कि आप यहाँ पर अपना मैसेज हम तक पहुंचा पाए हैं. तो कारेश द नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर यू एंड योर हस्बैंड एक्चुअली रवि. यस रवि का के लिए आपने बहुत ही प्यार से मैसेज भेजा है. हेलो दीदी कैन आई डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर माय फॉरएवर लव. क्या बात है अंतिश. लगता है कि आप भी प्यार से दूर नहीं जा पाए और कहते हैं ना कि जितना ही आप प्यार से दूर भागते हैं उतना ही प्यार आपको ढूंढ ही लेता है. तो चलिए आई जस्ट होप कि द राइट वन फाइंड्स यू वेरी सून. अंतिश थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए एंड विद अ लिटिल ह्यूमर आपका मैसेज हम तक मिला और हमें थोड़ा बहुत हंसाने के लिए थैंक यू सो मच एंड गोज़ आउट टू ऑल दोज जो आपको जानते हैं एंड आपकी स्वीट मामा के लिए आपकी प्यारी सी दीदी के लिए एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त हमसे कनेक्टेड हैं और जो आपको जानते हैं. एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना गोज़ आउट स्पेशली फॉर ऑल दोज जो इस वक्त नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे या फिर आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको भूख वाश हमारा साथ देते रहे. कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे. इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: अक्कान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

वेल 7:35 हो चुके हैं. कैसा ये इश्क है जब सा रिस्क है. देखिए जब आप प्यार करते हैं तो ये रिस्क के साथ ही आता है. कभी कभी हम गलत इंसान से प्यार करने की गलती कर लेते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क होता है अपने आप में. बट इसको डेस्टिनी कहे या प्यार में एक अच्छा लक कहे कि एट द वेरी फर्स्ट टाइम कभी कभी लोगों को सही इंसान मिल ही जाता है और उनका प्यार में एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि वो कहते हैं कि लव डजेंट हर्ट एट ऑल. लेकिन जो गलत इंसान से प्यार करते हैं बाद में उनको एक सही इंसान मिल जाता है उनके लिए तो इट कम्स एज अ ब्लेसिंग इन दिस गाइज और तभी जाकर वो इस प्यार को इतना वैल्यू करते हैं. इसीलिए कहते हैं ना कि जहाँ पर खुशी है वहीं पर गम भी होते हैं और गम आते हैं आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि खुशी अपने आप में ही कितनी कीमती है. अब आप इमेजिन कीजिए अगर ज़िंदगी में बस गम ही गम होते तो आप कभी खुशी को नहीं जान पाते और ज़िंदगी में अगर बस खुशियाँ ही खुशियाँ होती तो आप जब गम को हासिल करते तो आप खुशी को कभी वैल्यू नहीं कर पाते. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अप एंड डाउन जिंदगी में बहुत ही मतलब एट टाइम्स आए ताकि आपको पता चले कि हाउ टू वैल्यू योर हैप्पीनेस एंड हाउ टू टैकल एंड हाउ टू फाइट योर स्ट्रगल्स. कोई बात नहीं, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ही लेकर बैठे रहे, कंप्लेन करते रहे और कंप्लेन करने से कुछ बदलता नहीं है. ये आपको ज़रूर रियलाइज़ करना है कि आप भले ही लाख कंप्लेन करें या फिर इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा. सोल्यूशन तभी मिलता है जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि क्या कुछ करना है. लेकिन एट टाइम्स यू नो ज़िंदगी में अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और एट टाइम्स यू डोंट नीड टू बी अ परफेक्शनिस्ट. एट टाइम्स यू जस्ट नीड टू बी एन एक्शन मेकर एंड गो गेटर और तभी जाकर सब ठीक हो जाता है. तो चलिए आई जस्ट होप कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही सही हो लेकिन ऐसा मुझे पता है पॉसिबल नहीं है क्योंकि जहाँ पर अप्स एंड डाउन्स होते हैं वहीं पर आप अपने साइलेंट बैटल्स को बस ऐसे ही लड़ते रहते हैं. बट आई जस्ट होप कि आपको ये स्ट्रेंथ मिले, आपको ताकत मिले अपने अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के लिए, अपने साइलेंट बैटल्स को स्ट्रगल और इसको फाइट करने के लिए. तो चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है एंड यहाँ पर एक और मैसेज आया है. हेलो टीम, लिसनिंग टू रेडियो मस्ती वाइल वर्किंग फ्रॉम होम, डेडिकेटिंग अ रोमांटिक सॉन्ग फॉर हबी आकाश. जस्ट वॉन्टेड टू रिमाइंड हिम दैट आई लव हिम सो मच फ्रॉम वाइफ कृति. हे कृति, थैंक यू सो मच आपके इस ब्यूटिफुल मैसेज के लिए. आई एम जस्ट श्योर कि अभी आपके पति आकाश हमें सुन रहे होंगे एंड

0: ये मैसेज सुनकर ज़रूर मुस्कुरा रहे होंगे और प्यार में यही मायने रखता है कि आप अपने चाहने वाले को थोड़ा सा हंसाए, अच्छा फील कराए। एंड आकाश जी, ये प्यार भरा मैसेज पाकर आप तो बहुत ही खुश हो रहे होंगे। एंड चलिए, आप भी कृति को याद दिला दीजिए कि आप उनसे भी कितना प्यार करते हैं। तो चलिए, द नेक्स्ट गाना गुजार फॉर आकाश एंड कृति स्पेशली।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.
0: And not to forget, ये गाना खास तौर से हम dedicate कर रहे हैं specially for Love Suraj Jajaria from Reshma Pomplemuses and goes out for Mom Surekha, Nani Lilauti from Lovely Daughter Varsha. Thank you so much हमारा साथ देने के लिए, वो भी बहुत ही प्यार से।

0: घर मिलाते चलिए रात्रि की 8 बज चुकी हैं।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

कभी कोई पूछने वाली सवाल है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो हमारा जवाब तो यही होने वाला है कि हाँ बेशक बेइंतहा प्यार करते हैं आप लोगों से, इसीलिए तो दिन भर आप लोग हमारे जहन में हमारे दिमाग में रहते हैं। थैंक यू सो मच आपके दिल में हमें एक छोटी जगह देने के लिए और पनाह देने के लिए, एंड वी फील रियली वेरी सेफ हैविंग योर लव एंड सपोर्ट। एंड वैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग अगर उनको डिस्क्राइब किया जाए, सो यू कॉन्ट डिस्क्राइब दिस फीलिंग एज अ फीलिंग, मे बी द राइट वर्ड इज होम। और कुछ लोग इतने प्यार में डूबे हुए हैं कि बस प्यार के अलावा ज़िंदगी में कुछ और नहीं चाहिए, एंड थोड़ा सा वक्त उनके लिए निकालना एंड दे बिकम सुपर डुपर हैप्पी। और चलिए, जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, उनके लिए बस यही है कि आप उनके लिए वक्त निकालें। एंड ट्रस्ट मी, हम भी आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम भी आपके लिए टाइम निकालने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारी प्यारी सी टीना जी कनेक्टेड हैं हमारे साथ। कहती हैं द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कीप प्लांटिंग सीड्स इवन व्हेन दे कांट सी द हार्वेस्ट येट। एवरी आवर ऑफ हार्ड वर्क, एवरी लेसन यू लर्न, एवरी सैक्रिफाइस यू मेक इज ग्रोइंग इनटू समथिंग ग्रेटर एंड समथिंग बिगर। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप प्लांटिंग, ये आपने बिल्कुल सही कहा। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा जो भी जिंदगी में करो, कौन से

0: कंसिस्टेंसी इज द की एंड यू ऑलवेज नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं तो यही सबसे ज्यादा मायने रखता है. जिंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग. हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं चाहिए. चलिए यहाँ पर टीना जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज. हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. आई जस्ट होप दैट यू डूइंग गुड एज वेल एंड एंजॉइंग द प्लेलिस्ट ऑन रेडियो मस्ती फुल वॉल्यूम के साथ. एंड ऑफकोर्स यू हैविंग योर डिनर राइट नाउ. आपको बुना पीछे शुभाहार. नेक्स्ट गाना गुजाओ टू ईच एंड एवरी वन जो आपको जानते हैं. गॉड ब्लेस यू टू. थैंक यू. एंड यहाँ पर आप कहते हैं हाई गुड इवनिंग दिव्या जी, प्लीज प्ले अ सॉन्ग फॉर ऑल द टीचर्स जो आज टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रही है. यस यस, हाउ कैन वी फॉरगेट ऑल आवर टीचर्स. कहते हैं ना कि एक टीचर ही होता है जो बाकी सारे प्रोफेशंस को क्रिएट करते हैं. सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज जो टीचर का काम करते हैं. एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल दोज जो इस दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं प्यार से. एंड दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर कमल दसानी एंड आपकी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है छवि दसानी ऑफ ग्रेड वन. ही प्यारी सी छवि, कैसी हो आप? एंड आई गेस सभी आप अपना नाम सुन रही हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा रही होंगी. और थोड़ा सा नहीं बल्कि आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा और हमारा प्यार हम आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच कमल जी हमारा साथ देने के लिए. और प्यारी सी छवि को वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर. एंड चलिए एक दिन आप ज़रूर आइएगा हमारी एमबीसी स्टूडियो में और अपनी प्यारी सी छवि को लेकर उनसे ज़रूर मुलाकात करना चाहते हैं. सो चलिए नेक्स्ट गाना गुजार स्पेशली फॉर दिस फादर एंड डॉटर डुओ एंड उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले, और कभी कभी प्यार ऑक्सीजन का काम भी कर लेता है। और प्यार में अक्सर लोग यही कहते हैं ना कि तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता है, या फिर जिए तो जिए कैसे बिना आपके। लेकिन कभी कभी जीना पड़ता है, क्योंकि एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि आप ये रियलाइज़ करें कि ज़िंदगी में प्यार सब कुछ है, लेकिन आपकी वजूद भी इज़ समथिंग। सो यू ऑलवेज हैव टू स्पेयर अ लिटिल बिट ऑफ लव फॉर योर सेल्फ। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि अपने बारे में भी सोचें, और सेल्फ केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, यहाँ पर हमारी प्यारे से शशि जी का मैसेज आया है। कहते हैं, नमस्ते दिव्या जी, आई एम हैप्पी दैट यू गॉट योर वॉइस फाइनली, होप यू आर कम्प्लीटली फाइन नाउ। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच शशि जी फॉर योर कॉन्सर्न, एंड आप भी हमारी तरह काम कर रहे हैं अभी, आपको बो कुआज एंड डेडिकेटिंग अ ब्यूटीफुल गाना फॉर योर लाडली एंजल जिनका नाम है खेमी गंगा दिन, और कल वो अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करने वाली हैं, यानी कि कल उनका बर्थडे है। तो आपकी प्यारी सी एंजल को, खेमी को, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की तरफ से, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड

एडवांस में आपने उनको बहुत सारा प्यार भेजा है, बेस्ट विशेस भेजे हैं, और आप कहते हैं कि मे लॉर्ड महादेव ऑलवेज प्रोटेक्ट हर फ्रॉम नेगेटिविटी एंड ब्लेस हर विद गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड प्लेंटी ऑफ नॉलेज इन हर लाइफ। और साथ में आप कहते हैं लोट्स ऑफ आशीर्वाद फ्रॉम पापा शशि, गॉड ब्लेस, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच शशि जी हमारा साथ देने के लिए, एंड आई जस्ट होप कि आपकी प्यारी सी खेमी इस वक्त ज़रूर हमें सुन रही होगी, एंड ये

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: लेकिन आप ये गलती मत करिएगा, इस समय नज़ारों को खोने मत देना और ऐसे ही इस समय को और भी आशिकाना बनाने के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना. Taking it from the movie Aladdin, you may be just a little bit divani, और कभी कभी प्यार में दीवानी से हो जाते हैं, लेकिन दिल को ठहरना सीखना होगा.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: How can we forget about this iconic Ghana masterpiece of all masterpieces? ये ब्यूटीफुल सा गाना स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए जो 90s गीतों को और 90s एरा को ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वी स्टिल हैवंट गेट ओवर दिस एरा, और कुछ लोग बस इन गानों को सुनने के बाद उनको मौका मिल जाता है अपनी पुरानी यादों को एक बार फिर से ताज़ा करने के लिए. सो हियर वी गो, लता जी और उदित जी की आवाज़ों में शायद आपको भी प्यार हो गया है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल हाँ कहता है और दिमाग कहता है कि नहीं नहीं अभी थोड़ा और ठहर जाओ, और इन दोनों के बीच में एट द एंड ऑफ द डे एक जंग सी छिड़ जाती है. लेकिन जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे हमेशा जीत दिल की ही होती है, क्योंकि प्यार में हमेशा दिल से ही प्यार किया जाता है, दिमाग का कोई काम नहीं है इसमें. इसलिए लॉजिक को साइड में रखिए और मैजिक पर थोड़ा फोकस कीजिए.

चलिए गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे हमारी प्यारी सी राधा जी के लिए ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज थोड़ी देर से आपका मैसेज आया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। दिस गाना गोज आउट स्पेशली फॉर यू ऑल फैमिली इन कनाडा मॉरिशस एंड आरएम2 लिसनर्स के नाम।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: चलिए 8:55 हो चुके हैं और इस गाने के साथ इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारा साथ आप लोगों ने बहुत ही प्यार से दिया 7 बजे से लेकर अभी तक. थैंक यू सो मच दिल से. एंड चलिए यहाँ पर ये अगला गाना गुजार स्पेशली टू ऑल दोस्त जो इस वक्त बहुत ही प्यार से हमें सुन रही है. सुनते रहिए नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए ऐसे गाने ही चलते रहेंगे. फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत. बहुत ही जल्द हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

0: You're listening to RM2 Radio Masti. Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Masti.
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लेडीज एंड जेंटलमैन लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर। मैं विकास आपके साथ 12 बजे तक मिडनाइट तक साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो चलिए, दिल के कुछ किस्से होंगे और उन किस्सों में किसी की याद होगी, कुछ बातें होंगी, गानों के साथ आपका साथ देने का पूरा प्लान बना कर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने ईगो की वजह से कभी किसी को सॉरी ना बोला हो? कभी सामने वाला भी वेट कर रहा होता है और हम भी, अगर आपको पता है कि आपकी गलती थी तो सॉरी कहना कोई बुरी बात नहीं है, आप छोटे नहीं हो जाते, ये रिलेशनशिप को बड़ा बनाता है ईगो से। सो अगर है कोई जिसको आप फोन करना चाहते हैं, गलतफहमी को मिटाना चाहते हैं तो

अच्छा, हमें से कितने सारे लोग हैं ना जो कहते हैं कि स्कूल डेज, कॉलेज डेज, यूनिवर्सिटी का टाइम कितना कमाल का था ना, चाहे वो लेट नाइट ड्राइव्स हो या बिना किसी रीजन के मिलना हो, हम अक्सर ओल्ड मेमोरीज को मिस करते हैं। लेकिन याद रखिए, एक दिन यानी कि आज का दिन भी मेमोरीज से भरा रहा। सो बस ये मत सोच रहे कि कल क्या हुआ या फिर कल को मिस करना शुरू करें, अरे मेमोरीज बनाना शुरू कीजिए ना।

0: कभी कभी सबसे डिफिकल्ट पर्सन जो आप में बिलीव करे वो खुद आप ही हैं। जी हाँ, कभी अपनी गलतियां आप बहुत क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन प्रोग्रेस को भी तो देखिए। आपको हर एक गलती याद है, फेलियर याद है, लेकिन कितनी बारी आप ट्रैक पर वापस आए इसको भी तो देखिए। आज अपने आप को थोड़ा सा इनकरेजमेंट दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, क्योंकि आपको खुद का सपोर्ट भी तो चाहिए।
1: RM2 Radio Masti Feel

अच्छा, कुछ टाइम पहले हम दोस्तों की बात करते हैं, लेकिन दोस्ती में भी कभी कभी दूरियां आ जाती हैं। हाँ, दिल के रिश्ते बने रहते हैं क्योंकि लाइफ डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती है। करियर चेंज, सिटी का चेंज या फिर प्रायोरिटीज चेंज, ये सब जिंदगी है ना। हर डिस्टेंस का मतलब फाइट नहीं होता या फिर दूरियां नहीं होती, और हर साइलेंस का मतलब हेट्रेड नहीं होती। सम पीपल आर मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ अ चैप्टर, और वो चैप्टर फिर भी इतना खूबसूरत हो सकता है।

अच्छा, हम फ्यूचर के बारे में इतना सोचते, कल क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, करियर किधर जाएगा, अरे पैसा इनफ होगा कि नहीं, लेकिन अभी के लिए आप यहीं पर हैं और जो मोमेंट है ना, ये एक ही बारी आता है। सो आज की रात बस इतनी सारी प्लानिंग मत कीजिए, दिन खत्म हो गया है, ये वक्त आपका है। म्यूजिक सुनिए, साथ में चाय कॉफी का आनंद लीजिए, फैमिली के साथ वक्त बिताइए और कल तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। सो प्लानिंग ऑन रखिए, लेकिन इस मोमेंट को जीना भी तो सीखिए।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: कभी ऐसा लगता है कि आपने इतना सब कुछ किया लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया, काम हो या फिर घर पर या रिलेशनशिप में, और कभी लगता है एफर्ट्स इनविजिबल हो गए क्योंकि as if people got used to it. लेकिन आप खुद जानते हैं कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं, और ये जो एफर्ट है ना कभी लोगों को ज़रूर ये रियलाइज कराएगा कि आपका काम कैसे चलता चला गया बिना रुकावट. लोगों को प्रूफ करने के लिए नहीं, खुद को कंटेंट करने के लिए काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो. आप जो कर रहे हैं उसकी वैल्यू है, और आज की रात मे बी इट्स टाइम टू अप्रिशिएट योरसेल्फ. रेडियो मस्ती.

0: दिन हमेशा सेम नहीं रहता, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड सी हो जाती है, कभी सनशाइन क्लाउडी या फिर कभी कभी बारिश। हाँ, हर दिन सनशाइन जैसा नहीं होता, कुछ दिन मैसी होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, कभी कभी एग्जॉस्टिंग होते हैं। हाँ, लेकिन उन दिनों में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कोई होती है जो आपके चेहरे पर स्माइल आती है। बस उसी चीज़ को आज याद कीजिए जो आपके चेहरे पर स्माइल ला सकती है। एक प्यार सा गाना या फिर किसी का कोई मैसेज, एक छोटे से प्यारे से नन्हे की स्माइल या फिर एक कॉफी का कप, कुछ भी, बस होल्ड ऑन टू दैट लिटिल मोमेंट। और यही तो चीजें हैं दैट कीप अस गोइंग।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: और अब जब रात ऑलमोस्ट मिडनाइट के करीब है और इससे पहले कि ये दिन खत्म हो जाए, अगले दिन में बदल जाए, अपने आप से पूछे कि क्या मैंने आज खुद के लिए भी कुछ किया। अगर आंसर यस है तो ब्यूटीफुल, अगर आंसर नो है तो कल एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा चेंज, बट स्मॉल चॉइसेस स्लोली सब कुछ चेंज करती है। टिल देन म्यूजिक के साथ रहिए, पॉजिटिव रहिए और याद रखिए RM2 रेडियो मस्ती हमेशा हरदम आपके साथ। जल्दी मुलाकात होती है, विकास की तरफ से नमस्कार।

0: ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो,
1: लगी मस्त नजर की कतार, हा हा हा, मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पार।

हो मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में हो, इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए, जिगर है पार, हो मस्त नजर की कतार, हाँ।

0: तुम नहीं समझोगे कौल साहब, कश्मीर के रहने वाले हो ना, जहां पानी बहुत है, लेकिन इस रेगिस्तान में, हमारी सूखी प्यासी धरती में, तो बूंद पानी के कारण एक आदमी दूसरे की जान लेवे, तो बूंद पानी के कारण एक छोरी की इज्जत का खून हो जावे, जैसे हमारी सोनकी का हुआ।
1: सोनकी कौन? तुम्हारी बहन?
2: तुमने ही तो कहा था, पहले जान पहचान,
1: फिर दोस्ती और फिर प्यार।
2: तुम अपनी जान पहचान करो, तुम अपने मुल्क के बारे में बताओ।
1: किसी कवि ने कहा है कि कश्मीर स्वर्ग है, चारों तरफ पानी ही पानी, हरियाली ही हरियाली।
3: चंचल नदियां इटलाती हैं, शोर मचाती हैं, मगर झील में गिरकर शांत हो जाती है। प्रेमी जोड़े शिकार में बैठकर चांदनी रात की सैर करते हैं। जी चाहता है इस वक्त हम भी एक शिकार

0: अरे में होते और तुम मेरी बाहों में टोलती।
1: क्या हो सके है कि नहर जल्दी हमारे गांव पहुंच जाए, हमें और कोई इंतजार करना नहीं पड़े।
0: दूसरी सूरत यह है कि एक बहुत बड़ा धमाका हो जो न सिर्फ रेत में दबी हुई चट्टानों को तोड़ दे बल्कि इन सब सरकारी दिमागों में हलचल मचा दे।
2: तो ये काम मैं करूंगा साहेब।
0: गंगा तुम अकेले क्या कर सकते हो?
2: मैं वही करूंगा जो फरहाद ने किया था।
3: आज राजस्थान नहर के अंतिम भाग का उद्घाटन जमुना सिंह, पंचगंगा सिंह, पंच हरी सिंह के हाथों होगा।